ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 43 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:02 लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7:00 हिंदी में मुख्य समाचार। 7:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9:00 हिंदी में समाचार। 9:02 पर कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10:00 अंग्रेजी में समाचार। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, मैचलेस म्यूजिक आर। 11:00 लेकर आएंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। 12:00 सुनिएगा अंग्रेजी में मुख्य समाचार। 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, प्ले इट कूल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। और केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये जुलाई महीने 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। अब जानते हैं कि देशभर में आज मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगर बात करें खेलों की तो टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने बॉन ओपन 2026 में

कांग्रेस पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: મરાઠી વાણી આકાશવાણી.
1: નમસ્કાર, આપ સુન રહે હૈ આકાશવાણી કા રેનબો ચેનલ 102.6 મેગાહર્ટ્ઝ પર. ઓર કુછ હી પલો મે હમ પ્રસ્તુત કરને જા રહે હૈ કાર્યક્રમ સુપ્રભાત.
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात. रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर. 102.6 आपके लिए.
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू.
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: नई सुबह, नई किरण, नई उमंग आई है, आसमान से खुशियों की एक सौगात आई है। छोड़कर कल की चिंताओं को आगे बढ़ो, और क्योंकि ख्वाहिशों को सच करने की नई सुबह आई है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर कार्यक्रम सुप्रभात और मैं पहुंच चुकी हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। रविवार की इस खुशनुमा सुबह में आपका मैं करती हूं दिल से स्वागत। आज का दिन दोस्तों कुछ खास है क्योंकि आज है दोस्ती का दिन, फ्रेंडशिप डे। एक ऐसा दिन जो याद दिलाता है कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ खून से नहीं, भरोसे, अपनेपन और साथ निभाने से भी बनते हैं। किसी ने खूब कहा है कि दोस्ती वो रिश्ता है जो हर मौसम में साथ निभाता है, खुशियों में ताली बजाता है, गम में कंधा बन जाता है। जिंदगी का जो है वो सबसे बड़ी दौलत हमारा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो कहते हैं कि तू चिंता मत कर दोस्त, मैं हूं ना। तो आइए इस सुबह को मुस्कान, संगीत और दोस्ती के रंगों से भर देते हैं और करते हैं प्यारी प्यारी बातें, प्यारे से गीत और कुछ प्रेरक किस्से। फिलहाल ये बहुत ही सुंदर सा गीत मुझे स्पेशली बहुत बहुत बहुत पसंद है, आइए मिलकर सुनते हैं।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो लोग नहीं होते जो हर दिन हमारे साथ हों, बल्कि वो होते हैं जिनकी याद आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। दोस्तों, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क की बेंच पर अकेले बैठे थे। पास से गुजरते हुए एक युवक ने उनसे पूछा कि बाबा, आप रोज यहाँ अकेले क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि मैं अकेला कहाँ हूँ बेटा, यहीं इसी बेंच पर मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त रोज बैठा करते थे। हम चाय पीते थे, हंसते थे, दुनिया भर की बातें करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आदतें अब भी वही है। मैं रोज यहाँ आता हूँ क्योंकि दोस्त चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी साथ छोड़कर नहीं जाती। उस कुछ पल के लिए वो युवक चुप रहा, लेकिन उसने धीरे से उस बुजुर्ग के हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन होंठों पर मुस्कान भी थी। दोस्तों, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ बिताए हुए समय का नाम नहीं होती, वो उन यादों का नाम होती है जो उम्र भर हमारे दिल में धड़कती रहती है। यहाँ पर मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं कि अगर दोस्त सच्चा हो तो दूरियां भी रिश्ता कमज़ोर नहीं करती। वो दिल में इस तरह बस जाती हैं कि उसकी मौजूदगी के लिए पास होना ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आज आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे बरसों से आपकी बात नहीं हुई, तो आज के दिन बस एक फ़ोन कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी एक आवाज़ उसके चेहरे की सबसे खूबसूरत मुस्कान बन जाए।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सुबह में बस इतना ही कहूंगी कि दोस्ती कोई तारीख की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास एक भी ऐसा दोस्त है जिसके सामने आप बिना किसी दिखावे के अपने दिल की बात कह सकते हैं, तो यकीन मानिए आप जिंदगी के सबसे सबसे सबसे बड़े इंसान हैं। आज बस कुछ यहाँ कहूंगी कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और कुछ लोग किस्मत से नहीं, दुआओं से मिलते हैं। दोस्ती अगर सच्ची हो तो सफर कितना भी लंबा हो, रास्ते मुस्कुराने से लगते हैं। मैं आपकी दोस्त गीतांजलि, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, कार्यक्रम सुप्रभात चल रहा था। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर से मिलती हूँ थोड़ी देर में।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध का पांचवा अध्याय, जहां पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे हैं। और नारद जी की इस कथा को सुखदेव जी ही बता रहे हैं परीक्षित जी को। जब परीक्षित जी ने पूछा कि मुझे भगवान की सृष्टि लीला के बारे में बताइए, तो सुखदेव जी ने कहा कि हाँ, यही प्रश्न तो नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे, तो मैं अवश्य ही तुम्हें सब बताऊंगा। पहले ये संवाद सुनो, उस संवाद के माध्यम से तुम जान जाओगे कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, उनकी सृष्टि लीला भला क्या है। तो जब ब्रह्मा जी से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं नारद जी ने कि आप मेरे ही नहीं, समस्त देवताओं के भी सृष्टिकर्ता हैं, आप मुझे आत्म तत्व का साक्षात करने वाला ज्ञान दीजिए, संसार का क्या लक्षण है, इसका निर्माण किसने किया, प्रलय कैसे होता है, किसके अधीन है, हमें तो आप ही दिखते हैं, सब कुछ आप ही से प्रकट होता है, फिर आप किसकी तपस्या करते हैं, आप तो ईश्वर हैं, तो भी एकाग्र चित्त से आपने घोर तपस्या की, तो मैं बड़ा मोहित हो गया हूँ और बहुत शंका भी मुझे हो रही है कि क्या आपसे भी बड़ा कोई है, मेरी दृष्टि में तो आप ही सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, तो जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूँ। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है बहुत ही सुंदर, उन्होंने कहा, सम्यक कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद वीर्य दर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा माम्।

प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाये परम मत एतावत्त्वं यतो हि मे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो तुम्हारा कथन भी असत्य नहीं, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। अगले श्लोक में कहा, येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर् यथा सोमो यथरक्ष ग्रह तारकः। 11वें श्लोक में कहते हैं, जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, मैं भी वैसे ही उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। और 12वें श्लोक में कहते हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद गुरुम। आहा, 12वें श्लोक में कहते हैं कि उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। आहा, देखिए कितना प्रेम है ब्रह्मा जी को भगवान से, क्योंकि वो भगवान के आगे इतना लज्जित अनुभव कर रहे हैं स्वयं को। कहते हैं, अरे प्रभु, आपने मुझे क्या बना दिया, लोगों का तत्व ज्ञान तो ढका हुआ है, लोग तो मुझे ही सामने देख रहे हैं, मुझे ही बड़ा समझते हैं, लोग जानते ही नहीं हैं कि सब कुछ आप ही से है, मैं भी आपसे प्रकट हुआ हूं, आपकी शक्ति से शक्त्यान्वित हो करके जगत की सृष्टि मैं करता हूं, करते आप हैं, लेकिन लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, तो ये सब आपकी दुर्जय माया से ही तो मोहित हैं, इसीलिए तो मुझे जगत गुरु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी देखिए अतिशय द्रवित हो गए हैं नारद जी का प्रश्न सुन करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ जानते हो मगर जीवों के प्रति इतनी करुणा से भर गए हो, किसी कारण तुमने मुझसे ये सुंदर प्रश्न किया है, परंतु प्रश्न तुम्हारा इतना सुंदर है कि अब मैं भगवान का चिंतन कर सकूंगा, भगवान के गुणों का वर्णन कर सकूंगा, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो तुमने जो मेरे विषय में कहा है वो असत्य भी नहीं है, क्योंकि जब कोई भगवान को ही नहीं जानता, अगर मुझसे परे का तत्व तुम जानते ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, तभी तक लगता है कि हाँ हाँ ब्रह्मा जी ही सब कुछ है, तभी तक मेरा ऐसा प्रभाव प्रतीत होता है। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर नारद जी से ब्रह्मा जी ने कि सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे ये सब क्या है, ये सब चमकते हैं, ये सब प्रकाश देते हैं, सूर्य के प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, अग्नि में ताप है, प्रकाश है, अग्नि ना हो तो भी व्यक्ति भूखा मर जाए, क्या पकाएगा क्या खाएगा, चंद्रमा शांति देते हैं, रस देते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे ये भी प्रकाशित है, लेकिन ये प्रकाश आ कहां से रहा है, तो उसी का उत्तर दे रहे हैं 11वें श्लोक में कि ये जो प्रकाश है ये भगवान का ही चिन्मय प्रकाश है, उन्हीं के शिव ग्रह का प्रकाश है, उन्हीं के तन का, उन्हीं के अंग का प्रकाश है, तो भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को संसार को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, मैं भी उन्हीं से प्रकाशित हूं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होते हैं, नक्षत्र ग्रह तारे आदि सब तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे ही मैं भी स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं, तो वो भगवान कौन है, वो भगवान कौन है, कोई नाम है क्या उनका, या अनाम है, अरूप है, कोई रूप भी नहीं।

कोई लीला नहीं, कोई गुण नहीं, ऐसे हैं क्या? वैसे विचित्र बात है, भगवान ने देखिए जो सृष्टि बनाई उसमें सबका आकार है, सबका नाम है, सबका स्वभाव है, कोई ना कोई गुण है, और भगवान ही इन सब से हट जाए यानी उन्हें ही हम कह दें कि नहीं तुम्हारा कोई आकार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का सब आकार खत्म हो जाता है, अगर तुम्हारा भी आकार हुआ तो तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए हम ये स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारा आकार हो। अगर कोई ये सोचे तो कैसी सोच है ये, क्योंकि भगवान में जड़ कुछ है नहीं, वो तो सच्चित और आनंद घन विग्रह है, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद घन विग्रह है ठाकुर जी। तो वो भला जड़ वस्तुओं से थोड़ी ही ना बने हैं कि जो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो भगवत तत्व है ये कोई भगवान का भक्त ही अनुभव करके समझा सकता है, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के मर्म को एक भक्त ही समझा सकता है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए कह रहे हैं मैं भगवान वासुदेव की वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। आहा, और 13वें श्लोक में कहते हैं कि ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर ही भाग जाती है, दूर भाग जाती है, दूर से ही भाग जाती है, सामने आए और तब भाग जाए ऐसा नहीं है, ये माया दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर ये मैं हूं, ये मेरा है, इस तरह बकते रहते हैं। 13वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, विलज्जमानया यस्य स्थातु मीक्षा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। आ तो देखिए ब्रह्मा जी नारद जी को जो तत्व बता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तत्व नारद जी को मालूम नहीं है, पता नहीं है। नारद जी स्वयं अपनी वीणा पर भगवान का गुणगान करते रहते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण, है ना। तो नारद जी तो समस्त तत्वों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण लीला में, जब श्री कृष्ण के प्रति ब्रह्मा जी से अपराध हो गया था, वो उनकी भगवत्ता की परीक्षा लेने चल दिए थे, तब उन्होंने कहा था कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, आप तो पिता हैं, आप ही से मेरी उत्पत्ति हुई है। तब श्री कृष्ण ने कहा था, कैसी बात करते हो ब्रह्मा, मैं तो छोटा सा बालक हूं, मैं तुम्हारा पिता कैसे हुआ, तुम्हारे पिता तो नारायण हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप हैं मूल नारायण, मूल नारायण तो आप हैं, आप ही नर के हृदय में अवस्थान करते हैं, नारायण हैं आप ही हैं, आपसे ही सब कुछ है, आप ही से समस्त पुरुष अवतार हैं, तो आप ही को मुझे क्षमा करना होगा। वासुदेव जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपका ध्यान करते हैं। तो ये जो माया है ये भगवान की आंखों के आगे ठहरती ही नहीं। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा तत्व बोला है, बहुत बड़ा तत्व बोला है, किन्होंने, ब्रह्मा जी ने, क्या कि भगवान की आंखों के सामने माया ठहरती नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है। और ये माया संसार के जीवों को अपने आवेश में ले लेती है, क्योंकि जीव जब भोगना चाहता है, जब वो भोगी बनना चाहता है, तब माया उस पर अधिकार कर लेती है, जीव को भुला देती है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, वो कृष्ण दास है, और जीव में ये अहंकार पैदा कर देती है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम सब कुछ बदल सकते हो, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, बस ये माया लग जाती है। भगवान को दुख होता है

कि जीवों को कैसे बहका देती है माया, इसलिए लज्जित रहती है माया, भगवान के सामने नहीं आ सकती। फिर अगर कोई कह दे कि भगवान की देह माइक है, अरे जो माया भगवान के सामने नहीं आ सकती तो वो माया भगवान को कैसे छू सकती है? नहीं छू सकती, सब कुछ भगवान से प्रकट है। और भगवान, भगवान तीन गुणों से नहीं बने हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, ये तीन गुण उनसे बने हैं। और डायरेक्टली तो देखा जाए श्री कृष्ण भी कोई सृष्टि लीला नहीं करते, उनके अंश के अंश, उनके भी अंश वही सृष्टि लीला करते हैं पुरुष अवतार के रूप में। ठाकुर जी तो आनंद घन विग्रह हैं श्री कृष्ण, तो वो तो आनंद लेते हैं अपनी लीला में और आनंद देते हैं, लीला का आनंद देते हैं, अपने स्वरूप का आनंद देते हैं जीवों को। तो बहुत ही करुणामय है, आनंदमय विग्रह है, लीलामय विग्रह है ठाकुर जी, क्योंकि आनंद से बने हैं, सच्चित आनंद से बने हैं, तो हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा अपनी स्वरूप शक्ति के साथ एक उत्सव मनाते रहते हैं, आनंद का उत्सव, आनंद ही उच्छलित तो होता रहता है। तो वो तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला को जानना बहुत मुश्किल है, किंतु ब्रह्मा जी सब समझते हैं, जानते हैं, और नारद जी भी जानते हैं। तो नारद जी के माध्यम से भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, कौन? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो माया है ये भगवान के आगे ठहर नहीं सकती है। तो अगर कोई कहे कि भगवान की माया है, भगवान चाहें तो ये माया हटा भी सकते थे, हमें माया में क्यों गिरने दिया, लेकिन भगवान की तो हम लोग तटस्था शक्ति है ना, हम तटस्था शक्ति हैं जीव, हमने ही चुना है माया को, क्योंकि हम अनंत जन्मों की वासनाओं से भरे पड़े हैं। तो उन वासनाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो जन्म पर जन्म लेना पड़ता है। तो अपने लिए हमने माया को चुना है, तो माया हमें दुख देती है और सुख भी देती है, तो ये सब इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं सुख दुख। हमारा वास्तविक आनंद तो भगवान के चरणों में है, इसे हम जानते नहीं हैं। नारद जी यही हमें बताना चाहते हैं कि देखो ये समस्त सृष्टि, ये तुम्हारी देह, ये तुम्हारी देह की क्रियाएं, सब कुछ भगवान से प्रेरित हैं, भगवान की शक्ति से तुम चल रहे हो। तो भगवान की सृष्टि लीला को जानकर समझ आएगा कि अरे भगवान क्या तत्व है ना। तो भगवान की लीला तभी समझ आएगी जब उनके तत्व को जान पाएंगे। इसीलिए कहा कि देखो तुम तो सर्वज्ञ हो नारद, पर तुमने मुझसे ये जो प्रश्न किया है, ये वस्तुतः तुमने मुझ पर करुणा ही की है, क्योंकि अब मैं भगवद वीर्य दर्शन कर पाऊंगा, अर्थात भगवान की लीला का दर्शन कर पाऊंगा, मन से उसका चिंतन कर पाऊंगा और आनंदित हो जाऊंगा। क्योंकि भक्त को तो भगवान के बारे में कहकर और सुनकर अच्छा लगता है, उनका चिंतन करके अच्छा लगता है, वो भगवान से बाहर नहीं जाना चाहते, भगवान के अलावा वो कुछ भी नहीं सोचना चाहते, तो ऐसे होते हैं भक्त। तो इसीलिए भगवान के ये जो परम भक्त हैं ब्रह्मा जी, वो कह रहे हैं कि ये जो विश्व है वो तो भगवान द्वारा ही प्रकाशित है, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं। ये न स्वरोचिषा, यानी कि ये स्वप्रकाश परमेश्वर द्वारा जो विश्व प्रकाशित हुआ है उसे तो मैं इस प्रकार से प्रकाशित कर रहा हूं जैसे पिसी हुई वस्तु को कोई पीसे, यानी पहले ही भगवान ने प्रकाशित कर दिया है, परंतु लोगों को दिख रहा है कि मैं प्रकाशित कर रहा हूं।

0: भगवान की दीप्ति से ही, प्रकाश से ही सब दीप्तिमान हैं। ये बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से मुझ में कोई भी प्रकाश शक्ति नहीं है, है ना। श्री चैतन्य चरितामृत में भी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु हर ऐशिष्ट्य आदि ईश्वर तीने आज्ञाकारी कृष्णेर कृष्ण अधीश्वर। कि सृष्टि के जो ईश्वर हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये भी श्री कृष्ण के आज्ञाओं का पालन करते हैं और श्री कृष्ण ही अधीश्वर हैं। यही यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, जिस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं, प्रेम धारा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में वंदना की है कि उन भगवान वासुदेव जी को नमस्कार है जिनके माया के द्वारा अभिभूत होकर लोग मुझे ही जगत गुरु समझते हैं और वो ये नहीं जानते हैं कि मेरे भी एक जन प्रभु हैं। तो यदि कोई कहे कि समस्त जगत के गुरु ब्रह्मा जी ने इस विश्व की सृष्टि की है, क्योंकि इसी प्रकार की ख्याति सब जगह है ही, तो उसके उत्तर में ही थोड़े हंसने लगे ब्रह्मा जी और बड़े विस्मित हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए, है ना। तो उन्होंने कहा, वाह, लोग मुझे गुरु समझते हैं, अरे भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूं। उनकी माया ही ऐसी है जिसको कोई अपनी चेष्टा से जय नहीं कर सकता, उसी से मुक्त होकर लोग मुझे जगत के गुरु समझते हैं। बात भी सही है, है ना। तो श्रीमन महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में बताया है, त्रिपाद विभूति कृष्णेर वाक्य अगोचर, एक पाद विभूति सुनहु विस्तार, अनंत ब्रह्मांडेर जदो ब्रह्मा रुद्रगण, चिर लोकपाल शब्दे तहार गणन। कि भगवान के जो लोक हैं तो वो तो तीन चौथाई हैं और ये जितने अनंत ब्रह्मांड हैं ये सिर्फ एक चौथाई ही है, और उस अनंत ब्रह्मांड में यानी जितने ब्रह्मांड हैं उनमें उतने ही ब्रह्मा और रुद्रगण भी हैं। तो एक घटना बताते हैं कि एक दिन द्वारका ते कृष्ण देखे बारे, ब्रह्मा आइला द्वारपाल जनालो कृष्णे रे, कृष्ण कहें कौन ब्रह्मा की नाम तहार, द्वारी आसी ब्रह्मा के पूछे आर बार, विस्मित होइया ब्रह्मा द्वारी के कोहिला, कहो गिया सनक पिता चतुर्मुख आइला। तो एक दिन ब्रह्मा जी द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाओ श्री कृष्ण को कहो ब्रह्मा जी आए हैं। तो जाकर के यही कहा श्री कृष्ण को द्वारपाल ने कि ब्रह्मा जी आए हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, उनसे पूछिए कि कौन से ब्रह्मा हैं, उनका नाम क्या है। तो द्वारपाल ने ब्रह्मा जी से कहा, आप कौन से ब्रह्मा हैं। तो बड़े ही विस्मित हो गए, ब्रह्मा जी हैं, मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। तो उन्होंने कहा, जाके कहो सनक के पिता चतुर्मुख आए हैं, जिनके चार मुख हैं, चार मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। श्री कृष्ण के पास द्वारपाल गए ब्रह्मा जी को लेकर के, तो श्री कृष्ण के चरण में ब्रह्मा जी ने दंडवत किया। श्री कृष्ण ने उनका सम्मान करके, उनकी पूजा करके उनसे प्रश्न किया, की लागे तुम्हार यहां आगमन होइलो, कि आप यहां

ब्रह्मा जी ने पूछा, ताहा पाचे कोरिबो निवेदन, एक संशय मने होय करहो छेदन। कौन ब्रह्मा पूछले, तुम्ही कौन अभिप्राय? आमी बोई जगते, आर कौन ब्रह्मा होय? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं क्यों आया हूँ ये तो बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे एक संशय का समाधान कीजिए। आपने क्यों कहा कि कौन सा ब्रह्मा आया है? अरे इस जगत में मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है क्या? शुनि हासि कृष्ण तबे कोरिलेन ध्यानी, असंख्य ब्रह्मार गण आइलो तत् खोणे। जब श्री कृष्ण ने ये बात सुनी तो हंसने लगे और उन्होंने ध्यान किया, उसी समय असंख्य ब्रह्मा वहां प्रकट हो गए। 10-20 शत सहस्त्रायुत लक्ष बदन, कोटि अर्बुद मुख कारो ना जाय गणन। रुद्र गण आइला लख कोटि वदन, इंद्र गण आइला लख कोटि नयन। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा फाफर ओइला, हस्ते गण मध्य जैनो एक मशक रोइला। जैसे ही श्री कृष्ण ने ध्यान किया वहां अनेक ब्रह्मा आ गए, असंख्य ब्रह्मा जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती। किसी के 10 मुख थे, किसी के 20 मुख थे, किसी के 100 थे, किसी के 1000 थे, किसी के लाख थे, किसी के करोड़ थे। इतने मुख थे कि कोई गिन भी ना पाए। और इतने ही रुद्रगण आ गए, लाख करोड़ मुख वाले रुद्रगण आ गए, लाख लाख करोड़ करोड़ नयन वाले इंद्रगण आ गए। बस ये देखकर ब्रह्मा जी जो 4 मुख वाले थे उनकी तो हालत ही बड़ी खराब हो गई। उन्होंने कहा, अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है बड़े बड़े हाथियों में मैं तो एक मच्छर ही हूं। ओहो, आसी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत कोरिते मुकुट पाद पीठे लागे। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि इतने सारे जो ब्रह्मा आए वो श्री कृष्ण चरणों में दंडवत कर रहे थे और अपने मुकुट को श्री कृष्ण के चरणों से लगा रहे थे। कृष्ण एरो अचिंत्य शक्ति लिखिते के हो नारे, जतो ब्रह्मा ततो मूर्ति एक ही शरीर। पाद पीठ मुकुटाग्र संगटे उठे ध्वनि, पाद पीठे स्तुति करे मुकुट हेनो जानी। श्री कृष्ण की ऐसी अचिंत शक्ति कि जितने भी ब्रह्मा थे, जितने भी भगवान तो एक ही शरीर में एक ही विग्रह में प्रकट हैं और वो सारे के सारे ब्रह्मा एक साथ ठाकुर जी के चरणों में झुक रहे हैं और अपने मुकुट का आगे का भाग श्री कृष्ण के चरणों से लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुकुट ही स्तुति कर रहा हो भगवान के चरणों की। जोड़ हाते ब्रह्मा रुद्रादि कोरिये स्तवन, बड़ो कृपा कोरिले प्रभु देखाइले चरण। ये हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, आपने अपने चरणों का दर्शन कराया। ऐसे समस्त ब्रह्मा रुद्र आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। तो ये बात तो ब्रह्मा जी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो हंस रहे हैं कि अरे ये भगवान की माया भी कैसी है, मुझे ही जगत गुरु कह रही है। तो अगले श्लोक में 13वें श्लोक में जहां ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे कपटी स्त्री अगर होती है तो उसके स्वामी उसके कपट को पकड़ लेते हैं, तब वो अपने स्वामी के पास जाने में लज्जित होती है, ऐसे ही जो ये जड़ माया है ये कृष्णदासी है और जीव को ये मोहित करके रखती है तो भगवान इसे पसंद नहीं करते। ये जानकर वो एक स्त्री की तरह भगवान के साक्षात दृष्टि में आते हुए लज्जित होती है, क्योंकि ये फिर माया भगवान की पीठ की तरफ रहती है, दूर रहती है दूर, और उस माया को कोई देखता है, माया की तरफ जाता है तो वो मोहित हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो देह को और मन को समझता है, ये मैं हूं और ये मेरा है, और इस तरह से उसमें वो फंसता चला जाता है ना। तो जब नारद जी ने कहा कि आप ही हे पिते जगत के गुरु हैं, विश्व के सृष्टा हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे मेरा सम्मान करते हो, जो जो मेरा सम्मान कर रहे हैं वो सब माया द्वारा विमोहित है ना, तो भगवान का ही सम्मान करना होगा। भगवान के अलावा अगर आप मेरा सम्मान कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप बाहर की

दृष्टि से संपन्न है, बाहरी दृष्टि है, आपको कुछ पता नहीं है, आप भगवान की माया द्वारा मोहित हैं। देखिए ये बात नहीं है, ब्रह्मा जी तो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान का जितना सम्मान होना चाहिए भक्तों का भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन भक्त कभी नहीं कहता कि आप मेरा सम्मान करो। भक्त हमेशा कहेगा नहीं, मेरा सम्मान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान का ही सम्मान होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो उस माया को देखो, इस माया से विमोहित होकर के जीव एकदम भूल जाता है कि वो कृष्णदास है। तो सही बात है, जो भगवान से विमुख है वो माया के प्रभाव में है, और जो भगवान की तरफ मुड़े हुए हैं वो माया के प्रभाव से दूर रहते हैं उनकी कृपा से, यही ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह जुलाई महीने में 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। मौसम की खबरों में मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, साथ ही साथ सिक्किम में अत्यधिक वर्षा का

वाणी आकाशवाणी। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। संडे की खूबसूरत सुबह दोस्तों, अगस्त का पहला रविवार और ये रविवार समर्पित करते हैं हम दोस्ती को। बिल्कुल जी, दोस्ती यानी कि वो रिश्ता जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ नहीं होता बल्कि मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थाम के रखता है। जिंदगी का वो पहला रिश्ता जो आप खुद बनाते हैं और किसी शर्त के बगैर, बस एक सच्चा दिल और एक साथ निभाने का वादा चाहिए होता है। और आज हम उसी सच्चे दिल के साथ और साथ निभाने के वादे के साथ पहुंच चुके हैं स्टूडियो में लेकर आपके लिए आप ही का शो जिसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगीला मुंडे अजय गोपाल जी। और इतना खूबसूरत मौसम है, अब इसे बरसात का मौसम कहें, सावन का मौसम कहें या फिर दोस्ती का मौसम, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। बहरहाल हम यहाँ से आपके लिए बजाते रहेंगे बेहतरीन तराने सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन।

96 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। आज का दिन बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज सिर्फ फ्रेंडशिप डे नहीं है, बाय द वे आज हैप्पी सिस्टर्स डे भी है। तो सभी बहनों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैप्पी सिस्टर्स डे की भी, और भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले इतिहास में झांक कर देखते हैं कि क्या क्या खास आज की तारीख से जुड़ा हुआ है। पता है आपको, 1790 में आज ही के दिन पहली बार यूएसए में जनगणना कराई गई थी, जो सेंसस है फर्स्ट टाइम 1790 में आज ही के दिन हुआ दोस्तों यूएस में। 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो आज ही के दिन पास किया था, जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और वॉइसराय का जो पद है वो बनाया गया था दोस्तों। आज ही के दिन 1873 में 1873 में सैन फ्रांसिस्को में एंड्रयू स्मिथ हॉलिडे द्वारा पहली केबल कार जो है उसका परीक्षण किया गया था। और आज ही के दिन 1990 में दोस्तों खाड़ी युद्ध जो है उसकी शुरुआत हुई थी 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आप तक पहुंचाई दोस्तों, और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन नगमे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कुछ खास शख्सियत जो है वो भी आज की तारीख से जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, बैठे रहना होगा, टिके रहना होगा, चिपके रहना होगा और सुनते रहना होगा दिल से दिल तक। एक बहुत ही प्यारा गाना लता दी की आवाज़ में 90s की दुनिया से चुरा कर आपके लिए लाया हूं मैं। 7:13 बाद स्टूडियो क्लॉक बोले तो आपकी हमारी भाषा में संडे बोले तो फंडे सुबह के 7:15 होने को है। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ओनली ऑन द स्टेशन of the nation. खूबसूरत मौसम के साथ मैच करता हुआ ये गाना, खूबसूरत वादियों के बीच अगर आप हैं उत्तराखंड की तो आपको ज़रूर ये गाना और भी खूबसूरत लगेगा, और अगर दिल्ली और उसके आसपास आप हमें सुन रहे हैं तो बादलों की लुका छिपी के बीच लता दी की आवाज़ में ये बेहतरीन सा ट्रैक इज गना मेक योर मॉर्निंग इवन मोर स्वीटर। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड। आप सभी को मोहब्बत भरी एक और सुबह और उम्मीद भरा एक और दिन मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो जी, और ये है शो कॉल्ड गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक बार फिर से आप सभी को परिपूर्ण दिन नमस्कार, सात श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, तेवरिकम। और हम बात करते हैं शो पर हर उस खबर की जो रखती है आपसे सीधा सामाजिक सरोकार दोस्तों। और सुबह सुबह अगर थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन हो जाए, ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ बेहतरीन म्यूजिक आपको मिले और वो किसी मेडिटेशन से कम ना हो, तो फिर जिंदगी में और क्या चाहिए। बस इसी को चरम सुख जो है वो कहा गया, और इसी सुख की अनुभूति को लेकर हम पहुंचते हैं रोज सुबह 7 से 9 के बीच आपके लिए। आई शुड से 7 से 10 के बीच, क्योंकि 9 से 10 के बीच का जो स्पेशल सेगमेंट है ना, वहां पर बैक टू बैक म्यूजिक भी आपके लिए होता है। बहरहाल हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर दोस्तों, और हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ खास आज की तारीख से जुड़ा है। दो खास शख्सियत जो है वो आज की तारीख से जुड़ी है और हमें प्रेरित करती है दोस्तों। उनमें जो पहला नाम है वो है प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी का, भारत के महान रासायनिक वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्योगपति और समाजसेवी रहे। उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इन्हें कहा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा भारत के रसायन विज्ञान की यात्रा को अगर हम देखते हैं दोस्तों। भारत में आधुनिक केमिस्ट्री के अनुसंधान की जो मजबूत नींव रखी उसका श्रेय प्रफुल्ल जी को ही जाता है। इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट जो है उसकी भी दोस्तों खोज की थी। साथ ही साथ भारत की पहली दवा निर्माण कंपनी जो है उसकी स्थापना भी प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने ही की। इस दवा कंपनी का नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। उन्होंने स्वदेशी उद्योगों शिक्षा को बढ़ावा दिया और एक किताब भी लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। और कहीं ना कहीं भारत की जब रसायन विज्ञान की यात्रा को हम देखते हैं दोस्तों, तो मील का पत्थर साबित होते हैं उनके हर वो काम, जो कहीं ना कहीं हमें आज दुनिया भर में एक बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्री के तौर पर उभरने का मौका जो है वो देते हैं दोस्तों। इस महान शख्सियत को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ आज जयंती है पिंगली वेंकैया जी की भी। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे। वे भारत के सच्चे देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कृषि वैज्ञानिक भी रहे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली जी का जन्म आज ही के दिन 1878 में आंध्र प्रदेश के भटाला पेनमरु नामक गांव में हुआ दोस्तों, जो कि कृष्णा जिले के देवी तहसील में है। और 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेवा में नौकरी की, उसके बाद बॉम्बे में काम किया। मद्रास में जब प्लेग फैला तो प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर वहाँ पर भी उन्होंने काम किया। संस्कृत, उर्दू, हिंदी भाषाओं का बहुत ही बेहतरीन ज्ञान दोस्तों उनके पास था। और कहीं ना कहीं जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया। और आज का जो तिरंगा हम दोस्तों देखते हैं, इस ध्वज की कल्पना जो है नेशनल फ्लैग मिशन जब बनाया गया उसमें जो पिंगली वेंकैया जी हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिंगली जी को हम उनकी जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। ये समय है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और जब हम कहते हैं ना छोटे से ब्रेक, वी मीन इट। और ये छोटा सा ब्रेक होगा सिर्फ 30 सेकंड्स का। बिल्कुल जी, बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए हमारे साथ। मैं वापस लौटूंगा एक बहुत ही प्यारे वाले गाने के साथ सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स में।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी
1: 102.6 MHz पर एक बहुत ही प्यारा वाला ट्रैक इस समय ऑलरेडी निकल चुका है बैकग्राउंड में, लेकिन हर अच्छी चीज को पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक यहाँ पर लिया जाएगा, सिर्फ 30 सेकेंड्स। देखिए, जब हम कहते हैं ना छोटा सा ब्रेक, आई मीन इट। तो वापस लौटूंगा 30 सेकेंड्स के अंदर। बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
1: चलिए जी, यहाँ पर हमारे 30 सेकंड्स पूरे हुए और अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराऊंगा आपको। ये बहुत ही प्यारा वाला गाना बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में सिर्फ और सिर्फ 102.6 MHz पर, क्योंकि हम हैं स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 7:29:55 और ये समय है जानने का कि क्या कुछ खास चल रहा है ग्लासगो में। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोस्तों, पदक तालिका पर हम चौथा स्थान जो है हमने काबिज कर लिया है। वंदना, प्रेरणा और अनुपम मिलकर हमें बता रहे हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की हर खबर। बने रहिए हमारे साथ।
1: The Commonwealth Games।
2: जब सपनों को मेहनत का साथ मिलता है तो उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं बल्कि निरंतर बेहतर बनने की एक सतत यात्रा है। ये धैर्य, अनुशासन और उस विश्वास का उत्सव है जो हर खिलाड़ी को एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इसी यात्रा में कभी नए कीर्तिमान बनते हैं, कभी नई प्रतिभाएं उभरती हैं और कभी ऐसे क्षण जन्म लेते हैं जिन्हें खेल इतिहास लंबे समय तक याद रखता है। इन्हीं भावना और उपलब्धियों का साक्षी बना हुआ है स्कॉटलैंड का ग्लासगो, जहां जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारियों, प्रतिभा और संकल्प की परीक्षा दे रहे हैं। हर दिन नए मुकाबले, नए परिणाम और नई कहानियां इस महाकुंभ को और यादगार बना रहे हैं। भारत के लिए भी प्रतियोगिता का 10वां दिन कई मायनों में विशेष रहा।
3: राष्ट्रमंडल खेलों का आज अंतिम दिन है। कल बॉक्सिंग और एथलेटिक्स दोनों के अंतिम दिन थे और बॉक्सिंग में करिश्मा ही था कि 14 में से 10 फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाज थे और उन्होंने इतिहास रच दिया, अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन। एथलेटिक्स के अंतिम दिन भारतीय कुल मिलाकर 7 स्पर्धाओं में थे, पदकों की उम्मीद थी और पदक आए भी और सारे रंगों के, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके अलावा जूडो में भी भारतीय दमखम दिखा, ट्रैक, साइकिलिंग और बोस में भी भारतीय चुनौती थी। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का 10वां दिन और पूरा लेखा जोखा लेकर उपस्थित हैं हम। खेलों का 10वां दिन और भारतीय बॉक्सर्स ने दिखाया 10 का दम। सिलसिले का आगाज किया 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने। सामने स्कॉटलैंड की स्कारलेट सवाना। प्रीति की रिंग कवरेज, फुर्ती और सधे हुए मुक्कों ने सवाना को बाउट से रवाना कर दिया। एक मत से निर्णय प्रीति पवार के पक्ष में रहा 5-0 और दिन की सुनहरी शुरुआत हो गई बॉक्सिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक।
4: मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एक अच्छा स्टार्ट किया इंडिया के लिए, आज गोल्ड जीता है, सो मेडल मैं सभी इंडियंस को डेडिकेट करूंगी।
3: 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया के पास लंबा अनुभव है, विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। उनके सामने ब्लू कॉर्नर में थी नॉर्दर्न आयरलैंड की मिशेला वॉल्श। जैस्मिन ने अनुभव का पूरा फायदा उठाया, अपना गार्ड हमेशा ऊंचा रखा, जब जरा भी मौका मिला तो जबरदस्त प्रहार कर दिए। जज सर्वसम्मत थे 5-0 का निर्णय उनके पक्ष में सुनाने को।

0: दूसरी बाउट और दिन का दूसरा स्वर्ण पदक। साक्षी चौधरी अलग ही जीवट वाली बॉक्सर हैं। ट्रायल्स में निखत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा को हराकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी। उनके मुक्कों की धार कल सही इंग्लैंड की रूबी व्हाइट ने। पूरा स्टेडियम साक्षी बना साक्षी के सनसनाते प्रहारों का। साक्षी ने 5-0 से बाउट जीती और एक बार फिर स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रगान की धुन सुनिश्चित कर दी।
1: Indians are doing very well. From now onwards, we want all the gold medals because we have a strong team and we have trained so hard to win gold medals.
0: भारतीय फौज में एंट्री पाने वाली पहली महिला बॉक्सर राजस्थान की अरुंधति चौधरी के विरुद्ध थी इंग्लैंड की शांटल रीड 70 किलोग्राम में। लगा वही कहानी एक बार फिर कॉपी पेस्ट की जा रही है जो पहले 4 बार कही जा चुकी थी। 5-0 का निर्णय, भारत की जीत और दिन का 5वां स्वर्ण पदक।
2: गोल्ड मेडलिस्ट एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रिप्रेजेंटिंग इंडिया अरुंधति चौधरी।
0: इसके बाद 75 किलोग्राम वर्ग में वर्तमान में भारत की सबसे मशहूर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन रिंग में उतरी। अभी तक बहुत विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पिछली सारी लड़ाइयां जीती थी, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया की एमा सू ग्रीन ट्री उन पर 20 साबित हुई। दूसरे राउंड के बाद निर्णायकों के दिए अंकों को देखें तो दोनों के बराबर थे, यानी तीसरा राउंड निर्णायक होना था। यहां पर एक बार फिर एमा ने बाजी मार ली। लवलीना 1-4 से मुकाबला हार बैठी और उन्हें रजत पदक पर संतोष करना पड़ा।
2: सिल्वर मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया लवलीना बोरगोहेन।
3: अगर किसी मुकाबले ने आखिरी पल तक दर्शकों की धड़कनें बढ़ाए रखी तो वो थे सचिन सिवाच। दोनों मुक्केबाजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और जीत हार का फैसला आखिरी क्षणों तक टला रहा, लेकिन मुकाबले के अंतिम सेकंड में सचिन के एक जोरदार पंच ने विरोधी को लड़खड़ा दिया और उन्हें स्टैंडिंग काउंट लेना पड़ा। यही पल मुकाबले का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से सचिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के स्वर्णिम अभियान में एक और चमक दार अध्याय जोड़ दिया।
2: Now, Commonwealth Games champion in the red corner from India,
4: अभी तो हमारा मैं एम तो अभी एशियन गेम कौन ही प्लेयर रहेगा दादा, तो मैं यही चाहूंगा कि आगे आईडिया के खिलाड़ी और अच्छा करें।
3: अगली बारी थी अंकुश पंघाल की। शुरुआती दबाव के बाद अंकुश ने अपने काउंटर पंच और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले की तस्वीर बदल दी। उनके प्रतिद्वंदी शितु पर एक अंक की कटौती भी हुई जिसका अंकुश ने पूरा फायदा उठाया। आखिरी क्षणों तक उन्होंने बढ़त बनाए रखी और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से मुकाबला जीतकर भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
2: And now Commonwealth Games champion in the red corner for India,
3: मणिपुर के चपल बॉक्सर जादू मणि ने एक तिलिस्म मचा रखा था पिछले दिनों, लेकिन कल 55 किलोग्राम में उनका जादू नहीं चला। कुछ तो वो ऑफ कलर रहे तो कुछ हाथ रहा ऑस्ट्रेलिया के जेड डिक्सन का। जादू मणि ने अपनी ओर से संघर्ष तो बहुत किया लेकिन वो काफी नहीं था। 0-5 से वो ये बाउट हार बैठे, लेकिन सिल्वर मेडल तो उनके गले में आया ही।
5: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश हूँ। टफ फाइट था, इस कंपटीशन में जो मेरा गलतियाँ है उसको मैं सुधारने के लिए कोशिश करूँगा।
3: दिन का आखिरी भारतीय फाइनल था सुपर हैवीवेट वर्ग का, जहाँ सभी की निगाहें नरेंद्र बरवाल पर थी। फाइनल में इंग्लैंड के डोमिनिक थॉमस ने उनकी लय को शुरुआत से ही पढ़ लिया। मुकाबले के आखिरी राउंड में नरेंद्र ने वापसी की पूरी कोशिश की, लगातार हमले भी किए, लेकिन थॉमस हर बार का जवाब देने में सफल रहे। आखिरकार जो ने सर्वसम्मति से मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में दिया।
0: इससे पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था 2018 गोल्ड कोस्ट में, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। यहाँ पर रहे कुल 10 पदक, लेकिन उनमें से 7 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक। सुनहरे अक्षरों में इतिहास के सीने पर लिखी हुई नई इबारत। ट्रिपल जंप यानी तिहरी कूद में दोहरी सफलता भारत के हिस्से में आई। तमिलनाडु से आने वाले 26 साल के प्रवीण चित्रवेल की खास बात है उनका खुद पर विश्वास। इसके पहले 2022 बर्मिंघम खेलों में वे कांस्य पदक से चूक गए थे, लेकिन कल का स्टेज तो बस उनके लिए ही था। अपने चौथे प्रयास में 16.58 मीटर की कूद उन्हें ले आई दूसरे स्थान पर और भारत के लिए रजत पदक पक्का किया उन्होंने।
6: You know, I'm waiting for this medal 4 years. Last Commonwealth Games, I lost medal in 2 centimeters. But this time, silver and bronze with India. Hopefully, I'll do again next Commonwealth Games in India.
0: सेल्वा प्रभु थिरुमारन उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। बचपन से ही भागने कूदने का जुनून था उनको। बच्चे की जिद देख पिता ने अपनी 4 एकड़ जमीन बेच दी और बेटे ने पिता के त्याग को जाया नहीं होने दिया। 15.52 मीटर अपने 5वें प्रयास में कूदे और भारत के लिए स्पर्धा में 2 पदक पक्के हो गए।
7: I could have jumped little far, but you know, it's all about I get the medal for the country. I'm so feel proud, you know.
0: अब बात पैरा शॉटपट F57 स्पर्धा की। गजब प्रदर्शन, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक की आस पूरी की इस स्पर्धा ने, और ये आस पूरी की बिहार के लाल सोमन राणा ने। सोमन ने अपना गोला फेंका 13.40 मीटर तक, और एथलेटिक्स में भी भारतीय राष्ट्रगान की धुन पक्की करती। एक माइन विस्फोट में अपना पैर गंवा दिया था सोमन ने, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने संकल्प शक्ति को नहीं गंवाया। पिछले खेलों में वो रजत पदक लेकर आए थे और यहाँ पर सारी कमी दूर कर दी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर।
8: बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इतना बड़े मंच पर और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल और 2 गोल्ड एंड सिल्वर मेडल दोनों।
0: सोमन के साथी शुभम जुएल, उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में अपना पूरा दम लगा दिया। हुंकार भरकर जो गोला फेंका वो गया 13.28 मीटर दूर। रजत पदक उनका हुआ। इत्तफाक है कि दोनों ही फौज में हैं और शुभम ने तो अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग भी फौज में आने के बाद बस 3 साल पहले ही शुरू की थी। इन दोनों पैरा एथलीटों को, उनके जज्बे, संकल्प और उनके जीवट को हमारा नमन है। 10,000 मीटर में गुलवीर सिंह ने रजत पदक पाया था और अब बारी थी 5,000 मीटर की। आखिरी लैप में जोर लगाया, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने वाले 3रे एथलीट बन पाए कांस्य पदक। समय रहा 13:24.35। एक और अनूठी बात, एक ही गेम्स में एथलेटिक्स में 2 पदक कमाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए वो। पैरा 1500 मीटर में रमेश षणमुगम 7वें स्थान पर रहे। बदकिस्मत रही 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका कांस्य पदक से चूक गई, 4थे स्थान पर रही, तो इसी दौड़ में रवीना अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सकी। वहीं पोल वॉल्ट में देव कुमार मीला और उनके साथ ही ट्रेनिंग करने वाले कुलदीप कुमार, उनसे उम्मीदें थी। देव 5.30 मीटर की दूरी के ऊपर नहीं जा सके, 4थे स्थान पर रह गए, जबकि कुलदीप 6थे स्थान पर आए। 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भी भारतीय टीम कभी भी प्रतियोगिता में दिखी ही नहीं और 6थे स्थान पर आई।
3: जूडो मैट पर कल भारत का अभियान उतार चढ़ाव से भरा रहा। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति शर्मा ने बेहतरीन मैट अवेयरनेस और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की कोना क्रिस्टी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि अंतिम 4 के मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की साया मिडिल्टन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांस्य पदक मुकाबले में उन्नति ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोस्टर को एपों के जरिए मात दी और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। वहीं पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग में हर्ष तोकस का सफर भी रोमांच से भरपूर रहा। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उन्होंने रेपेचाज में समोआ के पेनियामिना परसिवल को एपों से हराकर शानदार वापसी की और कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई। हालांकि पदक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की केशिन ओची ने उन्हें मात दी और हर्ष का अभियान 4थे स्थान के साथ समाप्त हुआ। इसके अलावा पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में करणजीत सिंह मान क्वार्टर फाइनल में कनाडा के गुयोम गोलिन से हार गए। महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में इनुगनबी ताखिलमांबम ने भी भरपूर संघर्ष किया। क्वार्टर फाइनल में कनाडा के चार्ली थिबॉल से हारने के बाद उन्हें रेपेचाज के जरिए वापसी का मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड की जेमिमा यीट्स ब्राउन के खिलाफ वो जीत दर्ज नहीं कर सकी। कुल मिलाकर जूडो मैट पर भारत के लिए ये दिन संघर्ष, वापसी और सीख तीनों का मिश्रण रहा। साइकिलिंग ट्रैक पर भारत की उम्मीदें तेज रफ्तार से आगे तो बढ़ी पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई। स्प्रिंट से लेकर स्क्रैच रेस तक भारतीय खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाया, लेकिन अगले दौर का टिकट हासिल नहीं हो सका। पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में रोजित सिंह यांगलेम ने 10.297 सेकंड के समय के साथ 22वें स्थान पर रहते हुए अपनी टाइम ट्रायल पूरी की। वहीं रोनाल्डो सिंह लेतोंजाम 10.331 सेकंड के साथ 24वें और डेविड बेकहम 25वें स्थान पर रहे। इसके बाद 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस में भी भारत की चुनौती आगे नहीं बढ़ सकी। हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार अपनी अपनी हीट पूरी नहीं कर सके। After rewriting history in Birmingham, India's lawn bowlers arrived in Glasgow carrying the hopes of building on that remarkable legacy. The sport that once delivered India's first ever Commonwealth Games

0: Gold and silver medals had once again raised expectations. This time, though, the decisive moments belonged to the oppositions. In the men's pairs, Navneet Singh and Dinesh Kumar looked in outstanding touch throughout the sectional stage. Four consecutive victories had put the Indian duo firmly on course for the knockout rounds, making their clash against England's Nick Bread and Jamie Walker a crucial one. The contest lived up to its billing, with neither side willing to give an inch before it was eventually decided in a tie break. England held its nerve in the decisive moments, bringing India's impressive winning run and its knockout hopes to an end. Meanwhile, in the women's singles, Nayanmoni Sakhia also started brightly against South Africa's Bridget Hasselman. The South African carried the momentum into the decider, ending Sakhia's campaign and closing India's challenge in the event.
1: और अब आज होने वाले मुकाबलों पर एक नजर। ट्रैक साइकिलिंग में 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस में हर्षवीर सिंह सैकवा और दिनेश कुमार होंगे, 100 मीटर टाइम ट्रायल में रोनाल्डो सिंह, जबकि पैरा साइकिलिंग में 1000 मीटर टाइम ट्रायल महिला मुकाबले में लिशा दास वेलोड्रम में होंगी।
0: इंडिया विल हैव 3 जुडोकास इन एक्शन टुडे विद ऑल बिगनिंग देयर कैंपेन फ्रॉम द राउंड ऑफ 16। इशरूप नारंग वुमेन्स 78 kg, अवतार सिंह इन मेन्स 100 kg एंड यश खंगास इन मेन्स प्लस 100 kg।
1: पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 63 स्वर्ण पदक सहित कुल 154 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड 26 स्वर्ण पदक सहित कुल 100 पदक लेकर दूसरे स्थान पर आ गया है और कनाडा 18 स्वर्ण सहित 59 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत ने 10वें दिन बॉक्सिंग स्वर्ण पदकों के चलते लंबी छलांग लगाई है। 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक लेकर भारत चौथे स्थान पर आ गया है।
0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे प्रेरणा शर्मा और मेरे सहयोगी अनुपम पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
3: That's what you call the performance, guys. क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम की, भारतीय दल की इस बार ग्लासगो में। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि अगला जो कॉमनवेल्थ है वो हिंदुस्तान में होने वाला, भारत की सरजमी पे होने वाला, तो एक बहुत बूस्ट जो है वो मिलता है। एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड कि जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं अहमदाबाद में जो खेले जाएंगे 2030 में दोस्त, वो हमारे लिए अब तक के सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल ग्लासगो होने चाहिए और उस कॉमनवेल्थ होने चाहिए। और उसकी जो नींव है वो ऑलरेडी हमने ग्लासगो में रख दी है दोस्तों। आज अंतिम दिन है एंड लुक फॉरवर्ड दैट विल बी एबल टू ऐड सम मोर मेडल्स इन द टैली फॉर इंडिया। लेकिन अभी मैं जो ऐड करने जा रहा हूँ वो एक बेहतरीन वाला गाना, बहुत ही प्यारा वाला ट्रैक आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 102.6 MHz पर। बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 7:46, यानी आपकी हमारी भाषा में संडे बोले तो फंडे सुबह के 8:15 हो चुके हैं।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपका फेवरेट मॉर्निंग मैगजीन शो। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसवड़ा रंगीला मुंडा अजय गोपाल जी, और ये वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जब हम बोलते हैं ना छोटे से ब्रेक, आई मीन इट, बिल्कुल सिर्फ 90 सेकंड्स में वापस लौट रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: बिल्कुल जी, है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, जिसे सारा का सारा शहर रेडियो रोमियो के नाम से जानता है जी। और हम बात कर रहे हैं हर उस खबर की जो रखता है आपसे सीधा सामाजिक सरोकार, और हर वो जानकारी हम आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं जो आपको थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनाता है। दोस्तों, हमने बात की दोस्तों फ्रेंडशिप डे की, और एक बहुत ही खूबसूरत जो ट्रैक है फ्रेंडशिप डे पर, वो मैंने आपके लिए क्यों किया हुआ है मेरे अपने ब्रेक से पहले, जो मैं 8 से 9 के बीच में लेने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप अंदाज में आज के ज़माने के सुपरहिट ट्रैक, साथ ही साथ कुछ बेहतरीन ओल्डन गोल्डीज भी। मेरे साथ बने रहेगा, बैठे रहेगा, टिके रहेगा, चिपके रहेगा। बहरहाल आपको बता दूँ कि ये जो सप्ताह है दोस्तों, ये जो वीक है, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीड वीक के तौर पर भी मनाया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह के तौर पर भी मनाया जाता है, ताकि जो मदर्स हैं उन्हें पता रहे कि कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, वो देना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी जो है वो बच्चे को देता है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतर आहार होता है, पता है? इससे जो आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है बच्चे का, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतर होता है, यू नो, इन कंपैरिजन ऑफ वो सब चीज़ें जो हम नेचुरल नहीं है, बाहर केमिकल्स होते हैं उनमें, और वो हम बच्चे को देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और स्पेशली वो जो पीरियड होता है पहले 6 से 8 महीने, वो सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के, बहुत सारे जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस होते हैं बच्चे को, दस्त, निमोनिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसका खतरा जो है वो कम कर देता है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो इमोशनल कनेक्ट है ना बच्चे का माँ के साथ, वो बहुत ही बेहतर होता है ब्रेस्ट फीड से दोस्तों। और ये सब प्रूवन थिंग्स हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आप सभी कोई जानकारी देने के साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी करते कि अगर आप यू नो एक्सपेक्टेड हैं, या फिर आपके घर में छोटा नन्ना बच्चा है, तो बिल्कुल ये जो प्रथा, ये जो चलन कम होता जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का, इसे हम अवॉइड करें, और जो स्तनपान है, जो ब्रेस्ट फीड है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें अपने बच्चों के लिए। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। नाउ इट्स टाइम फॉर अदर ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ओनली ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन, शंकर महादेवन की आवाज में दोस्ती का गाना। और मेरा जो दिल चाहता है वो निकल चुका है आपके लिए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर 9 से 10 के बीच। बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं। दिस इज दिल चाहता है फॉर यू।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की, उम्मीदवारों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने एक माह तक चले अभियान के दौरान बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही तेज करने की धमकी दी। तेहरान ने प्रमुख अमरीकी और इसराइल ऊर्जा अवसंरचनाओं पर जवाबी कार्यवाही की चेतावनी दी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, 10वें दिन 8 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और ओडिशा, गुजरात और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने आज गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के सभी श्रोताओं को एक प्यारा सा सुप्रभात। मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो का अपना सुबह का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक

फिलहाल दोस्तों यहाँ बिल्कुल नहीं सोचना है, प्यार तो दिल से कीजिए, खुलकर कीजिए, सबसे कीजिए, क्योंकि ये सबसे ही खूबसूरत नेमत है ईश्वर की। दोस्तों समय है दिल्ली एनसीआर के मौसम की जानकारी का। अगर आप आज घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम का साथ भी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कहीं गर्मी लगने वाली है, कहीं ऐसा लगने वाला है कि अभी बरसात हो जाएगी। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी है, तो ऐसे में अपने साथ एक छाता और रेनकोट रखना एक अच्छा विचार रहेगा। दोस्तों मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का हो, मन का मौसम जो है ना वो हमेशा अपने हाथ में होता है। याद रखिए, बारिश जमीन को खरा सकती है और उम्मीद इंसान को। तो आज का अधिकतम तापमान आपको बता देते हैं, अधिकतम तापमान आज का 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो मुस्कुराइए, सुरक्षित रहिए और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। दोस्तों, कहते हैं कि जब विचारों को रंग मिल जाते हैं तो वो केवल तस्वीर नहीं बनाते, वो भविष्य की तस्वीर गढ़ते हैं। और अगर आपके भीतर भी है कल्पना की उड़ान, सृजन की शक्ति और नए भारत के सपनों को आकार देने का जुनून, तो ये अवसर आपके लिए है, ये जानकारी आपके लिए है। जी हाँ, MyGOV और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय लेकर आए हैं द न्यू स्किल्ड इंडिया पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है और आप 15 अगस्त 2026 तक अपनी रचनात्मक प्रविष्टियां भेज सकते हैं। तो सोचिए, अगर एक पोस्टर करोड़ों लोगों को प्रेरित कर सकता है तो आपका विचार क्यों नहीं। अपने रंगों से आत्मनिर्भर भारत का सपना उकेरिए, अपनी कल्पना को पहचान दीजिए और अपने हुनर को पूरे देश के सामने

प्रस्तुत कीजिए। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ी, तो आप MyGOV की वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्योंकि हर नई सोच नए भारत की शुरुआत करती है। तो अगर आपके अंदर ये गुण है, तो क्यों ना उस गुण को इस्तेमाल किया जाए और दुनिया को दिखा दिया जाए कि हम भी किसी से कम नहीं।

परदेश फिल्म से बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों कहते हैं एक जिम्मेदार नागरिक सिर्फ अपने अधिकार नहीं निभाता बल्कि अपने कर्तव्यों को भी पूरे मन से निभाता है, और इन्हीं कर्तव्यों में से एक है ईमानदारी से कर यानी टैक्स का भुगतान। अब इसी संदेश को रंगों और रचनात्मकता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का अगर आपको मौका मिल जाए तो इसके लिए इनकम टैक्स इंडिया लेकर आया है माय इनकम टैक्स माय प्राइड पोस्टर एंड पेंटिंग कंपटीशन। अगर आपकी सोच अलग है, आपकी कला समाज को प्रेरित कर सकती है, तो ये मंच आपके लिए है। अपने पोस्टर या पेंटिंग के जरिए दिखाइए कि कैसे टैक्स देश के विकास, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और उज्ज्वल भविष्य की नींव बनता है। साथ ही आकर्षक नगद पुरस्कार भी जीतने का आपको सुनहरा अवसर मिलेगा इस कंपटीशन के जरिए। तो देर किस बात की है, अपनी कल्पना को दीजिए रंग और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी को दीजिए एक नई पहचान। और ज्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं इससे जुड़ी तो आप विजिट कर सकते हैं MyGOV.in, क्योंकि देश के विकास की तस्वीर आपके रंगों से भी सवर सकती है। मैं हूं आपकी अपनी गीत गीतांजलि, सुनते रहिए FM रेनबो, जहां हर सुबह होती है कुछ नई, कुछ प्रेरणादायक और जानकारियों से भरी हुई।

दोस्तों कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत। और जब मैं ये गीत सुन रही थी तो उसमें कुछ पंक्तियाँ आई थी कि तेरा मेरा जन्मों का नाता है और यूं ही नहीं रब मिलाता है, करके बहाने बुलाता है। वाकई में हम लोग भी आपसे मिलने के लिए बहाने ढूंढते हैं, सोचते हैं कितनी जल्दी से हमारी ड्यूटी लगे और हम आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो नाता है वो आवाज़ का है और बस दिल खींचा चला आता है आपसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जानकारियों के लिए, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मेरे पास यहाँ पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तैयारी जो

पात्र कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने एक वर्षीय पीजी कोर्सेज की कई लोकप्रिय शाखाओं में सीटों की संख्या जो है बढ़ा दी है। कई बार सीट न होने की वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, तो अब ये संख्या बढ़ा दी गई है। एमए इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, एमएससी मैथ्स और एमकॉम जैसे कोर्सेज में अब पहले से बहुत ज्यादा अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। वहीं एमए इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और एमएससी स्टैटिस्टिक्स में भी सीटों का विस्तार किया गया है। तो छात्रों के लिए ये फैसला उच्च शिक्षा के नए अवसर लेकर आएगा। तो अगर आप भी इनमें से कुछ भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बस एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारा हर एक कदम हमें हमारी मंजिल की तरफ लेकर जाता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद। स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि एक छोटी सी कल्पना भी देश की पहचान बन सकती है, तो आपके लिए एक बेहद खास अवसर आया है। इंडिया पोस्ट, जो पिछले 170 से भी अधिक वर्षों से देश के हर कोने तक लोगों की भावनाएं, संदेश और भरोसा पहुंचाता आ रहा है, अब अपनी नई पहचान के लिए एक ऑफिशियल मैस्कॉट की तलाश में है और इस पहचान को गढ़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है देश के रचनात्मक लोगों को। इंडिया पोस्ट मैस्कॉट डिजाइन कॉन्टेस्ट के तहत आपको ऐसा मैस्कॉट तैयार करना है जो विश्वास, सेवा, समावेशिता, नवाचार जैसी भारत डाक की मूल भावनाओं को दर्शाए। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर हर भारतीय को इंडिया पोस्ट की विश्वसनीय और आधुनिक छवि का एहसास हो। तो अगर आपको ड्राइंग, इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल आर्ट या कैरेक्टर डिजाइन का शौक है, तो ये आपकी प्रतिभा दिखाने का बहुत ही बेहतरीन मंच है। सबसे खास बात, आपके डिजाइन को राष्ट्रीय पहचान मिलने के साथ साथ आकर्षक नकद पुरस्कार जीतने का अवसर भी मिलेगा। तो अपनी कल्पना को दीजिए एक नई दिशा और बन जाइए उस नए चेहरे के निर्माता जो आने वाले वर्षों में पूरे देश में इंडिया पोस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप MyGOV के इनोवेटिव इंडिया पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, अपने रचनात्मकता को वहां पर जाकर आप पोस्ट कर सकते हैं और फिर जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और फिलहाल के लिए याद रखिए, रचनात्मकता तभी सार्थक होती है जब वो समाज और देश की पहचान बनने का अवसर पाए। तो बस अपने रंगों को, अपनी उड़ान को मुट्ठी में बंद करके नहीं रखना है, उसे खोलकर उड़ने के लिए इजाजत देनी है। फिलहाल मेरे साथ सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत मिलकर।

दोस्तों, अगर आपने आज पूरा दिन एफएम रेनबो के साथ बिताने का मन बना लिया है तो मैं आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता देती हूं जो आपको जोड़े रखेगा हमारे साथ। तो अब से कुछ ही देर में सुबह 9 बजे गोपाल भट्ट लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, जहां नए गीतों के साथ पुराने गीतों की मधुर यादें भी आपका साथ निभाएंगी। 11 बजे आप सुन सकते हैं एक विशेष कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व और उनके प्रेरणादायी जीवन पर एक विशेष प्रस्तुति सुनने का आपको अवसर मिलेगा। दोपहर 2 बजे बच्चों के लिए होगा आशियाना कार्यक्रम, जिसमें छोटे उस्ताद जैसी मनोरंजक प्रस्तुति आपका इंतजार कर रही है। 3 बजे कोमल भारती लेकर आएंगी कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जहां मानसून के मौसम में होने वाले संक्रमणों पर विशेषज्ञों से उपयोगी जानकारी साझा की जाएगी। शाम 4 बजे वीर दमन सिंह के साथ होगा अल्फा जैन, एक रोचक लाइव क्विज कार्यक्रम जिसमें ज्ञान भी होगा और मनोरंजन भी। शाम 5 बजे कोमल भारती के साथ सिटी लाइट्स, जो शहर की हलचल, ट्रैफिक अपडेट्स, दिलचस्प जानकारियां आपको देंगे, आपका साथ निभाएंगे। 5:30 बजे फॉर्म टू सिटी, जो कृषि और स्वस्थ जीवन से जुड़े विषयों पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति आप सुन सकते हैं। शाम 6 बजे भगवती लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स, जहां आपके व्हाट्सएप संदेश और आपकी भागीदारी कार्यक्रम की जान बनेंगे। 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, 9 बजे संजीव श्रीवास्तव के साथ सुनिएगा आपकी याद आती रही कार्यक्रम, जिसमें 90 के दशक के से लेकर आज तक के पसंदीदा गीत आपकी शाम को यादगार बना देंगे। और 11 बजे दिन का समापन होगा संजीव श्रीवास्तव के साथ रंगे महफिल में, जहां गजलों की महक और सुरों की नजाकत आपकी रात को और भी खास बना देगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ पूरे दिन, सुनते रहिएगा आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल।

दोस्तों, आज की इस मुलाकात को बस यहीं विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज की सुबह आपके लिए सुकून, मुस्कान और नई ऊर्जा लेकर आई होगी। जाते जाते बस इतनी ही सी बात कहूंगी कि जिंदगी की भाग दौड़ में दोस्तों इतना भी मत उलझिए कि अपने ही दिल की आवाज़ सुनना हम भूल जाएं। हर दिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, क्योंकि खुश इंसान ही खुशियां बांट सकता है। इसी प्यारी सी बात के साथ, उम्मीद के साथ कि आप मुस्कुराएंगे, हंसते रहेंगे, गीतांजलि आपसे इजाजत चाहती है। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। नमस्कार।

आकाशवाणी केएफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। तेलंगाना पुलिस ने एक माह तक चले अभियान के दौरान बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदव बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। खेल के मैदान से ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39 हुई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और मौसम समाचार में ओडिशा, गुजरात और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी दिल्ली एनसीआर के आबो हवा में तैरती ये ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 9:03 यानी कि संडे सुबह के 9 बज चुके हैं। ये वो समय है जब हम आपसे मुखातिब होते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं नॉन स्टॉप अंदाज में दिल के तराने, गाने, नए पुराने।

नॉन स्टॉप अंदाज में आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर दिल के तराने, गाने नए पुराने। अगर कोई दोस्त है जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो आज खैरियत पूछना तो बनता है।

102.6 MHz पर आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा नंगला मुंडा अजय गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

102.6 MHz पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने, यहाँ पर आज के जमाने के सुपर हिट ट्रैक्स और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन ओल्ड एंड गोल्डीज भी। और अब वक्त है एक बेहद ही बेहतरीन ओल्ड एंड गोल्डीज का, किशोरदा की आवाज में ये ट्रैक दोस्तों, दोस्ती का दिन। और अगर ये गाना ना बजे तो फिर मुझे लगता है शो अधूरा सा रहेगा। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगला मुंडा अजय गोपाल। वे गुड मॉर्निंग एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये बेहतरीन गोल्डन गोल्डीज आप सुन रहे थे हमारे साथ फंडे वाले संडे में। सुबह की अगर हम बात करें तो घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 9:18 यानी कि सुबह के सवानो हो चुके हैं दोस्तों। और फटाफट हम आपको बता दें मौसम का हाल। आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, पूरे हफ्ते जो बादल हैं उनकी आवाजाही रहेगी दोस्तों। थर्सडे को हालांकि उम्मीद की जा रही थोड़ी अच्छी बारिश होगी, हालांकि जो छिटपुट बारिश का दौर है वो पूरे हफ्ते जारी रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर गोइंग टू बी 34 degrees centigrade इन दिस वीक, जबकि मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है लगभग 26 से 27 degrees centigrade के आसपास। तो ये खबर दी आपके लिए मौसम के मिजाज की। अब एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे लूंगा दोस्तों, और जब हम कहते हैं कि छोटा सा ब्रेक, आई मीन इट। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में वापस लौटूंगा और उसके उस पार फिर शुरू होगा नॉनस्टॉप अंदाज में दिल के तराने, गाने नए पुराने। आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: पर हम वापस लौट चुके हैं दोस्तों, और अब फिर से शुरू करते हैं नॉन स्टॉप अंदाज में दिल के तराने, गाने नए पुराने। मोहित चौहान गा रहे हैं आपके लिए इलाही।

बैक टू बैक म्यूजिक सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगला मुंडा जी गोपाल। अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप अंदाज में दिल के तराने गाने ने पुराने दिल्ली दसवन रंगला मुंडा जी गोपाल आपके साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 9:30 बोले तो फंडे वाले संडे की सुबह के 9:30 हो चुके हैं दोस्तों। और अब पड़ाव है एक और ओल्ड एंड गोल्डीज का, और ये जो खूबसूरत ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ये है 1973 में फिल्म जंजीर से। जी हाँ दोस्तों, शेर खान का वो किरदार जिसने कहीं ना कहीं प्राण साहब की अदाकारी को अमर बना दिया। इंस्पेक्टर विजय के साथ वो कॉम्बिनेशन आज भी दोस्तों हम याद करते हैं। मनाडे की आवाज़, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गुलशन बावरा के बोल, और ये जो फिल्म आई कहीं ना कहीं बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन अदाकारी में शामिल हो गई। और अगर देखें तो दोस्ती के लिए एक एंथम की तरह ये ट्रैक उभर कर आया। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बज जाते रहिए। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक हमारे साथ। अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप अंदाज में आज के जमाने के सुपरहिट ट्रैक्स और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन ओल्डन गोल्डीज भी। इस बेहतरीन ओल्डन गोल्डीज के बाद अब केके की आवाज में इसलिए तो कहता हूं मैं हूं ना

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप अंदाज में बैक टू बैक म्यूजिक। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दा सोना रंगला मुंडा अजय गोपाल जी। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, पेरी पनते नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। अब वक्त है दोस्तों हमारे एक और ओल्डन गोल्डीज का, दैट्स गोना बी द लास्ट सॉन्ग ऑफ द शो टुडे। और ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 1980 में ये मूवी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1980 में फिल्म आई थी दोस्तों दोस्ताना। और ये गाना कहीं ना कहीं आई शुड से लेजेंडरी फ्रेंडशिप एंथम बन गया दोस्तों। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब एक साथ इस ट्रैक को गाने के लिए आए और म्यूजिकल ड्यू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे कंपोज किया, आनंद बख्शी ने इसे बोल दिए और अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान ने क्या बेहतरीन काम इस फिल्म में किया। राज खोसला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया यस जौहर ने। आपके लिए निकल चुका है ये बेहद ही खूबसूरत ट्रैक सलामत रहे दोस्ताना। हमारा इसी उम्मीद के साथ कि ये दोस्ताना सलामत रहेगा मैं आपसे यहाँ पर अनुमति लूँगा। एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए ऑलरेडी क्यू है 9:45 पर, बने रहिए हमारे साथ।

0: apply can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, ट्रेड यूनियंस या कोई भी मिसक्रिएंट व्यक्ति उसको मिसगाइड कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इशूज़ हैं उन इशूज़ को वो एड्रेस करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी की जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस एड्रेसल कमेटी भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी, सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस एड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 days, कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेलियर हो जाए सेटलमेंट. अब कौंसिलर ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिटेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाएगी.
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो कर्मचारी जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member tribunal। पहले केवल 1-member tribunal था, अब हमने बना दिया है 2-member tribunal और इसके अंदर एक जुडिशल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर 2-member tribunal है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट्स या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज को सुने। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइज करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइज करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पे वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा आपका, डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट है, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीजें बताई, ESI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें, सो आपका 80% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा, इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPFO और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है। और जो ये सारे चीजें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को गवर्न करें। सो इसमें भी दो अथॉरिटीज बनाई गई है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेच्युटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है, बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्ड्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है, जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना

0: भविष्य की नई राहें गढ़े, आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026।
0: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, हम सभी के प्रिय, हम सभी के आदरणीय। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को और देश के प्रति उनके योगदान को जानें, समझें और उसके महत्व को भी पहचानें और साथ ही ये भी जानें कि किसी एक साधारण से परिवार में जन्मे किसी बच्चे की यात्रा रामेश्वरम से जब राष्ट्रपति भवन तक होती है तो बीच के क्या पड़ाव होते हैं और जीवन किस तरह से उनके सामने धीरे धीरे खुलता है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवाती हूँ। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री अनुज सिन्हा जी को। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। आप एडवाइजर भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
3: नमस्कार, थैंक यू।
2: हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नकुल पराशर। अप्लाइड फिजिक्स में आपने PhD की है, आप ऑथर भी हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड रहे हैं आप और साथ ही विज्ञान प्रसार के निदेशक भी रहे हैं। नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
2: डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं। कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी है, कलाम तुम लौट आओ पुस्तक आपने लिखी है, कलाम इंस्पायर्स आपकी रचना है और एक बेहद खास बात ये है कि डॉक्टर रश्मि ने जब कलाम साहब की आत्मकथा लिखी तब उनका ही मार्गदर्शन रश्मि जी को प्राप्त हुआ। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो साथियों, इससे पहले कि मैं अपने सवालों की बौछार अपने विशेषज्ञों पर करूं और अपने विशेषज्ञों के माध्यम से हम कलाम साहब को और जानें, आइए मैं आपको सुनवाती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो उद्गार, मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उल्लेख किया है।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ।
2: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द और उन्होंने एक और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, बेहद सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञों से ये सवाल करते हैं। अनुज सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम जब APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं तो बहुत सम्मान मन में आता है। हम उन्हें अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखें या उनके व्यक्तित्व के ऐसे भी और कई पहलू हैं जो हम सबको जानने चाहिए।
3: बहुत सही बात है, डॉक्टर कलाम जो हैं वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं
2: जी।
3: उनकी शुरुआती जो लाइफ थी बड़ी कठिन थी
2: जी,
3: और उसके बावजूद उनके पास जो वैल्यू सिस्टम्स आए उनके फैमिली के रिलेशन की वजह से, वो ऐसे थे कि आज भी मेरा ख्याल है उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। और वो जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसकी वजह से वो पहले स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने अपना सिक्का जमाया
2: जी,
3: उसके बाद डिफेंस प्रोग्राम में अपना हुनर दिखाया और उसके बाद वो और कई चीज़ों में रहे, परंतु लार्जली जो उनका राष्ट्रपति पद पर जो रहे 5 वर्ष उसमें जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद भी वो विद्यार्थियों के साथ टीचर्स के साथ जुड़े रहे और उनका कहना था कि मैं इन बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ
2: जी।
3: उनको एक मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा लगता था जब वो बच्चों से बात करते थे और ये सब मिला जुला के जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी।

0: कि समाज तक पहुंचना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा भी सिन्हा साहब ने कहा कि कलाम साहब एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों से जुड़े हुए थे और शुरुआती की दौर से, अपने जीवन की शुरुआत से उन्होंने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के प्रति उनकी लालसा रही और खासकर विज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने की उन्होंने बहुत चेष्टा करी
0: जी।
1: और इसीलिए वो हर तरह से, ताकि विज्ञान ऐसा ना लगे कि वो लैब में कुछ अजीब सा कुछ चल रहा है जो लोगों तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए उसको सबसे पहले उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को खुद आत्मसात किया था, बचपन में देखा कि किस तरह से विज्ञान जो है बहुत जरूरी है हम सब के लिए, तो बच्चों के बीच में गए, बच्चों से मिलना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद है कि 14 मई 2003 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके पास स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स आए, तो उन्होंने उनके साथ बैठ के अपने वो सारे अनुभव साझा किए। तो आप जब आर्काइव्स में उनके देखते हैं तो ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलते हैं जहां वो विज्ञान को आम आदमी तक, आम आदमी के समझने लायक बनाने की पूरी उन्होंने पुरजोर कोशिश की और पुरजोर उसकी वकालत करी, और वो वकालत उन्होंने अपने जितने भी एक्शंस थे उनके जरिए लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करी। तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 14 मई 2003 का उनका ये जो स्पीच आर्काइव से मिलता है, उसमें उन्होंने कैसे बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे लोगों ने उनको प्रभावित किया और कैसे जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो चीजें हैं उनके समझ में लगती थी, उनको उन्होंने विज्ञान के जरिए उसको दूर भगाने की चेष्टा करी, लोगों के अंदर उसका प्रसार किया। तो उनका ये शुरू से खुद ये रहा कि पहले खुद करके देखूं और उसको अनुभव करूं और तब लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये काम जो विज्ञान संचारक या प्रचारक होता है उसका ये एक बहुत बड़ा गुण है और इसको उन्होंने बखूबी करके दिखाया
0: जी। यहाँ मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना जानना
1: बिल्कुल जरूर जरूर। और चूंकि कलाम साहब शुरू से हमारे डिफेंस में, हमारे जितने फौजों के लिए काम करते थे, तो मुझे हमेशा से उनका ये जज्बा बहुत अच्छा लगता था। और लक्ष्य फिल्म का एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, मेरे ख्याल से बहुत सामयिक रहेगा, बहुत प्रासंगिक रहेगा
0: जी। बिल्कुल, हम यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सभी के प्रिय और सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो आसीन रहे ही, भारत के आप राष्ट्रपति रहे, लेकिन साथ ही आप छोटे छोटे विद्यार्थियों के दिलों में भी बसे रहे, और यही सबसे बड़ी खास बात है जो उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आज हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं अनुज सिन्हा जी, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और साथ ही आप पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। हमारे साथ डॉक्टर नकुल पराशर हैं, आप भी पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के और साथ ही आप ऑथर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, आपने कलाम साहब की आत्मकथा लिखी है और भी अपनी रचनाएं आपने कलाम साहब को समर्पित की हैं, लेखिका हैं आप। तो रश्मि जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पुस्तकें तो कलाम साहब पर बहुत लोगों ने लिखी हैं और गर्व भी महसूस करते हैं वो कि उनकी जो एक रचना है वो कलाम साहब के नाम हुई, उनकी लेखनी ने ये सौभाग्य पाया। लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि जब आपने अपनी पुस्तक लिखी तो स्वयं कलाम साहब का मार्गदर्शन आपको मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। कैसा लगा आपको जब पहली बार आप उनके पास गईं, उनसे मिली, और क्या फिर प्रक्रिया रही आगे बातचीत की?
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं डॉक्टर कलाम साहब से, मैं दरअसल से 3 बार मिली
0: जी,
1: तो जब मैंने ये विचार किया कि मैं उन पर पुस्तक लिखूं, तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिली और मैंने उनसे कहा कि सर मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहती हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर तो बहुत किताबें हैं, बहुतों ने लिखा है, अब आप क्या लिखेंगी? तो मैंने कहा कि मैं आप पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, एक जीवनी परक उपन्यास। तो हंसते हुए बोले कि अब तो मुझे हीरो बनाओगी। तो मैंने कहा सर आप हीरो हैं, मैं आपको हीरो क्या बनाऊंगी, मैं तो बल्कि जब अपने युवाओं से, बच्चों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, और जब वो मुझे किसी बॉलीवुड के स्टार का या हॉलीवुड के स्टार का नाम लेते हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर कलाम मेरे हीरो हैं, विवेकानंद मेरे हीरो हैं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। तो सर वो हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला के हंसे। और आप यकीन मानिए, मैं सोच के गई थी कि मैं देश के इतने बड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, भारत रत्न

0: से मिल रही हूँ, मैं इतने बड़े प्रौद्योगिकी के और अपने वैज्ञानिक से मिल रही हूँ जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दिया, लेकिन जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था। इतने विनम्र, हंसता हुआ चेहरा। आज जब मैं डॉक्टर कलाम को याद करती हूँ तो मैं उन्हें किसी पद से याद नहीं कर पाती। कभी मेरे सामने उनका वो चेहरा नहीं आता, ना राष्ट्रपति वाला, ना बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सौम्य सादगी से भरा चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी आपसे मुलाकात में अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे, वो हमेशा ये पूछेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं में कैसे देश के प्रति संस्कार पैदा होंगे। उनका 2020 विजन इसी को समर्पित था, जिन्होंने अंतिम सांस तक जिस पर उन्होंने काम किया। तो मैं डॉक्टर कलाम को इस तरह से देखती हूँ। यहीं से बस इतनी प्रेरणा गहरी होती चली गई कि अब मुझे एक ऐसा उपन्यास देना है ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाए, हमारे बच्चों को एक सपना दिखाए, और यहीं से यात्रा शुरू हो गई।
1: जी, तो जब आपकी पुस्तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद का क्या अनुभव था, ये कलाम साहब के हाथों में पहुंची?
0: हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये पुस्तक शुरू की थी तो कलाम साहब के आशीर्वाद से शुरू की थी। उन्होंने मुझे कुछ चीजें भी सुझाई थी, वो सब मैंने डाली, यहाँ तक कि उनके हाथों में लॉन्च भी करवाना चाहती थी, लेकिन जब किताब का अंतिम रूप आया तो वो दुनिया से दैहिक रूप से जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत दुख का समय था। तो अगर आप इस उपन्यास को उठाएंगे तो उसकी जो पहली पांडुलिपि थी उसमें प्रारंभ और अंत थोड़ा अलग था, बाद में मुझे उसका अंत अलग करना पड़ा क्योंकि तब वो जा चुके थे। जब मैं ये पुस्तक पूरी कर रही थी तो मैं पूरी प्रेरणा से पूरी कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर कलाम दैहिक रूप से चले गए तो मैं बहुत उदास थी, निराश थी, लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरे प्रकाशक ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं रश्मि, इस पुस्तक को पूरा करेंगे, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। तो ये पुस्तक पूरी हुई, फिर डॉक्टर एसएम खान साहब ने इसको लॉन्च किया और इस तरह से ये फिर पुस्तक आई।
1: तो अपनी पसंद का कौन सा गाना इस समय कलाम साहब को याद करते हुए आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगी?
0: मैं सुनाना चाहूंगी आशाएं आशाएं, कुछ करने की हो आस आस, क्योंकि ये डॉक्टर कलाम के तो पूरा जीवन इसी में ही है।
1: जी, तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज का हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे भारत रत्न जो हर दिल में बसते हैं, और उनके जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब जब हम उनके बारे में जानते हैं एक नई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, अनुज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर नकुल पराशर हैं, डॉक्टर रश्मि हैं। मैं अनुज जी अब आपसे जानना चाहूंगी, हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, ऐसे में हम उस समय की भी जरूर बात करें जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। आप उस दौर को कैसे याद करते हैं, क्या उस तरह चुनौतियां रही थी उस समय उनके सामने?
1: डॉक्टर कलाम का बचपन जो है वो बहुत कठिन था
0: जी,
1: लेकिन उनके जो विचार थे और जो उनके साथ जो लोग मिले जिन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट दिया, एक रोल मॉडल बन पाए
0: जी,
1: वो अधिकतर मतलब कहूँगा पेरेंट्स खुद ही मानते हैं बात को, कुछ टीचर जिनके नाम वो लिखते हैं बताते भी हैं
0: जी,
1: ये दोनों ने मिलकर उनको मतलब इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो बीएससी करे, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, और उनको मौका मिल गया कि वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जुड़ गए, और वहाँ पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो सब जगह लिखा ही हुआ है
0: जी।
1: उनका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ जुड़ाव था उसमें उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि रश्मि जी की पुस्तक में भी आ रहा है
0: जी,
1: कि फेलियर्स को किस तरह से सामना करना और उससे डिफीट नहीं होना है ना, उसको आगे बढ़ाना है। तो उससे फिर वो जब डिफेंस में आ गए तो कुछ उनके मन में आ रहा था कि मैं तो स्पेस में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, क्यों मुझे भेजा जा रहा है वहां पर। लेकिन जो उनको जब चुनौती बतलाई गई कि क्या है, और वो चाहते थे कि मिसाइल्स बनाई जाएं, और उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेस रिसर्च में उससे उससे मिसाइल्स को भी फायदा बेनिफिट होगा
0: जी,
1: तो फिर वो यहाँ आ गए। और उन्होंने सबसे पहले मैं कहूँगा वो काम करा जो पुराने जो वहाँ पे वैज्ञानिक लोग थे नहीं कर पा रहे थे, वो था नवाचार। उन्होंने इनोवेशन को बहुत सपोर्ट दिया
0: जी,
1: और उस प्रकार से उन्होंने फिर जो अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, जो मिसाइल्स बनाई एक के बाद एक उन्होंने, उनकी टीमों ने
0: जी,
1: वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने उसमें इनोवेशन लाया। और एक उदाहरण है अगर आप सुनना चाहें तो
0: जी,
1: समस्या थी जिसमें वो जुड़ रहे थे, फंसे हुए थे, तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से और ढेरों मतलब इंस्टीट्यूशन से वहाँ के लोगों को बुलाया, उनके सामने प्रॉब्लम पेश करी गई, उनको 7 दिन का समय दिया गया, और जो उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाले उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करा गया, और फिर उसके साथ मिलकर उन्होंने अपना जब लॉन्च करे सैटेलाइट तो सक्सेसफुल हुए
0: जी।
1: इसी प्रकार से उनके मतलब जो होता था कि जो सरकारी तरीके से अगर करते तो शायद उनको लग जाते उसमें महीनों लग जाते, यहाँ उन्होंने हफ्तों में वो करके दिखा दिया
0: जी।
1: फिर वो आगे एटॉमिक एनर्जी में उनको लाया गया, उस समय पोखरण की तैयारियां हो रही थी और उनके नेतृत्व में पोखरण 2 बनाया गया, और जिसकी वजह से फिर 1998 के बाद से हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं
0: जी।
1: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया, और उसके लिए वो अपनी तरह से पूरे क्लियर थे कि देश को पावरफुल होना चाहिए, और वो अगर पावरफुल है तो ही मतलब आगे बात बढ़ेगी, पीस रहेगा, और अगर पावरफुल नहीं है तो पीस रहना मुश्किल है
0: जी।
1: तो शांति के लिए उन्होंने मतलब ये करा था, और उसके बाद फिर वो समय देके वो चाहते थे स्पिरिचुअलिटी
0: जी,
1: और बहुत समय उन्होंने खर्च करा अपना 1997 के बाद से, कई गुरुओं से मिले, ब्रह्म कुमारी के वहां पर जाके समय बिताए
0: जी,
1: और भी कुछ करा। उनको लगता था कि मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ हम लोगों को यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ हमने करना चाहिए
0: जी।
1: वो समय उनके मेरे ख्याल 3-4 साल जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, फिर वो राष्ट्रपति बन गए, और वो तो माननीय हम लोग के वो पीपल्स प्रेसिडेंट रहे
0: जी।
1: क्या क्या नहीं करके दिखाया उन्होंने, जो उनका जुड़ाव रहा बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो देख के हम लोग को हमेशा ही मेरे ख्याल सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनते थे, उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ बात करके शायद नहीं मिलती
0: जी।
1: तो जैसे हम लोग एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस करते थे हर वर्ष, वो उसमें जुड़ते थे आके, और उनके पास अगर मतलब समय नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6-7 बार आए हैं वो, और उन्होंने मतलब बच्चों से बात करी है और प्रश्न पूछते थे
0: जी,
1: प्रश्न का जवाब देते थे, जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देते थे। मेरा ख्याल है उनकी जो ये क्वालिटीज हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और में ढूंढे मिले।
0: तो आपने तो देखा है बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का उत्साह उस समय कैसा होता था, किस तरह की प्रतिक्रिया बच्चे देते थे?
1: बच्चे जैसे बिल्कुल मगमुग हो जाते थे।
0: जी,
1: मेरे बगल में इधर एक लड़की बैठी हुई थी, पसीना टपक रहा है उसके, हम लोग मैसूर में थे और कलाम साहब जो है उसको बात पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन, ये वो इतना मतलब सिर हिला के उसके लिए मतलब सिर्फ उस पूरे हॉल में सिर्फ दो लोग थे, वो और डॉक्टर कलाम
0: जी,
1: बाकी 600-800 लोग और हैं वो उनके लिए मतलब नहीं था, क्योंकि इससे बात करी थी उन्होंने, लड़की से बात करी, पूछा था कुछ
0: जी।
1: तो इतना मुझे अच्छा लगा कि देखो ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन सीनियर साइंटिस्ट एंड यंग गर्ल 12 इयर्स 13 इयर्स
0: जी,
1: लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन है, वो लड़की समझ रही है क्या बोला जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि लड़की क्या जवाब दे रही है
0: जी।
1: और उसको मतलब बहुत एनकरेज करा और बैठा दिया। आई वुड लाइक टू नो कि वो लड़की कहाँ है, मोस्ट प्रोबब्ली वो कहीं जरूर साइंटिस्ट ही होगी
0: जी।
1: तो ये इस प्रकार का उनका जो पकड़ था वो इम्पॉसिबल टू रिट्रेस। एक और बताऊंगा मैं कि December 2004 में वो सुनामी आ गई थी, बहुत लोग डिस्टर्ब थे, उनका समय था हम लोग के साथ 26 तारीख का, वो 26 तारीख को ये सुनामी आ गई थी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि 29 को आ जाएंगे, 29 को आ गए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं
0: जी।
1: बहुत से लोगों में यहाँ भी मतलब कोस्टल एरिया पे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वो भी परेशान थे, लेकिन उनका आगे हम बच्चों से बात करेंगे
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सोच के जान के
0: जी। तो बच्चों को वो प्राथमिकता देते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर समाधान भी करते थे, और इसीलिए शायद बच्चे जो हैं वो भी जो कलाम साहब ने उन्हें सपने देखने सिखाए थे उन पर वो आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो श्रेय देते हैं कलाम साहब को ही कि आज उन्हीं की वजह से हम ऊंचाइयां छू पाए जीवन
2: जी।
0: में जी। तो यहाँ मैं अनुज जी आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए।
1: गानों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक गाना जो याद आ रहा है
0: जी,
1: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
0: जी,
1: नया जोर है ना, मिलके लिखेंगे कहानी
0: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना,

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और जैसा कि ये गाना भी हमें कहता है, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। तो कलाम साहब ने अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा दी, उन्होंने नवाचार को प्राथमिकता दी और उन्होंने नए मस्तिष्क जो बच्चे थे उनके अंदर ऊर्जा भरी। यहाँ मैं डॉक्टर नकुल आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब जब भी बच्चों से मिलते थे तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़े सपने देखो, ये हमेशा कहते थे। आपको क्या लगता है इस एक पंक्ति का क्या जादू रहा होगा?
1: पंक्ति का ये जादू रहा कि उन्होंने खुद इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले किसी चीज को कहने से पहले वो खुद आत्मसात करते थे और फिर चाहते थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों में उस बात को पहुंचा पाए। और उनका हमेशा ये रहा कि सपने आपके अंदर बड़े होने चाहिए कि आपको आपकी नींद गायब हो जानी चाहिए और जब तक आप वो सपना हकीकत में ना हासिल कर लें तब तक आप उस पे काम करते रहें। ये एक तो उनका ड्रीम का रहा। दूसरा, बहुत ऐसे कई अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक लाभ मिला, मेरे दिवंगत ससुर साहब के साथ उन्होंने काम किया डीआरडी में, वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी एडवाइजर थे
0: जी।
1: तो कई बार उनसे पता चलता था कि देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना उनका नियम था। ये कई सालों से ये नियम था और ये नियम जब उनसे पूछा गया तो कहाँ से मिला, तो वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें चार भाई बहन थे वो, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने उनको सहयोग करके उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई थी
0: जी।
1: तो उसके अंदर उनको ये एहसास था कि कैसे अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, वो कहते हैं ना कि नो पेन्स एंड नो गेन्स, उसका वो सार्थक उदाहरण थे और वो करके दिखाया उन्होंने
0: जी।
1: और रही बात उनके बच्चों के साथ और सबके साथ, उनका ये मानना था, जैसे अभी हमने कहा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, अभी सिन्हा साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाइल पे काम किया
0: जी।
1: तो वो मिसाइल मैन हुए और ऐसे न जाने कितने

0: एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ते चले गए, उनका स्वभाव, उनका काम, वो एक आदर्श स्थापित करते चले गए। जैसे डॉक्टर अश्विन ने बहुत अच्छा कहा अभी कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले जो भी कुछ सोचते थे उसको पहले उसको प्रैक्टिकली कर। और साइंटिस्ट का एक मेरे ख्याल से गुण है कि वो कोई भी चीज अगर प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस कुछ भी करता है, तो उससे पहले वो सोच के रखता है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी तमाम चीजें अगर आप देखें, और साथ में उनकी जो एक और किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पे ये आपको पढ़ने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर रश्मि का उपन्यास और विंग्स ऑफ फायर हर एक बच्चे को और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसमें ये लालसा है, जिसमें वो समझता है कि चाहे वो वैज्ञानिक वो बैकग्राउंड से हो या ना हो, पर एक आम आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसे कहते हैं किसी भी चीज के लिए एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म या बुक होती है, उसी तरह से वो ये दो किताबें मेरे ख्याल से सबके लिए उतने अच्छे तरीके से डॉक्टर रश्मि का उपन्यास सहजता से लिखा गया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। इस पे अगर हम डॉक्टर रश्मि से भी और चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी बिल्कुल। मैं रश्मि जी अब आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें डॉक्टर कलाम के, तो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में भी जरूर हमसे चर्चा करें और हमें ये बताएं कि आम तौर पर उस तरह की कठिनाइयों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं और कैसे कलाम साहब एक उदाहरण बने सबके सामने।
2: जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे सुविधाओं की बात करते हैं तब हमें डॉक्टर कलाम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह सामने आते हैं। डॉक्टर कलाम के अगर बचपन को देखें आप, तो धनुषकोटी के, रामेश्वरम के धनुषकोटी के एक छोटी सी जगह से निकले वे बालक थे जो कि सपने देखते थे। छोटा सा उनका घर जहाँ वो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने माताजी, पिताजी, उनके पिताजी मस्जिद के मेन, और उस परिवार से वो निकल कर आ रहे हैं। और हम जैसा कहते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उनके जो कजन थे एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने उस बचपन में, जब आज हमारे बच्चे सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें एसी रूम चाहिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लौटते वक्त अखबार घरों घरों में डालते थे, इसके बाद आकर फिर अपने स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो आप उस बड़े व्यक्ति को ये ना देखें कि वो बड़ा बन गया, ये देखें वो बड़ा किस किस तरह से बना, किन किन जर्नियों से गुजरा, क्या क्या संघर्ष थे उसके जीवन में, तब वो बड़ा बना। तो डॉक्टर कलाम हमें यही बता रहे हैं, वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे वो सब, लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनको देखकर ये नहीं कहती कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्होंने मुझे प्रभावित किया, नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में कि आप प्रेरित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक, आप ये सोचिए कि वो अपने शांति के क्षणों में वीणा बजाता था
1: जी,
2: जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दी वो कर्नाटक संगीत सुना करते थे
1: जी।
2: तो ये उनके जीवन के वो पक्ष हैं जो और हमें उनके लिए एकदम प्रेम से, आदर से भर देते हैं।
1: जी बिल्कुल। और इनमें विरोधाभास भी नजर आता है, लेकिन एक इस तरह का विरोधाभास जैसा कि आपने कहा कि वो हमें प्रेरित करता है। मिसाइल मैन के हाथों में जब हम वीणा देखेंगे तो कैसी अद्भुत छवि वो लगेगी
2: जी, क्योंकि मिसाइलें जो है वो मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना रही हैं। जब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जब वो संगीत से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, तब उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो कार्य था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अध्यात्म के स्तर पर था, उनके लिए वो भक्ति थी, देश प्रेम उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। तो हम ऐसे उन्हें समझते हैं आज
1: जी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी कलाम साहब को पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि जो सपने उन विद्यार्थियों के मन में हैं, उसकी राह इस जीवनी से हमें मिल सकती है, कलाम साहब को जानने से मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं और हम अभी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत हमें बनाना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा था इंडिया 2020, हम इस बारे में जानना चाहेंगे।
3: डॉक्टर कलाम के बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं
1: जी,
3: जिनको सबको लिस्ट भी नहीं करा जा सकता, अपना समय दिए और एक कमेटी में वो चेयरमैन थे, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल में, और उसमें उन्होंने 5 एरियाज जोड़े थे जिसपे उन्होंने कहा था कि देश को काम करना चाहिए, जो आप कह रही है कि आगे कैसे बढ़े, विजन 2020 क्या होना चाहिए। एक उन्होंने कहा था कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग इसमें जोड़ना चाहिए
1: जी।

0: हाँ, और उसके उन्होंने मतलब कई सजेशन दिए थे उनकी कमेटी ने। दूसरा पावर जनरेशन, हम लोगों को जितनी हम लोगों को जरूरत है उतने उसे उतनी होनी चाहिए, इस समय कम है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था
1: जी,
0: किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर के साथ जोड़ के, और उस पर भी उनका अपना जो बड़ा तजुर्बा था हैदराबाद में और उससे पहले भी हेल्थ के साथ उन्हें बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा उनका। फिर उस समय जो आ रहा था ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
1: जी,
0: ये पिछले 20 वर्षों में हमने देखा ही है पूरा देश किस तरह से बदल गया। और फिर उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं डिफेंस के और स्पेस के
1: जी,
0: इसमें हमें आगे बढ़ के रहना चाहिए। तो विजन 2020 जो है उसमें इन सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाया था। साथ में ये मतलब एक उनकी जो की बैकग्राउंड उस तरह का रह चुका है, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज
1: जी,
0: इसका बनता है पूरा PURA। वो कहते थे कि इस पे काम करो, तो उन्होंने IIT चेन्नई को, IIT दिल्ली को और कई संस्थाओं को जोड़ा था कि कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं कि लोग गांव में रहें और गांव में ही कंट्रीब्यूट करें रादर देन कि सबके सब माइग्रेट करके शहरों में आए
1: जी।
0: तो रूरल एरियाज में उनका कहना था कि अर्बन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो उसमें कई उन्होंने मतलब अपना समय लगाया, जो आपकी जो बतानी थी कि रात रात भर वो सोचते थे समझते थे
1: जी,
0: बातचीत करते थे और उससे उभर के निकल के आता था कोई अगर रिजल्ट। ये जो विजन 2020 है मेरा ख्याल है कि अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो जरूर बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है और उस पे डॉक्टर कलाम का छाप है, उस पे उनके हर एक सेंटेंस पे उनकी
1: छाप है जी। डॉक्टर नकुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब कलाम साहब ने वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था और आज जब हम कहते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तुलना करेंगे दोनों समय की, आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड कैसा है?
2: देखिए, जैसे सिन्हा साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि उनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो अपने आप में एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था, जिससे बहुत जो उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी मंत्रालय, करीब 9-10 ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और अनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, उन सब ने उसको समझने की कोशिश करी, उसको लेके आगे चलने की कोशिश करी, वहां से बहुत कुछ लिया और उसको डेवलप किया
1: जी।
2: मेरा ये कहना है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और खासकर अब तो हम देखते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए भी हम AI का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भारत ने बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है और एक दौर रहा जहां हमने देखा कि इन सब चीजों के लिए रिसर्च के लिए खासकर जैसे कि कलाम साहब का खुद का कहना था इसके लिए एक तवज्जो, एक इम्पोर्टेंस, एक इम्पीटस मिलना चाहिए और इसके लिए जो रिसर्च के फंड्स हैं उनका उसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष देश का एक RDI जो 1,00,000 करोड़ का जो रिसर्च का जो फंड है वो जो भारत सरकार ने लाए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। फिर रिसर्च के अंदर उनका ये बहुत आवश्यक था कि जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो एक मानक होते हैं कि आप क्या रिसर्च करते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे इतने महंगे रिसर्च से वंचित रह जाते थे। तो सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया
1: जी।
2: इस तरह से आप देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वांटम मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन है जो सुचारू रूप से उस पर काम कर रहा है और देश के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं और तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देश में जितने भी ये डेवलपमेंट है वो वैश्विक स्तर पे जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ एक पेस बना के चल रहा है। और कुछ स्तर पे तो मैं भी ये कहूंगा कि चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा समय रहा तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है खासकर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अभी जो हमने लॉन्च किया, जो प्राइवेट सेक्टर से जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है, विशेषकर डिफेंस के अंदर जो प्राइवेट प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सब काबिल तारीफ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कलाम साहब का वो सपना हम सब और खासकर विज्ञान का सपना हम पूरा कर पाएंगे। बस एक बात कहने में जरूर करना चाहूंगा कि इसके साथ विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास है उसको और तवज्जो देने की जरूरत है
1: जी, उसमें हम और बहुत कुछ कर सकते हैं।
2: जी
1: पीपीपी मॉड्यूल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइंस फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है।
2: जी
1: यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नकुल ने कहा कि हम जो साइंस है उसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो आपके विचार में क्या किया जा सकता है?
0: जो डॉक्टर कलाम ने जो हम लोगों को राह दिखाई है
1: जी,
0: उसमें ही बहुत गुण हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि पूरा जो उनका प्रोग्राम था
1: जी,
0: और जो उसमें कई वैज्ञानिक जुड़े साथ में, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी कृषि, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, किसान के पास सही इनपुट्स मिलते हैं, उसको सही टाइम पे मिलते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और अपने फिर परिवार का भी ध्यान रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हर स्टेप पे हम लोग को डॉक्टर कलाम के जो आइडियाज थे और जो जो लिख के रखे हैं और सजेस्ट किए हैं, उसमें हम लोग को ढूंढना चाहिए, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को।
2: जी बिल्कुल।
1: तो कलाम साहब ने जब विभिन्न पद संभाले, जिम्मेदारियां संभाली, तब भी हमारा नेतृत्व किया, बहुत योगदान दिया उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, और आज अगर हम उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तब भी हमें समाधान मिलेंगे। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप छोटी बच्ची होती और आज आप कलाम साहब से मिलती तो आप उनसे क्या सवाल करती, अगर आपको मौका मिलता तो?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं सच में अपने अंदर एक छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ। आज डॉक्टर कलाम मेरे सामने होते और मैं उनके सामने ये पूछती कि सर, ये दुनिया जो आज इतना दौड़ रही है, भाग रही है, विनाश की तरफ जा रही है, इसे हम कैसे रोकें? और सच मानिए, डॉक्टर कलाम का यही सपना था कि इस धरती को रहने योग्य बनाना है। वो इतने बड़े बड़े पदों में पहुंचे, लेकिन अंततः अपने आप को एक शिक्षक मानते रहे
1: जी,
3: कि मैं एक शिक्षक हूँ। और ये असीम कृपा है उनकी ईश्वर पर कि जब वो दुनिया से दैहिक रूप से गए तो एक शिक्षक के रूप में ही गए। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनमें कभी विलासिता नहीं थी, बस एक शिक्षक का गुण था।
2: बिल्कुल।
3: अपने सामने बैठे लोगों को इतना ध्यान से समझाते थे, इतने प्यार से बताते थे, जैसा सर ने बताया कि वही इनका जो गुण है वो हम आज याद करते हैं, क्योंकि उनकी विनम्रता, उनका मिसाइल मैन होना वो बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है, लेकिन करोड़ों आंखों में जो सपने देकर गए वो विरासत है हमारे लिए, जो हमेशा हमारे पास रहेगी। तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस दुनिया को रहने लायक अपनी तरफ से एक योगदान दे सकूँ।
1: जी, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका, और शायद ये हम सबके मन में सवाल होना चाहिए कि हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ इसी मोड़ पर आप बताएं, आप कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
3: मुझे लगता है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: वाह।

सिर्फ इस गाने के बोल ये नहीं है, बल्कि हम सबके दिलों में यही भावना है कि हमारा देश आबाद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमें इस तरह का नेतृत्व प्राप्त होता रहे अपने लक्ष्यों के लिए, जैसा डॉक्टर कलाम ने दिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, अगर हमारे युवा साथी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके सामने कौन से दरवाजे अभी

0: खुले हैं, उन्हें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए?
1: जो वैज्ञानिक हैं या कोई भी स्पेशलाइजेशन में,
0: जी
1: आजकल बड़ा नैरो एरिया हो गया है हर एक वैज्ञानिक के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए।
0: जी
1: और ये नकुल भी मान जाएंगे, हम लोग जो है वो ओपन माइंडेड इतने नहीं हो पाते हैं कि काम कर सकें, या जो युवा पीढ़ी है उनको गाइड कर सकें। हम लोग चाहते हैं वो भी उसी नैरो एरिया में ही स्पेशलाइज करें, तो ये एक चिंता की बात है। परंतु इट इज अ लार्जर क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कलाम के अगर उससे हम लोग चले, तो इन्होंने जैसे अपना फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो था हमारा जब हम इसरो के साथ थे, तो हमने जो है जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम किया। सेकंड स्टेज जैसे रॉकेट का होता है, सेकंड स्टेज में मैं जो था DRDO के साथ था, और उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूट करा मिसाइल मैन के लिए बन गए। थर्ड स्टेज जो था वो जब राष्ट्रपति थे, और फोर्थ स्टेज कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की गद्दी छोड़ दी उन्होंने, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करी थी एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज ए एरोस्पेस इंजीनियर, और किस तरह से वो अपने को भी उभारते रहे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे। तो ये एक अगर सोच और विचार के साथ आदमी आगे बढ़े, तो मेरा ख्याल है कि जो भी उससे सामने समस्या आएगी उसका वो सही हल भी निकाल लेगा और कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा।
0: जी
1: तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो नैरो स्पेशलाइजेशन ना रखें अपने को, परंतु जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उनको इस तरह से गाइड करें कि वो जो है असली में कंट्रीब्यूट कर सकें। डॉक्टर कलाम का बहुत से छोटे छोटे वो भी थे, राइटिंग में जो लिखते थे, एक था जैसे फेल का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट वाज हाउ ही वुड पुट इट, कि कहने फेल नहीं हुए तुम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहते थे कि हमारा कैरियर देखो, इसरो में भी वो SLV-3 इन्होंने जब लॉन्च करवाया फेल हो गई, भी बड़े दुखी हुए, सचिन धवन ने इनको एनकरेज करा, नेक्स्ट टाइम सक्सीड कर गए। कहते हैं जब तक सीख करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। दूसरा उन्होंने कहा था जैसे कि जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, या ये है कि साइकिल आपको चला रही है, तो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखने का
0: जी।
1: और ऐसी बहुत सी उनके जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तो मेरे ख्याल रश्मि जी की किताब में लिखे हैं
0: जी,
1: वो बड़े अच्छे हैं। और उनसे हम लोग जब बात करते हैं विद्यार्थियों से, तो हम लोग उन्हीं के ये इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको यूज भी करते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं
0: जी। जी यानी वो कलाम साहब के दिए हुए हैं, लेकिन हम आज तक उसका फायदा उठाते हैं। हाँ। जी यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नकुल, जैसे हम बार बार ये जान रहे हैं कि कलाम साहब बच्चों से सीधा संवाद करते थे और बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बात को और प्रेरित होते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। जब इस तरह के हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत जो होती हैं, बच्चों से जब सीधे बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि उनके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? भले ही वो वैज्ञानिक ना बनना चाहे, भले ही उन्होंने अभी अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं चुना है, बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है इन बातों का?
2: देखिए, देश काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, कभी भी रही हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपने स्तर से उतर के बच्चों से बात करता है, तो उसका प्रयास होता है कि बच्चों के अंदर एक तरह की, जैसे उन्होंने कहा, प्रेरणा नहीं प्रेरित कर सके उसको, तो प्रेरित करने का जो प्रयास होता है वो बहुत अपने आप में अनूठा प्रयास है। और जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसे कलाम साहब ने किया, और ऐसे तमाम बहुत सारे विजनरी लीडर्स रहे हैं जो उतर के इस लेवल पे करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं सेंट्रल एशिया और अर्स्टवाइल रशिया में काफी मैंने काम किया, तो मैंने वहां देखा कि जितने भी बड़े वहां के लीडर्स हैं उनका ये प्रयास रहता है कि स्कूलों में जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों के अंदर वहां पे शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ है वो घर से ही शुरू होता है। और अगर आप उनको कैच देम यंग का जो उनका फॉर्मूला है, अगर आप वो करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का और कलाम साहब का जो अपने आप में एक अनूठा वो उदाहरण रहे, उनका ये हमेशा से प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से स्कूलों के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके अंदर आता है, तो जैसे मैंने आपसे अभी शुक्र में जिक्र किया था कि एक कलाम साहब का एक एनेक्डोट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब वो वहाँ ट्रिची में पढ़ रहे थे, तो उनको उनके कॉलेज में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कैलकुलस सोलोमन, तो वो कहते थे कि उनके एक टीचर थे तोतादरी आयंगर, तो जब वो आएंगे तो तुम देखोगे। तो उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, कुछ लाइनें जो उनकी शुरू की हैं वो अपने आप में इस बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं। अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते तो अच्छा बन जाते हैं, तो वही उनका प्रयास है। उनका उनका व्यक्तित्व जब आके स्टेज पे उन्होंने हमसे बात करी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में आज तक है। तो ऐसे ही न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हम सबके जीवन में रहे होंगे, जब हम अपने शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता तुम्हारे तुम क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा छूटते बोलता मैं टीचर बनना चाहूंगा, क्योंकि टीचर उस वक्त एक रोल मॉडल होता है, समय के साथ वो रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बहरहाल जैसे रश्मि जी ने कहा कि आज अगर बच्चों के अंदर रोल मॉडल के लिए अगर हम कलाम साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएं, और ये आपका कार्यक्रम अगर इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे हैं उनमें भी अगर अति भर भी अगर ये एक बात हम पहुंचा पाए तो बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यही प्रयास हमारा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी जिन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या विशेष तिथि अगर कभी बताते हैं उसके पीछे एक पूरा संदर्भ होता है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि उसके बारे में हमारे श्रोता अधिक जाने, और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जाने भी, क्योंकि उनके सामने की तो ये घटनाएं नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी होते रहें और समसामयिक चुनौतियां जो आज उनके सामने हैं, जिसे हम ग्लोबल इश्यूज कहते हैं, वो उनका समाधान हमारे इन प्राचीन घटनाओं से, इन शख्सियत से, इन व्यक्तित्व से, इन संदर्भों से लेते रहें। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कह रही हूँ, आप तीनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, और आपके बहाने हमने पीपल्स प्रेसिडेंट को, हमने अपने प्रिय कलाम साहब को और मिसाइल मैन को, देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाली एक महान शख्सियत को और जाना, उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू हमें पता चले। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे अनुज सिन्हा जी। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं, पूर्व निदेशक हैं, आप विज्ञान प्रसार के साथ ही आप एडवाइजर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नकुल पराशर। आप अप्लाइड फिजिक्स में आपने पीएचडी की, आप ऑथर हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड आप रहे, और आप भी विज्ञान प्रसार के निदेशक रहे हैं। डॉक्टर नकुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं, कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी, साथ ही कलाम तुम लौट आओ, कलाम इंस्पायर्स, ये पुस्तकें आपकी हैं, और आप कलाम साहब के मार्गदर्शन से ही अपनी पुस्तक आपने पूरी की है। तो डॉक्टर रश्मि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरे अपने आदर्श डॉक्टर कलाम साहब पर बोलने का मौका दिया, आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद।
0: जी तो आज के कार्यक्रम से हमने यही सीखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना केवल वैज्ञानिक भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहाँ हर बच्चा जिज्ञासु हो, हर युवा नवाचारी हो, और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, कलाम साहब जो कहते थे, और जो हम सोशल मीडिया पर बार बार पढ़ते हैं, और जिसे हम अपने इंस्पायरिंग लाइंस बनाकर अपने घर की दीवारों पर चिपकाते हैं ताकि सुबह आंख खुलते ही हम इसे देखें और मोटिवेटेड हो, ये पंक्तियां हमें दी कलाम साहब ने। तो उन्हें आदर भाव से याद करते हुए मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से अनुमति लूंगी। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे दिलीप झा, और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: तुम मेरी राखो लाज हरे।
5: हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल।
4: अम्बे चरण कमल है तेरे।
5: शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मंगल भवन मंगलहारी।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: Welcome back. You're with us on Akashwani Rainbow and we are with you on 102.6 megahertz. And moving ahead, yes, today is Friendship Day and that is exactly what we are celebrating. And I am still waiting for another message from you, Shyam Sundar, just in case I can play another track on your request. And well, in the meantime, what I'm going to do is I'm going to play... We were just talking about, you know, technology, being connected with friends who are very far away. And can we call it world on a string? The string of technology?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। यह अभियान हर रविवार को 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। आईआईटी दिल्ली में हथकरघा हैकाथॉन वीविंग इनोवेशन का दूसरा संस्करण पूरा हो गया है। इसका उद्देश्य तकनीक, डिजाइन, उद्यमिता और सतत समाधानों का इस्तेमाल करके भारत के हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के

तीन दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदेव बख्तियार ओदिलोविच आज से चार दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39 हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी। और ओडिशा, गुजरात और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने आज गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी फरमाइशों पर आधारित है, आपकी जो बातें हैं हम तक पहुंचती हैं। और आज का दिन तो और भी खास है क्योंकि आज के दिन की जो फरमाइशें हैं वो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सभी लोग मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। और ये दिन हमारी दोस्ती के नाम, हम जिन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं वो दोस्त हमारे, साथ ही साथ वो दोस्त भी जिनको हमने कभी देखा नहीं लेकिन उनकी बातें लगातार हम तक पहुंचती हैं, बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचती हैं, यानी कि आप हमारे प्यारे प्यारे श्रोता और हम आपके दोस्त जो माइक्रोफोन के पीछे बैठे रहते हैं, लगातार आपसे बातें करते रहते हैं और आपसे कभी कभी फोन पर भी बात करने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं उनके जरिए हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज के इस खास दिन पर आप सभी लोगों के साथ जो व्हाट्सएप के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोई गाना आप सुनना चाहते हैं, फरमाइशें, हालांकि हम एक घंटे के प्रोग्राम में लगभग 7 से 8 गाने आप तक पहुंचाने की कोशिश कर लेते हैं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हाँ आपकी जो फरमाइशें हैं, आपकी जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत खास हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचे, आपके मैसेजेस हम तक पहुंचे। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 इस नंबर पर हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आपके लिए आपके स्वागत में ये गीत। नमस्कार।

बिल्कुल दोस्तों, कुछ इसी तरह की है दोस्ती आपकी और हमारी भी। लगातार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर कौन कौन सी बातें हम तक पहुंची हैं। और बिल्कुल ठीक एक बजे से शुरू करते हैं, जो एक बजे मैसेज आया। और एक बजे मैसेज आया किसका, ये मैसेज आया है असम से हितेंद्र दास का। इन्होंने कहा है कि किसी भी गाने में आप मेरा नाम शामिल कर लीजिए। तो दोस्त बिल्कुल आपका नाम शामिल हो चुका है। कविता ने देवभूमि उत्तराखंड से मैसेज किया है और एक गाने की फरमाइश की है। आज के दिन पर सिर्फ आप फरमाइश करेंगे तो अधूरा लगेगा ना, कुछ तो बोलिए। कोई तो आपका दोस्त होगा जिसको आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं, उसके साथ जो दोस्ती है उन पलों को याद करते हैं। और आज तो ख़ास दिन है उस दोस्त को याद करने का। और दोस्त तो हम भी आपके हैं, अगर हमारे साथ भी कोई अच्छी यादें आपकी जुड़ी हों, कोई बात हो जो आपको लगता है कि हाँ वो हमारी इस दोस्ती को ख़ास बनाती, तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। बाकी अपने आसपास आपके जो दोस्त हैं उनके बारे में भी आप हमारे साथ अपनी बातें लिख सकते हैं। और आपकी फरमाइशें तो हम आप तक पहुँचाएंगे ही, क्योंकि हम बिल्कुल उसी काम के लिए यहाँ पर है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा फरमाइशें आप तक पहुंचे। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का मैसेज है। इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, साथ ही साथ फरमाइशें कुछ और भी हम तक पहुंची है। और इनका नाम है यश शिंदे मुंबई से। लिखा है कि यूं तो दिल्ली के दिल में हजारों शोर रहते हैं, पर रेनबो की धुनों में खोए कुछ और रहते हैं। क्या बात है। लिखा है इन्होंने कि आगे की हमारी फ्रिक्वेंसी के बारे में 102.6, जिसे हम दिल्ली और इसके आसपास सुनते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप और हम जुड़ते हैं, तो इनके यहाँ शायद 102.8 है। तो इन्होंने लिखा है कि 102.8 की वो सतरंगी सुरीली सितान जिसको सुनकर आज भी हम जिंदा दिल और जवान रहते, क्या बात है। आरजे दोस्तों की हर एक बात जैसे पुरानी को याद दिलाती है। एफएम रेनबो दिल्ली की हर एक धुन सीधे रूह को छू जाती है। घर हो, दफ्तर हो या दिल्ली की कोई मसरूफ सड़क, इसकी आवाज़ अकेलेपन में भी महफिल सजाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका इतने प्यार भरे शब्दों के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपके इस मैसेज को पढ़कर, और जितने खूबसूरती से आपने अपनी बातों को हम तक पहुंचाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंची है, कोशिश करेंगे उसको आप तक पहुँचाने के लिए। हम अगला मैसेज देखते हैं और वो अगला मैसेज है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, ये लोग हैं, कालका से भी हैं कुछ लोग, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और पिट्टा बजाज, इन सभी लोगों का मैसेज आया है। और जो पहले जो मैसेज किया था उन्होंने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इन्होंने लिखा था अपना नाम और हम तक पहुंचाया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगला जो मैसेज है वो है पंकज जी का, अमरावती महाराष्ट्र से लिखा है। इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में नाम शामिल कर लीजिए और फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से दोस्त। कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की। और हमेशा की तरह हमारे प्यारे से दोस्त हैं एक सौरभ बनेजा, उन्होंने कहा है कि मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, मैं तो बस शो एंजॉय करता हूं। तो आप एंजॉय करते रहिए शो और हम भी लगातार आपकी फरमाइशें आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। थोड़ी सी पुराने गाने की फरमाइशें भी हम तक आती हैं, तो चलिए देखते हैं इस गाने में, सुनते हैं ये फरमाइश।

बिल्कुल दोस्त, इस गाने की तरह ही हम भी कह रहे हैं कि आप चाहें तो हमारे पास अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारे बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो लगातार अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं और उनके नाम हम आप तक पहुंचा देते हैं। मोहम्मद सरफराज आलम हैं, कवि प्रेमचंद प्रेमी जी हैं, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी जी और फारूख अली खान, इनका भी मैसेज हम तक आया है और इनकी बातें हम तक पहुँचाई है, जो कि हट तरशरा बाजार अररिया से इनके साथियों ने। और अगला जो मैसेज है इनका नाम है आफसा खानम, धामपुर जिला बिजनौर से इन्होंने लिखा है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहा है पूरी रेनबो की टीम को, हमारी तरफ से भी आपको और लिसनर्स को भी कहा है। तो इन्होंने कहा है कि आज के इस दिन पर कोई गाना प्ले कर दीजिए। तो बिल्कुल दोस्त, आज के दिन पर गाने आप तक लगातार पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों की जो फरमाइशें हैं आज के इस दिन को

खास तौर पर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो फरमाइशें कर रहे हैं। हालांकि हमने कहा है कि आप सिर्फ आज के दिन की फरमाइशें ना करें, बल्कि अपने किसी दोस्त के साथ जुड़ी कोई आपकी बात है, हमारे साथ कोई जुड़ी बात है आपकी, तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी बातें हम तक पहुंचेंगी और हम उन्हें और लोगों तक पहुंचाएंगे। अगला जो मैसेज है संतोष गुप्ता का है, ये इन्होंने बिहार के कुर्सेला से मैसेज हमें किया है। और इसके अलावा मैसेज भेजने वाले हैं भागलपुर बिहार से, इनका नाम है, क्या नाम है, मोक्ष, इन्होंने मैसेज किया है। और साथ ही साथ कुछ और हमारे साथी हैं जिनको हमने देखा है कि कई नंबरों से एक ही मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन आप भेज रहे हैं ये अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। सत श्री अकाल राजेश पाजी, सत श्री अकाल जी, की आला तो अड्डा प्रदीप सलूजा जी, और इन्होंने बोला है जनकपुरी से। अच्छा, आज तो आपने पूरा एड्रेस दिया है और साथ ही साथ संगीता सलूजा जी का भी नाम दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस खास दिन की। और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बातें हम तक पहुँचाते हैं। अगला जो मैसेज है हम तक आया है, इनका नाम है इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान, ये सभी लोग हमें गनगोला दातागंज जिला बदायूं से मैसेज भेज रहे हैं। नाम तो बहुत अच्छा है जगह का। और इन्होंने भी कहा है कि हमें किसी भी गीत में हमारा मैसेज शामिल कर लीजिए। तो दोस्त आपका मैसेज ये समझिए कि अब शामिल हो ही गया है, आपका मैसेज हमने पूरा पढ़ दिया है। अगला जो मैसेज है ये है हनु आनंद मिश्रा का, ये जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि फ्रेंडशिप डे की एफएम रेनबो के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई दोस्त। और एक गाना इन्होंने कहा कि प्ले कर दीजिए मेरे लिए, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, क्या बात है दोस्त, बहुत ही प्यारा गाना आपने चुना है। कोशिश हमारी यही है कि जल्दी से उस गाने को आप तक पहुंचाएं, लेकिन कुछ और हमारे जो दोस्त लगातार हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उन तक पहुंच जाते हैं, उनके कुछ और मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इला और सौरभ का मैसेज है जर्मनी से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। इसके अलावा फरमाइशें हम तक आई हैं, किसकी फरमाइशें भेजने वाले हैं, जीएस गिल पटियाला से, इन्होंने भी फरमाइश भेजी है अपनी। और हमारे साथी हैं कीर्ति नगर नई दिल्ली के जवाहर कैंप से, सलमा बेगम और मोहम्मद इम्तियाज, इनका भी गाना हमें मिला है जो इस प्रोग्राम में वो सुनना चाहते हैं। तो चलिए आपके इस इंतज़ार को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप तक पहुँचाते हैं वो गाना जो आज के इस खास दिन पर और भी हो जाता है खास।

0: बिल्कुल दोस्तों, दोस्तों के साथ जो अफसाने होते हैं हमें याद ही रहते हैं। तो आप भी चाहें तो हमारे साथ वो अफसाने साझा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर आप तब तक अपनी बात हम तक पहुंचाएं और हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने इस बातचीत के सिलसिले को और आपके मैसेजेस को आगे बढ़ाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, तो चलिए हम भी पहुंचते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आपने कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। अगला जो मैसेज आया है ये है अंशी शर्मा का, हस्तिनापुर से, मेरठ यूपी से लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, और लिखा है कि अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए एक सॉन्ग इन्होंने रेडियो के माध्यम से सुनना चाहती हैं और गाना लिखा है उसमें। साथ ही साथ इन्होंने

आगे जो फ्रेंड्स के नाम भी लिखे हैं, आकांक्षा, पूजा, मीनू, रवीना, अंशिका, दीपू, विकास, निखिल, इन सब के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना है। तो दोस्त, हमने आपके सभी दोस्तों का नाम शामिल कर लिया और आप धीरे धीरे धीरे प्रोग्राम जब सुनेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो फरमाइश है वो आप तक पहुँचे। अगला जो मैसेज है, इनका नाम है, क्या नाम है, हाँ नाम मिल गया मुझे, आकांक्षा का मैसेज है मुंबई से। इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और गांव मलवाला जिला बठिंडा से बीहला सिंह फौजी, गुरनूर, निमरत, सतविंदर कौर, बलराज मान और बलकार सिंह मान, इनका मैसेज आया है। इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है लिखा है, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हैं? आपका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं। हरकिरण सिंह जी, इन्होंने मैसेज किया है हमें फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। अगला जो मैसेज है, हमारे एक साथी हैं विट्ठल करमदिया, यश करमदिया, शोभा करमदिया, थांदला जिला झाबुआ एमपी से। इन्होंने लिखा है कि मैं गणित में बहुत कमजोर था, मैं भी था। ऐसे में धनंजय पंडित रोजाना सुबह और शाम को मेरे रूम पर आते थे और मेरी कठिनाइयां समझते थे, समझाते थे, जिसके दम पर मैंने बीएससी की और उसी के कारण नौकरी मिली और मैं उनके द्वारा की गई मदद को नहीं भूल सकता। वाह वाह दोस्त, बहुत अच्छी बात आपने साझा की। और ऐसे ही होते हैं हमारे दोस्त, हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं, हमारी बुराइयां जो होती हैं उनको भी बहुत प्यार से बताते हैं कि जी थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। और आपने जिस खूबसूरती के साथ अपनी बात रखी, वाकई में वो इस दोस्ती को और आगे लेकर जाती है। हमें मैसेज अगला आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक शर्मा, नहीं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप जी का भी। इन्होंने लिखा है कि दुनिया में जीने के बहाने हजार होते हैं, जो जीते हैं बिना दोस्ती के वो बेकार होते हैं, जो करते हैं सच्ची दोस्ती की कदर बस वही इस दोस्ती के हकदार होते हैं। क्या बात है, आपने कमाल किया अपने मैसेज में और बहुत अच्छी तरह से दोस्ती को बयां किया। अगला जो मैसेज है ये है मलकापुर बुलढाणा से, महाराष्ट्र से, लिखा है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ दोस्त, नाम तो आपका मिल नहीं रहा है लेकिन आपने बोला है कि ये मलकापुर सिटी कहाँ पड़ता है सो हम बता देते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपने किसी पुराने प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में आपने ये शायद किसी ने आपसे पूछा और आपने बताया, तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। अशोक कुमार आहूजा जी का मैसेज था, आपका पुराना मैसेज पढ़कर मुझे आपका नाम पता चला। जाहिद अहमद मुजफ्फरनगर से, इन्होंने लिखा है कि एक गाना जो है इनको बहुत अच्छा लगता है और ये गाना है धर्मवीर फिल्म से, वाह वो भी कमाल की फिल्म थी और उसके गाने भी बहुत सारे बहुत अच्छे थे। और अगला जो मैसेज है ये श्याम सुंदर जी का मैसेज है और इन्होंने भी फ्रेंडशिप डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं हमारे साथियों को जो भी इन्हें सुन रहे हैं। दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज है, इन्होंने भी कहा है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें से भी कोई गाना सुनवा दीजिए। तो दोस्त बिल्कुल, आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें से एक गाना तो हमने आपको सुनवा ही दिया है और देखते हैं कि कितने और गाने आपके आप तक पहुँचते हैं। अमरदीप कुमार कुप्पम पट्टी जलाकंडा पुरम सेलम जिला तमिलनाडु से, इन्होंने लिखा है कि एक गाना हमें सुनवाइए दोस्ती के ऊपर, इनका भी एक ये फरमाइश है इनकी भी। तो दोस्त लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, कभी ना कभी तो आपकी जो फरमाइशें आप तक पहुंचने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की जो फरमाइशें हैं लगभग एक जैसी हैं। और हमारे एक साथी हैं, इनका नाम है राजेश कुमार नावकोठी बाजार बेगूसराय से, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है और साथ ही साथ मैसेज किया है शिवम कुमार ने पटना बिहार से, इन्होंने कहा है कि अच्छा एक गाना जो है सबका सुनवा रहे हैं तो मेरा भी सुनवाइए। और इनका इनका जो मैसेज हम तक आया है उसमें कहा है कि हमारा एक दोस्त है उसका नाम राम निवास यादव है, वो मेरा भाई है, मामा जी का बेटा है, जब भी मैं दुख में रहता हूँ तब भैया जी को बहुत याद करते हैं, एक गाना उन सुनना है और उस गाने की इन्होंने फरमाइश की। तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मैसेज को हमारे साथ साझा करने के लिए और आपकी ये दोस्ती ये बनी रहे, आप खुश रहें लगातार और ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करें। और जिस तरह से आपने मैसेज लिखा है, जिस तरह से अपनी बातें लिखी है, वो जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों की फरमाइशों पर एक और गाना आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम, जिसका नाम है मेरा वाला शो। मैं हूं आपके साथ राजेश।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और आपकी बहुत सारी बातें हम तक पहुंच रही हैं इस प्रोग्राम में जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुनते हैं। और आज तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है तो इस दिन पर दोस्ती से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारी बातें भी हम तक पहुंच रही हैं और उनको पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आपके मैसेज की ओर एक बार फिर से चलते हैं। राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा का मैसेज आया है जम्मू और कश्मीर से। इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और भी साथी हैं जिनकी ये बातें हम तक पहुंची हैं। मिसेस धर्म भाटिया जी रोहतक से लिखा है इन्होंने कि मेरे फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं, सभी खास हैं, बट जब से FM रेनबो से जुड़ी हूं तो आप जैसे प्यारे प्यारे RJ सभी को दोस्त मानती हूं। बहुत अच्छा करते हैं आप। तो इसी दोस्ती पे दोस्ती पिक्चर का एक गाना सुनना है, अच्छा लगेगा। और इन्होंने गाने का नाम लिखा है, गाने की फरमाइश लिखी है, तो बहुत अच्छा लगा। हमारी कोशिश यही है कि आपकी जो फरमाइश है आप तक बिल्कुल पहुँचे। और अच्छा लगता है जब आप अपनी बातें अपने अनुभव हमारे साथ साझा करती हैं। अगला जो मैसेज है इनका नाम है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इन्होंने मैसेज किया है भगवती जी का, नई दिल्ली से मैसेज आया है। इन्होंने कहा है क्या कहा है, लिखा है कि सच्चा दोस्त वही है जो दुख में साथ दे ना कि सिर्फ खुशियों में। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है और एक गाने की फरमाइश भी की है। अगला जो मैसेज है वो है आसिफ अंसारी, तालिब शेख, मुकीम शेख और इमरान शेख बादशाह। इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। इसके अलावा मैसेज भेजने वाले हैं हमारे कई और भी साथी जो अलग अलग नंबरों से एक ही मैसेज भेज रहे हैं। और आपका नाम ढूंढ रहा हूँ, स्वाति पटना बिहार से। इन्होंने लिखा है कि अच्छा एक गाना सुनने की इन्होंने फरमाइश की है। इन्होंने लिखा है कि मैं हमेशा केवल अच्छा एक प्रोग्राम ये सुनती हैं प्लेट कूल, और उसमें लिखा है इन्होंने कि कुछ ना कुछ काम रहता है इस वजह से और आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम को सुनने के लिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए। डॉली का मैसेज आया है दिल्ली से, गाने अच्छे चल रहे हैं और फ्रेंडशिप डे की

शुभकामनाएं दी हैं। तो गाने अच्छे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों की फरमाइशें अच्छी अच्छी आ रही हैं, और आप जैसी फरमाइश करते हैं वैसे ही गाने हम आप तक पहुंचाते हैं इस प्रोग्राम में। अगला जो मैसेज है वो है जिला मुरादाबाद के ग्राम दुल्हापुर से, उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, इन्होंने कहा है कि किसी भी गाने में शामिल कीजिए। तो दोस्त बिल्कुल शामिल कर लिया जी आपको, और अगला गाना जो है आने ही वाला है थोड़ी देर में। अगला जो मैसेज है, गुनाह करके सजा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं, हमें दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों के खफा होने से डरते हैं। क्या बात है, लिखा है इन्होंने कि मिस करता हूँ अपने स्कूल फ्रेंड्स को। ये लिखा है किसने, दीपक, नीरज, खालिद, अजय, संजीव, नीतू, कौर, पूनम और सुनीता को, मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम ने ये मैसेज लिखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, बहुत खूबसूरती से आपने अपने एहसासात को हमारे साथ साझा किया है। अगला जो मैसेज है ये है किसका, परी गुप्ता का है, मोतिहारी बिहार से, इन्होंने गाना सुनना चाहा है और गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। अगला जो मैसेज है, आपका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो जल्दी आपका नाम शामिल कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिल गया है। प्रगति राज का पटना से इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फिरोज खान का मैसेज आया है और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें हमारे पास लगातार पहुँच रही हैं और आपकी फरमाइशों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब बात दोस्ती की आती है तो एक फिल्म याद आती है और उसका नाम था क्या, शोले। क्या कमाल की जय और वीरू की दोस्ती थी, और आपकी फरमाइशें भी हम तक जो पहुंची हैं उस गाने की फरमाइश ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आप लोगों की फरमाइश पर फिल्म शोले से ये गीत है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और आपके जो मैसेजेस हैं लगातार व्हाट्सएप पर हमें मिल रहे हैं और हम उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चाय बड़ी है
1: पता का चाय गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और चलिए आपका वाला मैसेज भी हम शामिल कर लेते हैं अब, और देखते हैं कि कौन है, कहां से हमारे

साथ जुड़ रहे हैं और जहां पर पिछला मैसेज हमने छोड़ा था बिल्कुल अब पहुंच चुके हैं वहीं पर और अब इसे बनाने जा रहे हैं हम अगला मैसेज। और ये मैसेज है सलीम अख्तर और रेशमा बेगम का अलीगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि हमारा मैसेज कहाँ गायब हो गया। गायब कहीं नहीं हुआ था। हम आपका इससे पहले कि मैसेज पढ़ते आपने एक और मैसेज किया और वो हमारी लिस्ट में एकदम ऊपर चला गया और हमें ऊपर तक पहुंचने में सीढ़ी के हिसाब से हम जैसे एक एक कदम चलते हैं ना तो थोड़ा समय लगा, लेकिन देखिए देर आए दुरुस्त आए और आपका मैसेज हमें मिल गया और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी वो बन चुका है। अनिल ठाकुर का मैसेज है सराय काले खान से। इन्होंने फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और इन्होंने एक गाने की फरमाइश भी की है और मैसेज किया है किसने, इनका नाम है पवन कसेरा, ये खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैसेज किया है। और मैसेज किया है किसने किया है, इन्होंने किया है इनका नाम है अच्छा अंशी शर्मा ने एक बार फिर से मैसेज किया है और मैसेज किया है प्रकाश शिंदे जी, एक फिल्म है दोस्ती, उस फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। और हमारे कुछ और साथी हैं जिन्होंने अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई। आपका मैसेज मैं देख रहा हूं, आपका नाम ढूंढने में कई बार मुझे थोड़ा सा आगे पीछे देखना पड़ता है क्योंकि कई बार आपका नाम मिलता है कई बार नहीं मिलता है तो थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपना नाम जो है सबसे पहले लिख दें ताकि हम सबसे पहले आपका नाम पढ़ें उसके बाद आपका मैसेज पढ़ें। तो ये जो अगला जो मैसेज है मेरे पास इसका मैं देख रहा हूँ नाम, अच्छा मिल गया, पुराने मैसेज से मिला है, पिछले महीने के मैसेज से। इनका नाम है मोनिका, उत्तराखंड से ये मैसेज किया है इन्होंने और आज के इस खास दिन की शुभकामनाएं दी हैं। अगला जो मैसेज है इसमें इन्होंने अपना एक शेर लिखा है कि जो हर हाल में साथ निभाए वही यार कहलाता है, टूटते हौसलों को भी जो फिर से मुस्कुराता है, दुनिया लाख बदल जाए अपने रंग ढंग मगर सच्चा दोस्त हर दौर में अपना फर्ज निभाता है। क्या बात है मोहम्मद सरफराज आलम, आपने ये स्वरचित पंक्तियां हमें पहुंचाई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जफर अर्तुक पूर्णिया बिहार से इन्होंने मैसेज लिखा है कि आज मेरा दोस्त फरहान नाराज हो गया, इसका कारण ये है कि हेयर कटिंग के दौरान मैंने उसका बाल थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कर दिया, तो आपने थोड़ा काम तो ऐसा किया कि नाराज़ हो आदमी, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोस्त को मनाना तो थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है लेकिन दोस्त है कहाँ जाएगा, मान ही जाएगा। और अगला जो गाना है यानी कि जो फरमाइश है, फरमाइश में आपका गाना है वो मैं ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपके जो मैसेज हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। वरुण वार्षणे का मैसेज है अलीगढ़ से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। इसके अलावा मैसेज किया है हमें मैना, बिमला, कार्तिक और कनिक ने। रोहिणी दिल्ली से इन्होंने लिखा है कि एक गाना हमें सुनवा दीजिए। और अगला जो मैसेज है ये मैसेज है इनका नाम है रिया, इन्होंने कहा है कि बहुत समय के बाद मैसेज किया है और स्कूल की फ्रेंड को ये मिस कर रही हैं और एक गाना जो है सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की है। अगला जो मैसेज है इन्होंने लिखा है कि इसको रीड करें, तो बिल्कुल दोस्त रीड करें, आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं, आप तक पहुंच गए हम और आपने लिखना भी रोक दिया है। ये है नवलू वरक, गांव मड़पर, ज़िला उत्तर गोवा से, लिखा है कि आज की सभी को बहुत सारे श्रोताओं को हमारी शुभकामनाएं। इन्होंने लिखा है कि सच कहूं तो मुझे तो रेडियो सुनने की लत सी लग गई है, अब तो रेडियो सुनना बिल्कुल आसान हो गया है, अलग से रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर कोई भी कभी भी सुन सकता है, हमारे लोकल रेडियो स्टेशन जो हैं और FM रेनबो गोवा ये सभी चैनल आप सुन पा रहे हैं और ये FM रेनबो पर लगातार सुनते हैं और एक गाना सुनने की भी आपने फरमाइश की है। तो दोस्त आपका मैसेज हमने पढ़ दिया है और अच्छा लगा, एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे हमारी बात आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हम आपको बताते हैं कि आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर डाउनलोड करें और हमें सुने, लेकिन आज आपने हमें ये अपने मैसेज में ये बताया कि आप कैसे करते हैं, तो जानकर अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। अगला जो मैसेज है ये है यूपी रामपुर ज़िले के मंडवा हसनपुर गांव से, इनका नाम है मनमोहन सिंह, सोनम, काव्या और दक्ष। इन्होंने लिखा है कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं ही हम किसी पर फिदा नहीं होते, दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी है जो मुस्कान देती है। और आगे लिखा है कि खुदा से क्या मांगो तुम्हारे वास्ते, सदा खुशियां ही आए तुम्हारे रास्ते। क्या बात है, बहुत धन्यवाद दोस्त आपका, बहुत प्यार से आपने ये बातें लिखी हैं और हमें बहुत अच्छा लगा इसे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करके। अगला जो मैसेज है कंचन सोनिया बिहार दिल्ली से, इन्होंने लिखा है, गाने की फरमाइश की है और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से भी मैसेज आया है, इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है और गाने की जो फरमाइशें हैं और लगातार हम तक पहुंच रही हैं। लिखा है कि श्रीमान महोदय निवेदन इस प्रकार है, क्या निवेदन है जनाब, लिखा है कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है और हम आपके कार्यक्रम से पहली बार जुड़ रहे हैं और मैसेज ज़रूर शामिल करें, तो बिल्कुल दोस्त आपका मैसेज जो है हमने शामिल कर लिया है। इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, सबरीन बेगम, साबरीन बेगम, शाहबाज खान।

सैफ खान और इशरत खान, ये ईशान खान का मैसेज आया है और इन्होंने अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। रंजीत मुकुंदपुर दिल्ली से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की। तो दोस्त, लगातार आपकी जो फरमाइश हम तक पहुंच रही हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमें पहुंचाना होगा आप तक एक और गीत, और इस गीत के बाद वापस आते हैं। दोस्ती की बात हो रही है तो दोस्ती फिल्म का ये गीत। बहुत सारे हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, उन्होंने इस गाने को सुनने की फरमाइश की है, तो चलिए सुनते हैं मिलकर।

बिल्कुल दोस्तों, इस दोस्ती और प्यार के सिलसिले को यूं ही रखते हैं हम बरकरार। और अब बता देते हैं आपको कि मैं आपके साथ हूँ राजेश, और मेरे जैसे आपके बहुत से दोस्त हैं जो आप तक आने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। हमारे अगले साथी हैं वीर दमन सिंह, जो आप तक पहुंचेंगे 2 बजे से प्रोग्राम छोटे उस्ताद लेकर। उसके बाद 3 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर, और इसमें जो आज का विषय है वो है इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, और ये आप सुन पाएंगे प्रोग्राम। इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता, जो कि CMO हैं CGHS विंग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल में, और डॉक्टर तनु जैन डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज DGHS MOHFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और इसके बाद आप सुन पाएंगे 4 बजे से प्रोग्राम रेनबो जीनियस, जिसमें आपसे हम पूछेंगे कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब देकर आप बन सकते हैं रेनबो जीनियस। तो फिलहाल हमने सवाल तो नहीं पूछा आपसे, लेकिन आपसे हमने जरूर कहा था कि आप चाहें तो अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, दोस्ती के नाम कुछ आप कहना चाहते हैं तो वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपने कहा भी है, पहुंचाया भी है। जैद और हुडा का मैसेज है गाजियाबाद यूपी से, इन्होंने के गाने की सुनने की फरमाइश की है, और दोस्ती से जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत सारी आपकी फरमाइशें हम तक आ रही है। सभी तो हम नहीं आप तक पहुंचा पा रहे हैं समय की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि दोस्ती को आप जिंदगी में इतनी अहमियत देते हैं और अपनी बातें जितने खूबसूरत ढंग से आप हम तक पहुंचाते हैं वो जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगला मैसेज जो है इनका नाम मैं ढूंढ रहा हूँ, नेटोर बिजनौर से राहत और गजला का मैसेज है। इसके अलावा मैसेज किया है हमें अमित आंचल सासाराम बिहार से, इन्होंने और इन्होंने लिखा है कि दोस्त वो नहीं जो सिर्फ हंसी में साथ निभाए, दोस्त वो है जो आंसू भी अपनी आंखों में छुपाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने ये बात लिखकर हम तक पहुंचाई है। और अगला नाम जो है रौनक निषाद का है, इनका मैसेज आया है।

डॉली ने कहा है कि इस साल की शुरुआत से जनवरी के महीने में मैं काफी बीमार थी। उस टाइम मेरी दोस्त भारती और सौती ने मेरा दूर होते भी ध्यान रखा, कॉल से मेरा हाल लेती रहीं जब तक ठीक नहीं हुई। वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती उनके प्यार को, और अब और ज़्यादा सबसे खास हो गए हैं। तो दोस्त, यही होता है कि जब हम दोस्तों को याद करते हैं तो हमें न सिर्फ वो अच्छे समय में बल्कि बुरे समय में भी याद आते हैं, और जब हमारा साथ देते हैं तो फिर वो दोस्ती और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है और ज़्यादा खास हो जाती है। भुवनेश्वर नेतम, इनका मैसेज आया है गांव तोरोंडी छत्तीसगढ़ से। रेडियो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्त, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, हम भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। किसी भी गीत में शामिल कीजिए कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फराज फैजी, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का मैसेज है। और भी इनके कई साथी हैं जिन्होंने अपनी बातें लिखकर हम तक ट्रैक पहुँचाई हैं, और हम भी जल्दी जल्दी चल रहे हैं आपके मैसेजेस की ओर क्योंकि समय कम है और आपकी ये जो बातें हैं वो हम तक लगातार पहुंच रही हैं। तो आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं ने अपनी बात हम तक पहुंचाई है, हमने कोशिश की कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जिया वर्मा, सुहानी वर्मा, हरमन वर्मा, शेरकोट जिला बिजनौर से, इनका भी मैसेज आया है और मैसेज किया है कई और भी हमारे साथियों ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते, बात सावन की हुई है तो आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये गीत हम सभी के लिए। इस गीत के साथ ही राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

पेश है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। यह अभियान हर रविवार को 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल कटक में जगत गुरु कृपाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। ओडिशा, गुजरात और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने आज गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री

सोदव, बख्तियार, ओदी, लोविच आज से चार दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश गंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में ईश्रूप नारंग खेलेंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39 हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है और राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो ये तो थे अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हां, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो, और ये समय है प्रोग्राम आशियाना का। और आशियाना में आज हम बात करते हैं छोटे उस्ताद में। जी हाँ, छोटे उस्ताद जो हमारे नन्हे मुन्ने देश का भविष्य हैं, उनके बारे में। तो मैं आज छोटे उस्ताद लेकर आपके साथ हूँ, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली लिसनर्स एंड हमारे प्यारे छोटे उस्तादों के लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आशियाना में आज हमारे जो छोटे नन्ने मुन्ने हमारे छोटे उस्ताद हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और छोटे उस्ताद का मतलब क्या होता है, मैं आज आपसे यही मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि लिटिल मास्टर, छोटे उस्ताद का मतलब लिटिल मास्टर बाल विशेषज्ञ होता है। ये शब्द छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके जो मुख्य कारण है ना, वो है कि बच्चे में जो होते हैं उनमें असाधारण प्रतिभा होती है, और बच्चे अपनी उम्र से बड़ा काम करते हैं और अद्भुत कौशल होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि कोई भी काम हो ना तो उनको ये लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, चाहे वो बड़ों का हो या कोई भी हो। हम भी अक्सर बचपन में यही सोचते थे, और होता भी यही है कि उनको सेल्फ मोटिवेशन मिला हुआ होता है बाय गॉड ग्रेस, और हाजिर जवाबी होती है और अद्भुत कौशल होता है, वे गायन नृत्य और कला में बिल्कुल माहिर होते हैं। देखिए ना, कोई भी बच्चा हो, आजकल जो इतने टीवी शोज होते हैं उनमें आप देखेंगे कि असाधारण उनमें प्रतिभा होती है, गायन की हो या नृत्य की हो, हर तरह की कला में माहिर होते हैं, और बच्चे बहुत चतुर होते हैं। हाजिर जवाब भी तो होते ही हैं, बच्चे चतुर होते हैं, समझदार बातें करते हैं कभी कभार, और तभी तो उनकी चुलबुली बातें सुन के कभी कभार चेहरे पे हमारे भी मुस्कुराहट आ जाती है। हम भी सोचते हैं कितने भी स्ट्रेस में हो तो अगर उनकी बातें सुनते हैं तो हमारे भी एकदम से स्ट्रेस जो होता है ना छूमंतर हो जाता है। और संस्कृति अगर हम उसकी बात करें तो भारत में एक प्यारा, बहुत प्यार भरा ये सम्मानजनक संबोधन है जो उनमें संस्कृति जो देखी जाती है और उनके संस्कार देखे जाते हैं वो बड़े ही अद्भुत होते हैं, और वो हमेशा बड़ों से सीखते हैं। तो हमें भी वो आचरण, उस तरह का व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ ताकि वो भी उसी तरह आगे

जो रिसीव करेंगे वही आगे उनको दूसरों को देंगे, यही एक जो संस्कार है ये क्वेरी फॉरवर्ड होते हैं, है ना। और छोटा जो होता है उम्र में छोटा या बालक हम कहते हैं, और उस्ताद अपने काम का पक्का और गुरु, तभी तो उसको बोलते हैं कि छोटे उस्ताद हैं ये, छोटे उस्ताद। फिलहाल एक और आपको गीत सुनवा रहा हूँ, बचपन की याद आपको भी दिलवाएगा। ये गाना हम भी बचपन में बहुत सुनते थे और हमारा भी फेवरेट होता था, वो आज भी फेवरेट है। चलिए इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर बातों का सिलसिला चलता रहेगा आशियाना में छोटे उस्ताद।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। और आशियाना में आज हम छोटे उस्तादों के बारे में बात कर रहे हैं। छोटे उस्ताद यानी कि हमारे नन्हे मुन्ने जो हमारे फ्यूचर हैं और बच्चे हैं, जो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बच्चों से कहते हैं कि कभी एक गलती मत कीजिएगा, नेगेटिव वर्ड्स कभी मत बोलिएगा, उनका दिमाग उसे तुरंत एब्जॉर्व कर लेता है। ये मैं सभी से बात कर रहा हूँ कि कई बार हम नेगेटिव बातें करते हैं उनके सामने या उनके साथ सरकास्टिकली बात कर लेते हैं, कोई ऐसा पॉइंट हम उनको बोलते हैं जिनसे उनके दिमाग में वो डर बैठ जाता है। बच्चों से कभी भी नकारात्मक शब्द ना बोलें, और बिल्कुल सही सलाह है ये। और उनको कभी भी आप सलाह दें तो बिल्कुल पॉजिटिव दें। बच्चों का कच्चा दिमाग और उनकी भावना इन शब्दों को बहुत जल्दी गहराई से अपने अंदर सोख लेती है, और जिसका असर उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है। दोस्तों, डर और संदेह, और हम कई बार ये भी कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कुछ कर पाओगे जिंदगी में, तो वो बच्चा जो होता है उसका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो होता है वो डगमगा जाता है। और जैसे ये वाक्य होते हैं कि बच्चे के मन में स्थायी डर और शक पैदा कर देते हैं, और यही हीन भावना जो होती है ना, ये बार बार की गई आलोचना से बच्चा खुद को कमजोर और नाकाबिल भी मानने लगता है, कि वो सोचता है कि शायद ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सब कह रहे हैं। तो कभी भी हो उनको आप वो पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव बातें उनसे कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बड़े मासूम होते हैं। बच्चों को कुछ भी अगर आप कहेंगे वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसको अपने मन में बिठा लेते हैं उस बात को, और व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। कड़वे शब्द बच्चों को मानसिक रूप से माता पिता से भी दूर करते हैं, अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल है उनसे भी दूर कर देते हैं। तो कभी भी हो जितना हो सके उनके साथ पॉजिटिव बातें करें और उनको मोटिवेट करें। फिलहाल आपके साथ मैं कुछ और बातें करूंगा, और फिलहाल समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और आज आशियाना में बात कर रहे हैं छोटे उस्तादों के बारे में। जी हाँ, छोटे उस्ताद यानी कि हमारे जो नटखट जो बच्चे हैं, देश का भविष्य है। और जैसे छोटे उस्ताद का हम बात कर रहे हैं कि कम उम्र के बालक किसी भी कला का मास्टर, उसे हम उस्ताद कहते हैं। और उम्र में छोटा ही सही पर काम में बिल्कुल माहिर, उसी को हम कह देते हैं कि छोटे उस्ताद। तो ये होते हैं हमारे छोटे उस्ताद। और छोटे उस्ताद हम क्यों कहते हैं, क्योंकि संगीत हो, कला हो, हर चीज़ में वो निपुणता हासिल करते हैं। बच्चे सुरताल जल्दी सीख लेते हैं, बड़ों की तरह कठिन गाने गाते हैं। टीवी शोज में यह नाम लोकप्रिय किया जा रहा है, छोटे उस्ताद। और आज टीवी शोज के साथ साथ हमारे हम रेडियोज में भी ये प्रोग्राम में उनको संबोधन में ले लेते हैं, हमारे छोटे उस्ताद। और यही हमारा आज प्रोग्राम जो है छोटे उस्ताद, उन्हीं को डेडिकेटेड है, जो आशियाना है। और हाजिर जवाबी तो तेज़ दिमाग होता ही है उनके अंदर, बच्चे बड़ों को तुरंत जवाब देते हैं। कुछ भी आप उनको सवाल पूछेंगे ना, बिल्कुल सटीक जवाब दे देंगे। उनकी बातें बहुत समझदारी भरी होती हैं, मुश्किल काम बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उनकी टेक्निक होती है, उनके दिमाग इतना शार्प हो चुका है आज के जो जनरेशन है। और नकल करने की तो अद्भुत क्षमता होती है, बच्चे बड़ों की नकल बखूबी करते हैं, बड़ों के अभिनय की कॉपी करते हैं। और उनकी बातें बड़ बोली मज़ेदार होती हैं, तभी तो हम कहते हैं कि छोटे उस्ताद। और संस्कृति का अगर महत्व हम जाने तो यह प्यार और सम्मान का सूचक है, इस शब्द को जब हम बोलते हैं कि छोटे उस्ताद। और यह बच्चों का हौसला भी बढ़ाता है। और यह शब्द उर्दू और हिंदी में आम है, जो हम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि बड़ों को, बड़ों को एक नकारात्मक जो है, कभी भी बच्चों के साथ बात नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स कभी भी उनके साथ डिस्कस नहीं करने चाहिए। और इससे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और आज जिस तरह से टेक्निक आ रही हैं, कई कई चीज़ें जो हम साइट्स पर देखें, चैट जीपीटी है या कुछ और है, जैसे कई ऐसी हैं जिसकी वजह से एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके माध्यम से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उनका थिंकिंग लेवल है वो कमज़ोर कर रहा है। और ये तकनीक बच्चों को सोचने की क्षमता को सीधे तौर पर कम नहीं करती, लेकिन इनका अत्यधिक और गलत इस्तेमाल बच्चों की स्मृति, मेमोरी, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मौलिक विचार जो है ना, ओरिजिनल थिंकिंग की शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसे उपयोग करते हैं। और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर अत्यधिक इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों की जो होती है, जो टेक्निक होती है, उनका सोचने समझने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और इसका नकारात्मक प्रभाव भी है, अगर हम गलत इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, आलस से भर जाते हैं, सोचते नहीं हैं, उतनी ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं, बच्चे खुद दिमाग लगाने की बजाय तुरंत जवाब पाने की आदत डाल लेते हैं, और रचनात्मक जो होती है वो भी कमी आ जाती है, खुद से नए विचार या कल्पना करने की क्षमता घट सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कठिन सवालों के जो जवाब हैं याद रखने की ज़रूरत जो उनको महसूस होती है ना, वो नहीं, वो सोचते हैं कि इमीडिएटली हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, हम टाइप करेंगे और नेट से हम निकाल लेंगे। तो ये भी है। और सकारात्मक जो है, जब तकनीक का सही मार्गदर्शन हो और सही उपयोग किया जाए तो उसमें सीखने में मदद मिलती है, यह मुश्किल विषयों को सरल तरीके से समझाने में सहायक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी और हम माध्यम, जिसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो मुश्किल जो विषय है ना, उसको भी सरल तरीके से समझाने में सहायक है। विचारों का दायरा जो है वो बढ़ता है, बच्चे नए विषय और अलग अलग दृष्टिकोण जल्दी सीख सकते हैं, समय की बचत होती है, यह शोध और बुनियादी जानकारी जुटाने का काम आसान करती है, और संतुलन बनाने के उपाय भी इससे मिल जाते हैं। और बच्चों को पूरी तरह एआई पर निर्भर ना होने दो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो सामाजिक, जो उनको सोचने की क्षमता है, मानसिक सोचने की क्षमता है, वो उनकी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से भी हम नहीं डिपेंड हो सकते और उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद आशियाना के अंतर्गत। और पहले उन्हें खुद सोचने दें,
होमवर्क करने का मौका दें। तकनीक का उपयोग केवल मार्गदर्शक और सहायक के रूप में करें, ये बहुत जरूरी है। और इसमें जितना हो सके आप बच्चों को समय दें, उनके साथ समय व्यतीत करें, चाहे खेलें उनके साथ या उनके साथ बातचीत करें कि आज स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, आज का दिन कैसे गुजरा। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा ना फ्रेंडली वे में, उतना ही अच्छा है उनके लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि जितना आप बच्चों के साथ खुलेंगे मिलेंगे, बच्चा सारा दिन की जो गतिविधि है, उनकी जो सारी आज स्कूल में हुआ, वो आपसे डिस्कस करेगा। और वो जितना खुल के आपसे बात करेगा, उतना ही उसका कॉन्फिडेंस और जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद। स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आशियाना में आज बात कर रहे हैं छोटे उस्तादों के बारे में। छोटे उस्ताद यानी कि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने उस्ताद, जिन्हें हम कहते हैं कि कम उम्र का बालक किसी कला का मास्टर, उम्र में छोटा पर काम में माहिर।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो रहा है और बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनकी जो थिंकिंग लेवल है उसको अफेक्ट कर रहा है। और कृत्रिम जो हम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो हर तरह से कहीं ना कहीं सहारा भी है, पॉजिटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है। क्योंकि अगर हम उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालने के लिए इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो सोचने की क्षमता है उसको अफेक्ट करता है। लेकिन बच्चों के विकास और उनकी मासूमियत को देखकर यह एहसास होता है कि बचपन जीवन का सबसे अनमोल और चिंता मुक्त दौर होता है। और जिस हिसाब से आज बच्चे हर चीज़ में बिजी हैं और मोबाइल का युग है, मोबाइल कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है उनको, और मोबाइल से वो अफेक्ट भी हो रहे हैं। जो उनका पर्सनल कनेक्ट है पेरेंट्स के साथ वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, फ्रेंड्स के साथ, नेचर के साथ वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम कुछ भी होता, मैं आमतौर पर मैं भी देखता हूँ, कभी अपने किसी फ्रेंड के घर जाता हूँ या कहीं भी देखता हूँ, आस पास अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो बच्चा रो रहा है या कुछ भी होता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन टोटली उसके ऊपर अगर हम डिपेंड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। और जब हम उस मोबाइल को उनसे अलग करते हैं देन दे फील ऑफेंडेड, वो एक तरह से झगड़ा करने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता बदल जाती है। और बचपन की जो सुंदरता है ना, वो है मासूमियत, जिज्ञासा। बचपन में जो हमें जिज्ञासा होती थी ना, ये ऐसा क्यों होता है, सूरज जो है ये इस तरह क्यों निकलता है, इधर से क्यों निकलता है, उधर से क्यों नहीं निकलता, ये जिज्ञासा है वो। लेकिन जिज्ञासा अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डालेंगे निकल आएगा सोल्यूशन, और सोचना ही नहीं है। पहले सवाल होता था, सवाल के बाद उसको सोचा जाता था क्यों ऐसा होता है। और बच्चों को हर चीज़ को नए सिरे से देखना, हर बात पर सवाल पूछना, यह सिखाता है कि दुनिया को हमेशा एक नई दृष्टि से कैसे देखा जाए। वर्तमान में जीना, बच्चे बीता हुआ कल या आने वाला कल नहीं सोचते, वे हर पल का पूरा आनंद लेते हैं, सीखने की लगन होती है उनका। जो हर गलती से सीखना और बिना किसी डर के नए काम करना, यह बताता है कि आगे बढ़ते रहने की असली प्रेरणा क्या है। और मोबाइल जो है वो आज इस युग को, हमारी जो जनरेशन थी और आज की जो जनरेशन है, ये कहीं ना कहीं वो गैप बन रहा है, और इस गैप को कहीं ना कहीं कम करना होगा। और इसके लिए मैंने जैसे बोला कि जिम्मेवार भी हम ही हैं, हमें खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि हम भी नॉर्मली जब ऑफिस से जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो मोबाइल पे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, फ़ोन कॉल पे कनेक्ट होते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए शायद समय नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं दोस्त, वो मोबाइल जो है ना, ये हमारी लाइफ में फ़ायदा तो है ही, इसका नुकसान भी बहुत है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं वही बड़ों से सीखते हैं। तो दोस्त, मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने आप को उस बचपन को जिए, उस बचपन का जो उनका बचपन है ना वो उनसे ना छीने, और अपने आप को उनको जितना हो सके टाइम दें, समय दें, यही सबसे बढ़िया एक समय का सदुपयोग है। ठीक है, ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन आप जितना हो सके कनेक्ट करें बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आशियाना, और आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं अपने छोटे उस्तादों के बारे में। छोटे उस्ताद यानी कि जो हुनर में एकदम सटीक हों, छोटे हैं पर एकदम सटीक और किसी भी कला में

महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और छोटे उस्ताद यानी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, और बच्चों से अगर मैं जुड़ने की बात करूं तो जो बच्चों से कैसे जुड़ा जा सकता है और उनके साथ अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों की बातें ध्यान से सुने और उनके साथ समय बिताना, उनके शौक में रुचि दिखाना, और इन तरीकों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे माता पिता हों, बच्चों के करीब आ सकते हैं। और कई बार आज जो मोबाइल के युग में, AI के युग में कनेक्शन जो है ना, वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। नेटवर्क जो है हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है, चाहे मोबाइल का हो, लेकिन जो हमारे पर्सनल बच्चों के साथ या फैमिली के साथ कनेक्शन है ना, वो थोड़े थोड़े वीक हो रहे हैं। और ये कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं, अगर हम बच्चों की बात करें तो बातचीत सुनना, ध्यान से सुनना, जब बच्चा कुछ कहे तो उसकी बात पूरी सुने, बीच में ना रोकें, आंखों से संपर्क बनाकर रखें, बात करते समय बच्चों की आंखों में देखें, इससे उन्हें अपनापन महसूस होता है। खुली बातचीत करें, बिना डराए खुलकर बात करने का माहौल दें, ताकि वे अपनी परेशानी बता सकें एज ए फ्रेंड की तरह। क्योंकि एक उम्र के बाद बच्चों को भी लगता है कि कोई हो जो उनकी बात सुने, जिसके साथ वो बैठकर बात कर सकें, तो ये एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। और साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी टाइम, दिन में कुछ समय सिर्फ बच्चों के साथ बिना फ़ोन बिना काम के बिताएं, उनसे बातचीत करें और शौक में उनके शामिल हों, जो उनकी हॉबीज़ हैं, बच्चे के जो उनको फेवरेट उनके खेल हैं, उनकी जो स्पोर्ट्स हैं, पेंटिंग है, गतिविधियों में उनके हिस्सा लें, उनके उनको थोड़ा मोटिवेट करें, स्नेह दें, प्यार से गले लगाना, पीठ थपथपाना बच्चों में सुरक्षा की भावना बढ़ाता है। कोई है, उनको लगता है कि कोई है जो हमारे साथ है। पेरेंट्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है ना, वो वीक होता जा रहा है। हमने जैसे बोला कि मोबाइल के नेटवर्क तो हमारे, हम चाहते हैं कि स्ट्रांग हों, लेकिन जो हमारे पर्सनल कनेक्शन है बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर जनरेशन है आज, वही फ्यूचर जनरेशन हमसे जो सीखता है वही हमें वापस हमें डिलीवर करता है। तो ये हमें भी ज़रूरी है कि क्या हम उनको दे पा रहे हैं अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो देना बहुत ज़रूरी है। तारीफ़ करना बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं पर, उनकी सराहना करना, ये भी एक ज़रूरी है। गुस्सा नियंत्रित करना, चिल्लाना या डांटने के बजाय शांत रहकर उनको समझाएं उनकी गलती को, ताकि वो दोबारा उस गलती को ना करें, उस गलती से सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं आशियाना, और आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर धवन।

दोस्तों अब मैं भी आपसे इजाजत लेता हूं। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं आशियाना, सुन रहे थे और कुछ ही देर में आपके साथ रेडियो डॉक्टर आप सुनेंगे प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम, और 4 बजे आपसे फिर जुड़ूंगा रेनबो जीनियस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब बारिश का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली होती है, हमें अच्छा लगता है जब मौसम में बदलाव होता है, गर्मी से एक राहत मिलती है, लेकिन कई बार ये अपने साथ कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है जिसका सोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए मौजूद है रेडियो डॉक्टर आज का ये अंक लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मानसून सीजन, यानी बारिश में होने वाली आमतौर पर क्या समस्याएं होती हैं, क्या संक्रमण होते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी होता है, और अगर किसी कारणवश आपको ये बीमारी या इन्फेक्शन हो जाए तो क्या सावधानी लेकर या किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, इस सब के बारे में भी आपको इस कार्यक्रम में जानकारी मिलेगी। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है आज के हमारे दो रेडियो डॉक्टर से मैं कराना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO HCGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर विष्णु आपका स्टूडियो में।
4: धन्यवाद मैम।
3: और हमारी दूसरी एक्सपर्ट, दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
5: धन्यवाद मैडम, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार।

0: ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत सारी हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो खास तौर पर इस बीमारी इस समय जो मौसम चल रहा होता है उस पर केंद्रित होती है, यानी बरसात में। और कई बार हम इसका आनंद लेते लेते ये भूल जाते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं जिससे ये बीमारी हमें हो ना जाए या ये संक्रमण हमें हो ना जाए। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं हर रेडियो डॉक्टर में अपनी समस्याओं के साथ, आज भी इस कार्यक्रम में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपना भागीदारी शो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ खूबसूरत से गीत भी सुनेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का हमें इंतजार है। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करूं मैं डॉक्टर विष्णु आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हम ये विषय आज जो लेकर आए हैं इन्फेक्शन ड्यूरिंग मानसून सीजन, कौन से ऐसे इन्फेक्शन खासतौर पर इस मौसम में आप देखते हैं?
1: देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बारिश का मौसम चारों तरफ खुशियां लेके आता है, हर कोई खुशी से भर जाता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। स्पेशली जो किसान होते हैं उनके लिए ये जो बारिश का मौसम आता है वो एक नई उमंग और नई ऊर्जा लेके आता है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें क्या होता है कि जो एनवायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा, बारिश के जो शॉर्ट स्पेल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि घर के आसपास, घर के सराउंडिंग में जो छोटे गड्ढे या छोटी चीजें ऐसी जो पड़ी होती हैं, टायर पड़ा हुआ है, कोई गमला पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है कि मच्छर बहुत पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो वो बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे जो बारिश का पानी होता है वो ओवरफ्लो होता है, नालियों में जाके मिल जाता है, नालियां ओवरफ्लो होती हैं, कई बार सीवर का जो पानी होता है वो कई बार वाटर जो लाइन होती है उसके साथ कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से, दूषित पानी की वजह से भी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो अगर हम मोटा मोटा इसको क्लासिफाई करें कि बारिश के मौसम में जो होने वाली बीमारियां हैं वो बेसिकली चार तरह की बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी होती है जो मच्छरों के काटने से होती है, इसमें मेनली जो होता है इस सीजन के अंदर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां काफी प्रोमिनेंटली देखी जाती है और ये एक पीक सीजन माना जाता है इन मौसमी बीमारियों के लिए। तो ये बेसिकली होती है आपके घर के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसमें जो मच्छर पनपते हैं उसकी वजह से। जो दूसरी बीमारी होती है वो होता है दूषित पानी को पीने से या दूषित खाने को खाने से। तो इसमें मोस्टली जो बीमारी हम मानते हैं वो होता है टाइफाइड फीवर होता है, एक हिपेटाइटिस ए और ई जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं कई बार, और एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पहले कोलेरा वगैरह भी होता था लेकिन कोलेरा आजकल देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली टाइफाइड फीवर और जॉन्डिस इस तरह का, या फिर किसी किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो ये दो तो बेसिक बड़ी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जब भी वेदर चेंज होता है तो एक फ्लू लाइक बीमारियां होती है जिसको हम वायरल फीवर भी बोलते हैं, जिसमें आपके गले में खराश हो जाती है, आपके गले में खिचखिच होने लग जाती है। तो ये भी जब बदलता मौसम होता है स्पेशली बारिश के मौसम में ये भी देखने को मिलता है। चौथी जो बीमारी, अगर मोटा क्लासिफिकेशन करें तो पेशेंट्स में कई बार कंजक्टिवाइटिस, जैसे आपके हाथ वगैरह गंदे होते हैं तो आप गंदे हाथ अपनी आंखों के आसपास लगाते हैं तो उससे आंखों के में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, लाल जिसको आंख हम बोलते हैं, वो भी इस बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती है। और इसी में एक चीज और इंक्लूड करते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपने देखा है कि बारिश के अंदर, जैसे हमने बात करी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपके कपड़े जो होते हैं स्पेशली जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो कई बार हम होते हैं कि अच्छे से सूखे नहीं होते हैं, उन्हें हम पहन लेते हैं, तो हमारे जो ऐसी जगह होती हैं उन जगह पे लाल लाल दाने या फिर चकते जैसे बन जाते हैं जिसको हम दाद खाद खुजली कहते हैं। तो ये जो चार मोटी बीमारियां होती हैं, चार तरह की जो बीमारियां होती हैं, ये बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती है।
0: जी, बहुत सारी आपने इन्फेक्शन और बीमारियां बताई, फंगल इन्फेक्शन भी, बैक्टीरियल भी, और स्किन इन्फेक्शन, वायरल भी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो जरूर हमारे श्रोता चाह रहे होंगे कि अपने जो प्रश्न है हम तक पहुंचाएं, तो उन्हें पुनः बता दें कि आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तनु मैम हमारे साथ हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि खासतौर पर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं इस मौसम में। पहले तो ये कारण भी सर ने बताया क्योंकि पानी का जमाव होता है, ये हम सब जानते हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी खासतौर पर कि कौन कौन सी ये बीमारियां हैं और इनके कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं कि अलग हैं।
2: जी, तो ये जो वेक्टर बॉर्न बीमारियां हैं, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीन बीमारियां हैं जो पूरे ही कंट्री में, हर प्रदेश में और यूटीज में प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है, काला आजार है, जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो कुछ लिमिटेड स्टेट्स में है। और ये सारी ही बीमारियों के लक्षण जो शुरू होते हैं वो फीवर से शुरू होते हैं। तो बुखार एक कॉमन लक्षण है जो सारी ही बीमारियों का होता है। साथ ही साथ जो बारिश की आपने बात की, तो बारिश के साथ ह्यूमिडिटी तो एक फैक्टर है ही कि होती है, और पानी का जमाव भी एक फैक्टर होता है। लेकिन एक फैक्टर होता है जो घर के आसपास कूड़ा और गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो, जैसे छोटे नारियल के खोल पड़े हैं या छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे पड़े हैं, उसमें जो पानी

0: होता है और ये दिन के टाइम काटता है, और इसकी प्रेफर्ड प्लेसेस हैं कि ये पैर पे काटेगा, ईयर लोब पे काटेगा, हाथ पे काटेगा, तो ये वाले सारे पार्ट्स होते हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिन भर आप इधर उधर बैठे हैं, कहीं पे स्टिल बैठे हैं, तो वो काटेगा। एक मच्छर लगभग 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ब्लड मील, जो उसका होता है, उसका जो जितना खून उसको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, एक मच्छर एक दिन में 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है, और वो सभी को इन्फेक्शन दे सकता है अगर वो इन्फेक्टेड है।
1: ओके
0: तो ये एक बहुत डेंजरस
1: जी,
0: मस्किटो
1: तो
0: होता है।
1: मतलब
0: जी
1: अगर घर में आ गया तो वो
0: जी
1: फिर
0: जी
1: सारे फैमिली मेंबर्स
0: फैमिली
1: को।
0: मेंबर्स को,
1: जी
0: तो इसीलिए प्रिकॉशंस जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं कि हम अपने घर के आसपास सफाई रखें। और एक और चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी के साथ साथ इनकी लाइफ जो होती है वो लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो ये एग से एडल्ट में जल्दी बन जाते हैं, तो मस्किटो का बहुत रैपिड प्रोलिफरेशन होता है।
1: जी, मैसेज हमारे पास एक आया है, सौरभ सिंह चौहान जी लिख रहे हैं लखनऊ से कि जैसे हम अचानक से छाता नहीं लेके निकले और अचानक बारिश हो गई, या घर से ऑफिस आए या ऑफिस से घर गए, ऐसे मैं भीग जाता हूं, तो क्या मुझे प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अगर मैं भीग गया हूं तो क्या मुझे करना चाहिए, अचानक हो गया ऐसा तो?
2: देखिए, भीगना कोई बीमारी नहीं है। बारिश में अगर कोई भीगता है तो ये नहीं कह सकते कि वो बीमार पड़ेगा ही। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी या आप कोई क्रॉनिक इलनेस है, आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, अगर वो बारिश में भीगेगा और टाइमली अपने आप को सुखाएगा नहीं, तो उसको हो सकता है कि बारिश पकड़ ले, जो बीमारी है वो पकड़ ले। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप भीग गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई आसपास शेड मिल जाता है तो आप उस शेड के नीचे जा सकते हैं। घर जाके अपने कपड़े चेंज कीजिए, तुरंत कपड़े चेंज कीजिए, मोटे कपड़े से, मोटे तौलिए से अपने पूरे शरीर को सुखा लीजिए। फिर थोड़ा सा एक गर्म चाय या गर्म सूप या कुछ ऐसी गर्माहट वाली चीज ले लीजिए, तो फिर उसके बाद में आपको इस तरह से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे, फिर भी उसके बावजूद भी लगे कि आपको बुखार आ रहा है या आपके गले में कुछ खराश, कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं।
0: हाँ, लेकिन ये पक्का है कि वो बारिश के भीगने से नहीं, पानी के भीगने से नहीं, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो कॉमन होता है उस सीजन में, तो हो सकता है आपको वायरल हो और आप भीगने से उसको एसोसिएट करें, तो ऐसा
1: ऐसा कुछ
0: ऐसा
1: नहीं
0: कुछ
1: है।
0: नहीं।
1: पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ी गर्माहट
0: गर्माहट
1: लानी चाहिए और गीले को बहुत देर तक गीला नहीं
2: नहीं
1: छोड़ना चाहिए।
2: आपके जो गीले कपड़े हैं वो जैसे ही आपको जगह मिलती है, मौका मिलता है, आप उनको
1: तो
2: चेंज कर,
1: चेंज कर
2: बेस्ट
1: कर,
2: तरीका ये।
1: जी, हमारे इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कहीं से बात करते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार,
3: दीदी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी पूछे, क्या पूछना है गौतम साहब?
3: मेरा पूछना था कि वायरल फीवर के क्या लक्षण है और बुखार से इसका क्या अंतर है और ट्रीटमेंट क्या है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर विष्णु, वायरल फीवर का आपने जिक्र भी किया था कि इस मौसम में बहुत होता है, तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल फीवर से और किस तरह से उपचार किया जाता है?
2: देखिए, वायरल फीवर अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो वायरल फीवर जो फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ आता है, जिसमें आपको हल्का सा फीवर आएगा, वो फीवर काफी तेज नहीं होगा, आपके गले में खराश होगी, हल्की सी ठंड लगेगी आपको। और जो दूसरा वायरल फीवर हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डेंगी और आपका चिकनगुनिया आता है, ये भी बेसिकली है तो वायरस डिजीज ही, क्योंकि डेंगी वायरस होता है और चिकनगुनिया वायरस होता है, तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो सिंपल वायरल फीवर जो होगा उसमें कभी भी आपको तेज बुखार नहीं आएगा, और उसके साथ कोई एसोसिएटेड फीचर होगा, जैसे आपको ठंड लगेगी, आपके थोड़े से आपको कोराइजा होगा, नाक बहेगी आपकी, आपके गले में इरिटेशन होगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे, तो वो जनरली वायरल फीवर होता है। और ये यूजुअली क्या है, 2-3 दिन तक आप सिंपल अगर फीवर हो रहा है तो पैरासिटामोल लेंगे, गर्म चीजों का सेवन करेंगे, जैसे गर्म चाय ले ली, गर्म कॉफी ले ली, गर्म सूप ले लिया, इस तरह की चीजें खाएंगे तो 2-3 दिन में ये सेटल डाउन यूजुअली हो जाता है। इसका दूसरा स्पेक्ट्रम जो है, अगर हम वायरल फीवर दूसरे की बात करें, तो एक डेंगी और एक होता है आपका चिकनगुनिया। तो डेंगी और चिकनगुनिया के अंदर जो बेसिक फीचर डिफरेंस होता है, डेंगी फीवर में आपको जो फीवर होता है वो तेज, काफी तेज फीवर आता है आपकी आंखों के पीछे, जैसे आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, अगर आप आंखें बंद करके अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे तो आपकी आंखों के पीछे आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा, ये एक इसका काफी टिपिकल फीचर होता है। हल्की सी रैश आपके शरीर पे आपको देखने को मिलेगी 3रे 4थे दिन। रैश आपको चिकनगुनिया में भी देखने को मिलती है, लेकिन वो उसमें अर्ली रैश होती है। दूसरा जो फीचर जो डिफरेंशिएट हम करते हैं, जो चिकनगुनिया फीवर होता है उसमें आपके ज्वाइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे किसी जगह पे बैठ गए और आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप उठ के जा रहे हैं तो आप ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड एज में कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है, हाथ झुक जाते हैं, तो वो अपनी कमर को सीधी नहीं कर पाते,
1: जॉइंट्स
2: जो स्टिफनेस होती है वो चिकनगुनिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, फीवर उसमें भी

0: आता है, लेकिन उतना तेज नहीं आता जितना आपको डेंगू में आता है। डेंगू में उसके अपोजिट क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, उसमें बोन्स और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। मतलब आपकी बोन्स ऐसे लगेगी जैसे आपको किसी ने कंबल में लपेट के पीटा हो, तो आपको पूरा बदन टूटेगा लेकिन आपके जॉइंट्स इतने स्टिफ नहीं होंगे, और फीवर आपको देखने को मिलेगा, आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा और थोड़ी सी रेस्ट देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस है डेंगू और चिकनगुनिया फीवर के अंदर।
1: जी मैम, हमारे साथ है तनु मैम, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसी तरह से केसेस डील कर रहे हैं? हाँ,
2: तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डेंगू, चिकनगुनिया और कॉमन वायरल फीवर में जो डिफरेंसेस हैं वो सारे लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि वैसे तो आप जो भी बुखार होगा आप सिर्फ पैरासिटामोल लें, कोई और दवाई ना लें, क्योंकि डेंगू के अंदर में अगर आप कोई और दवाई लेते हैं जैसे लोग आइबुप्रोफेन ले लेते हैं या कोई एंटीबायोटिक या ऑफ द काउंटर कोई दवाई लेते हैं तो वो नुकसान कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर में आपके चांसेस हैं कि कहीं पे आपके प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। उसी के साथ में डेंजर साइंस थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जैसे 3-4 दिन में अगर वायरल है तो वो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन अगर डेंगू है तो उसमें डेंजर साइंस यूजुअली ये होते हैं कि 7 डेज तक वायरस आपकी बॉडी में रहता है, और 7 दिन के बाद अगर आपको फिर भी बुखार है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी डायग्नोसिस डेंगू की बनी हुई है ऑलरेडी, आपने टेस्ट करा लिया है, तो 2-3 दिन अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपको डायग्नोसिस मिल जाएगी। तो अगर आपको बुखार बना हुआ है या पेट में दर्द होता है या वॉमिटिंग होती है या रैशेज आते हैं या कहीं से ब्लीडिंग होती है तो वो डेंजर साइंस है। तो जो कहते हैं ना कि डेंगू बुखार खतरनाक हो सकता है, तो ये खतरनाक होने के फीचर्स हैं जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए बुखार उतरने के बाद भी। तो कोई जरूरी नहीं है कि बुखार रहेगा, बट पेशेंट ऐसा कहेगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, फीवर भी नहीं है, कुछ अपेरेंटली दिख नहीं रहा पर ठीक नहीं लग रहा है, खास करके अगर पेट में दर्द है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं जिनको लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरा, चिकनगुनिया में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होती है, इससे नॉट डिसेबिलिटी बट लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी होती है। ये पेन जो है काफी दिन तक रहता है, कई कई केसेस में देखा गया है कि ज्वाइंट पेन आपका 1-1 साल तक परसिस्ट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। इसमें घबराना ये नहीं है कि ये हमें ही क्यों हो रहा है, ये जिसको भी चिकनगुनिया होगा तो उसको ये परेशानी होगी, लेकिन हमें ऐसी बीमारियां करनी ही क्यों है, ये आपका जो एक प्रोग्राम है इसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये इजिली प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, और ये अपना ख्याल रखना है, अपने घर का ख्याल रखना है, अपने घर के आसपास का ख्याल रखना है, तो ये इस तरह की बीमारियां होंगी नहीं। तो ये जरूरी है कि लोग अपने आप प्रिकॉशंस लें और पर्सनल प्रोटेक्शन।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं, इसका मकसद यही कि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और ये सारी बीमारियां आपको ना हो, लेकिन वो यही बात है कि जब तक हमें पता ना हो, अवेयर ना हो, तब तक हम उस चीज के लिए उतनी जानकारी नहीं समेट पाते हैं। तो बिल्कुल ये सही माध्यम है, यहां पर आप पूछ भी सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं, और मैसेजेस भी बहुत हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हम एक गाना सुनकर वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, बारिश के दौरान होने वाली संक्रमण और बीमारियों के बारे में। और हमारे गेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता और डॉक्टर तनु जैन। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करम दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका?
1: हाँ, पहले तो शाली मैम को शालिंदा से ही नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत।
1: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: मेरे दो सवाल है
0: जी।
1: एक मिठा है और एक सवाल है। पहले मैं सवाल पे आता हूँ। वैसे तो मुझे जो है ना श्वसन एलर्जी है और स्किन से मुतालिक भी एलर्जी है, तो जब भी कोई टेस्ट होती है घर में तो मैं छींक आने शुरू हो जाती है, तो साफ में परेशानी होती है। और जब घर की सफाइयां करता हूँ मैं तो मेरे को खुजली शुरू हो जाती है शरीर में। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इसके लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक गंगोत्री का पानी और वर्षा का पानी, ये दो पानी सबसे शुद्ध पानी माने जाते हैं या कहा जाता है, तो क्या इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें कॉर्पोरेशन के पानी से भी नहाना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा मिथ ये है कि जब हम लोग नहाते हैं और उसके बाद हम कपड़े भी धोते हैं, तो मैंने तरीका बताया है कि मैं जब नहाता हूँ और उसी वक्त अपनी शरीर की सफाई और कपड़ों की सफाई की और फिर उन्हीं कपड़ों को मैं पहन लेता हूँ और पंखे की नीचे खड़ा हो जाता हूँ, 15 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं, तो मुझे मेरी जो प्रॉब्लम मुझे इसमें रिलीफ मिल रहा है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: चलिए धन्यवाद। प्रश्न थोड़े अलग से प्रश्न है डॉक्टर साहब, बताएं क्या बताना चाहते हैं।
3: देखिए, आपका जो मिथ है पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आप जब नहाते हैं उसी के साथ कपड़े धोते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर कोई नहाते वक्त कपड़े धोता है। तो जो गलती आप जो करते हैं वो ये है कि आप जैसे ही कपड़े धोते हैं उनको सुखाने के बजाय उनको पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। वो इसलिए कि जैसे कि हमने अभी बात करी कि बारिश के सीजन के अंदर अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे तो वो कुछ ऐसी जगह होती है हमारे बॉडी के अंदर जहां पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पसीने के रूप में या फिर आप ये कहें कि वो नमी के रूप में फंगल इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप गीले कपड़े पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाएं। दूसरा, जैसे कि हमने हमसे किसी श्रोता ने भी पूछा था कि मैं बारिश में भीग जाता हूं, तो हमने उसे सजेस्ट किया था कि कभी भी आप बारिश में भीगते हैं तो घर आके सबसे पहले अपने गीले कपड़े चेंज कर लीजिए और अपने बदन को एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और कुछ गर्माहट वाली चीज लीजिए। तो अगर बारिश के मौसम में अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे और पंखे के नीचे खड़े रहेंगे तो नेचुरल है कि आपको कोई बीमारी पकड़ भी सकती है और आपको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना भी रह सकती है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले कि कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं और वायरल के बारे में आपने बताया था। मैं जानना चाह रही थी डॉक्टर तनु आपसे कि मलेरिया भी बहुत फैलता है लेकिन उसका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: जी, तो मलेरिया जो है उसका बुखार थोड़ा सा फर्क होता है और उसमें एक हॉट फेज होता है जहां पे काफी हाई ग्रेड फीवर आता है और उसको चिल्स के साथ आता है, काफी तेज ठंड लगती है और फिर फीवर आता है और फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है कि पहले आपको बहुत तेज ठंड लगेगी। तो वो ठंड बहुत तेज का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कंबल पहन लें या हल्का चादर डाल लें। आपके ऊपर 1, 2, 3 कंबल इस मौसम में भी अगर डालेंगे तो आप कहोगे जी मुझे ठंड लग रही है अभी भी, तो वो चिल्स कहते हैं हम उसको। वो बहुत कस के चिल्स आती हैं और फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है और उसके बाद आप सारे कंबल उतार दोगे आप, क्योंकि आपको पसीना स्वेटिंग आके वो उतरता है बुखार। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है। इसमें भी थोड़ा हेडेक ज्यादा होता है, मसल पेन ज्यादा होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है। और यूजुअली ये सिम्टम्स जब होते हैं तो हम मलेरिया सस्पेक्ट करते हैं। ये मच्छर के काटने के 7 से 10 या 15 दिन बाद इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और अगेन इसका मच्छर जो है उसको एनोफिलीज मस्किटो कहते हैं और ये पनपता है जो आपका गंदा पानी है ठहरा हुआ, जैसे नाले हो गए, ड्रेन्स हो गए या सॉलिड जो आपके घर के आसपास गंदगी पड़ी है उसके अंदर पानी बहुत दिन से पड़ा हुआ है और ठहरा हुआ पानी है, तो ये मच्छर भी वहां पे पनपता है। और ये मच्छर यूजुअली शाम के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में काटता है। खास करके इसके प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको रात में सोते वक्त मच्छरदानी के अंदर सोना है, ये बहुत जरूरी है और ये आदत है जो सारे लोगों को लगा लेनी चाहिए अपने घरों में मच्छरदानी। दूसरा जो है, शाम होते होते अगर आप लोग के घरों में जाली वाली खिड़कियां हैं तो उनको जरूर बंद कर दें और मच्छर ताकि अंदर ना आ पाए। और अगर नहीं है तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपने घर में जाली की खिड़की दरवाजे जरूर रखें, जिनको कि शाम होते ही बंद कर दें, जिससे कि मच्छर अंदर ना आए। और इस वाले सीजन में अगर हो सके तो दोपहर में भी जब आप सोएं तो मच्छरदानी के अंदर सोएं, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। खास करके प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो एल्डरली हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, उनको जरूर मच्छरदानी में सुलाएं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करें और मच्छरदानी के अंदर सुलाएं, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जब गर्भवती महिला में होती हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। तो सब लोग प्रिकॉशंस लें, एक तो सफाई रखें, किसी भी तरह का जल भराव आसपास ना होने दें, दूसरा जो है पूरी बांह के और पूरे कपड़े पहने और मच्छरदानी के अंदर सोएं, और जब भी आपके यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आए कोई स्प्रे करने या घर के अंदर या घर के बाहर, तो उनका पूरा सहयोग करें। तो ये सब चीजें करेंगे तो फिर ये इस तरह की बीमारियों से हम छुट्टी।
0: खासतौर पर हम प्रिकॉशंस पर आज बार बार बात करेंगे कार्यक्रम के थ्रू आउट, क्योंकि जैसा मैम ने भी कहा कि ये प्रिवेंटेबल है, प्रिकॉशंस ली जाए अगर सही तरीके से हम ध्यान रखें तो ये नहीं होंगी बीमारियां। और ये मैसेज आया है अनूप कुमार जी का रांची से कि प्लीज टेल अबाउट स्प्रिंग एलर्जी एंड क्योर। तो डॉक्टर विष्णु, स्प्रिंग एलर्जी क्या इस मौसम में होती है?
3: देखिए, स्प्रिंग एलर्जी जो है ये सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, इसका नाम है। और ये मोस्टली होती है जैसे ही आपकी सर्दी जाने लगती है और उसके बाद में जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें ये होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि सर्दियां जाती हैं तो पेड़ पौधे हैं वो खिलते हैं, उनमें फूल निकलते हैं थोड़े से, और घास है वो एक नई करवट लेती है, पत्ते शेड होते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि हवा में पोलन ग्रेन्स फैल जाते हैं, छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे, जैसे ही सर्दियां जाती है और फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग में हवा में छोटे छोटे छोटे छोटे कण तैर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है उसे जो स्प्रिंग एलर्जी बोलते हैं वो होती है। और उसका कारण
0: रेस्पिरेटरी
3: इलनेस है। और वो आपको केवल रेस्पिरेटरी नहीं, जैसे आपकी आंखों में आ गए,
0: अच्छा,
3: तो आपकी आंखों के अंदर कंजक्टिवाइटिस या आपकी आंखों में पानी आने लगेगा, नाक में चले गए तो लगातार छींके आने लगेगी, आपकी स्किन में, जैसे किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आपकी स्किन पे अगर वो कण बैठ गए तो उस जगह पे आपको खुजली होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स डिपेंड करता है कि वो जो एलर्जन है वो कहां पे जाके लैंड किया।

0: है।
1: अच्छा, तो ये खास तौर पर लेकिन आपने
0: और
1: बोला है कि
0: ये और
1: सर्दी और मौसम
0: मौसम
1: बदलाव के
0: और
1: बाद।
0: बारिश के मौसम में तो हे फीवर या स्प्रिंग एलर्जी चली जाती है, क्योंकि बारिश की बूंदों की वजह से जो कण होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते
1: सेटल
0: हैं,
1: हो
0: जैसे
1: जाते
0: पोल्यूशन चला जाता है
1: हैं।
0: बारिश के मौसम में, वैसे ही हे फीवर कम देखने को
1: मतलब
0: मिलता
1: जो
0: है,
1: भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं
0: वो
1: वो
0: सेटल डाउन हो
1: सेटल
0: जाता है।
1: डाउन हो गए। सागर मखीजा जी हमसे पूछ रहे हैं विजयपुरा कर्नाटका से कि मेनी पीपल आर फेसिंग फ्लू लाइक इश्यूज ड्यूरिंग मॉनसून, हाउ इट कैन बी डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड इन मेनी स्टेट्स, कोविड इज ऑल्सो ऑन राइज। और एक क्वेश्चन और है कि वॉट प्रिकॉशंस यू कैन टेक सो दैट वी डोंट गेट एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग मॉनसून। तो हमने अभी तक यही सारी बातें की हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं सागर जी तो आपने सुन लिया होगा, अगर इसके अलावा भी आप कुछ जोड़ना चाहें आप लोग तो बताएं। वैसे तो ये बात हम अभी कर ही
0: देखिए
1: रहे थे।
0: फ्लू सीजन हर मौसम में, जब भी मौसम बदलेगा फ्लू सीजन आएगा, तो कोविड भी एक तरह का फ्लू ही था। तो उसमें भी हमने कोविड पे जो विजय प्राप्त की थी वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों से प्राप्त की थी, या तो मास्क से और सोशल डिस्टेंसिंग पे। तो अगर
1: जी
0: आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, आपको या आपके परिवार में या आपके किसी दोस्त को, तो उसको बोलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और मास्क पहने। अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा है और ये चीज आपको वरीसम कर रही है तो नियर बाय डॉक्टर से जरूर मिले,
2: जी ये
0: उसे कभी
2: मास्क
0: भी।
2: के ऊपर मैं बोलना
1: जी
2: चाहूंगी,
1: जी
2: जो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि
1: जी
2: मास्क पहने। तो बाहर अगर आप कुछ और कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे लोग अपने आप मास्क पहनना शुरू कर देते हैं, उनको कोई बताता नहीं है। तो जब फीवर आपको खांसी जुकाम है तो टू अवॉइड कि दूसरे लोगों के तक पहुंचे तो मास्क पहने। और एक चीज जो प्रिवेंशन के लिए यहां पे बताना चाहूंगी कि हाथ धोना समय समय पे, चाहे वो रेस्पिरेटरी इलनेस हो, चाहे कंजंक्टिवाइटिस हो जो आंखों में हो जाती है, चाहे आपकी फूड बॉर्न इलनेस हो, वाटर बॉर्न हो, जो ये सब फैलती हैं बीमारियां, अगर सब लोग हाथ धोने का ध्यान रखेंगे कि प्रिकॉशंस लेंगे, और जो एक हमारा यूनिवर्सल हैंड वॉशिंग टेक्निक है कि कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ को ठीक से धोएंगे साबुन से और साफ पानी से, तो बहुत हद तक इन सब बीमारियां जो एयरबॉर्न है, जो आपकी वायरल इन्फेक्शन है, उससे हम छुट्टी पा सकते हैं।
1: जी ये बहुत जरूरी बात है ध्यान रखना कि सफाई पे भी बहुत जोर है। और एक ये मैसेज हमारे पास आया है, श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीन एंड व्हेन इट हैज टू बी टेकन। और धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है। करंट इश्यूज और जो खास तौर पर जो मौसमी बीमारियां उस पर जो हम कार्यक्रम लेते हैं उसकी ये तारीफ कर रहे हैं। तो धन्यवाद श्याम जी, आप इस तरह से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के साथ। क्या कुछ वैक्सीन से इनको बचाया जा सकता है डॉक्टर साहब?
0: देखिए अगर हम मौसमी बीमारियों की बात कर रहे हैं बारिश से रिलेटेड, तो इसमें जो प्रोमिनेंट बीमारी है वो टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पहले कॉन्जुकेट पॉलीसेक्राइड वैक्सीन हम लगाते थे जो 2 साल से बड़े बच्चों को लगती थी, लेकिन अब कुछ टाइम पहले एक नई वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी सिंगल डोज ही लगती है, जो टीवीसी टाइफीबार वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं, उसकी सिंगल डोज लगती है और 6 महीने से लेके आप 45 साल तक के किसी भी उम्र के व्यक्ति को लगा सकते हैं और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है इससे।
1: अच्छा, टाइफाइड
0: टाइफाइड के लिए
1: जी
0: पहले आउट पहले 3 तरह की वैक्सीन और भी होती थी, एक ओरल वैक्सीन भी आती थी टाइफाइड के लिए, लेकिन वो अब ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि जब से नई वैक्सीन आई है, और दूसरा क्या है कि उसकी सिंगल डोज लगती है तो इसलिए वो पॉपुलर ज्यादा है। हालांकि अभी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में वो इंक्लूड नहीं हुई है, पर ये प्राइवेटली काफी अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर और आप इसे लगा सकते हैं। अगर स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके घर के अंदर इस तरह की बीमारियां बार बार देखने को मिलती हैं,
1: तो आप रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की लगा लेनी चाहिए। पर उसको 45 ईयर्स तक को ही क्यों आपने माना है?
0: तब तक इम्यूनिटी डेवलप होने
1: अच्छा,
0: लग जाती है,
1: उसके बाद लगाने से फायदा नहीं है।
0: लंबा कोई मतलब मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं वो आपके अवॉइड हो चुके होते हैं।
1: ओके, तो मैक्सिमम जो उसका फायदा है वो 45 ईयर्स तक ही होता है। अच्छा, एक हमारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है इस समय। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार,
3: नमस्कार
1: जी, अपना नाम बता दीजिए।
3: जी मैं नवीन भाई जोशी वाला।
1: जी हाँ, प्रश्न बताएं।
3: जी मैं मैम से सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि छोटे बच्चे तो मानते ही नहीं है बर्फ ऋतु में बारिश में नहाते रहते हैं, छोटे बच्चे भीगते रहते हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाए, इससे कोई फीवर वगैरह भी तकलीफ में ना आए।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल यही एक प्रश्न मेरे पास मैसेज के माध्यम से भी आया हुआ था जो मैं अगले लेने वाली थी, तो मैं उसको भी पढ़ देती हूँ। नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा था कोटद्वार उत्तराखंड से कि सभी को नमस्कार, और बरसात में बच्चे शौक से भीगते हैं और ठंडा गर्म खा पी लेते हैं, तो बच्चों के लिए खास तौर पर क्या आप लोग बताना चाहेंगे?
0: देखिए प्रिकॉशन चाहे छोटा है या बड़ा है दोनों के लिए समान है। छोटे बच्चे क्योंकि बारिश को ज्यादा पसंद करते हैं, बार बार जाके बारिश में भीगते हैं, तो कोशिश करिए कि उसका बारिश का जो स्पेल है वो ज्यादा बड़ा ना हो। मतलब 10 मिनट 5-10 मिनट आप भीगते हैं तो ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक बारिश में ना भीगें। अगर बच्चे बारिश में भीगते भी हैं तो उसको

0: तुरंत जैसे ही बारिश खत्म होती है, बारिश से जैसे ही बाहर आता है, उसके गीले कपड़े आप तुरंत उतार दीजिए। उतार के उसके पूरे शरीर को गर्म टॉवल से या टॉवल से, मोटे टॉवल से पोंछिए ताकि पानी ना रहे, और उसके बाद में उसको कुछ जैसे हल्का सा गर्म दूध या गर्म चाय, इस तरह की चीजें उसको दीजिए। ये सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो सबके लिए बराबर हैं।
1: तो यहाँ पर एक ब्रेक लेकर आते हैं, एक गाना सुनते हैं और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज बात हो रही है विभिन्न ऐसी बीमारियों के बारे में जो खास तौर पर बारिश के मौसम में हम देखते हैं और उसके बारे में काफी बातें हम डॉक्टर साहब से जान चुके हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, आगे भी करेंगे और कर भी चुके हैं। लेकिन कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं जिसमें, जैसे डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं किसी भी बीमारी की तो उसमें हम बोलते हैं हर ऋतु में एक खान पान की बात जरूर होती है, लाइफ स्टाइल की बात जरूर होती है, हमारे कार्यक्रम में उसकी कोशिश करते हैं कि उसके बारे में भी अपने श्रोताओं को बताएं। तो क्या खास तौर पर बारिश के मौसम में, मॉनसून सीजन में कुछ ऐसी प्रिकॉशंस खाने पीने से रिलेटेड लेनी चाहिए? जैसे एक प्रश्न है मैसेज के माध्यम से, सरोज मल्होत्रा जी का आया है साकेत मेरठ से, कि क्या मॉनसून में दही खानी चाहिए या नहीं और डाइट क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा बताएं।
1: पहले तो ये मिथ इनका दूर कर देता हूं कि बारिश क्या किसी भी मौसम में आप दही खा सकते हैं, दही खाने से कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज जो इन्होंने पूछी थी कि बारिश में खान पान के लिए हमें क्या स्पेशल प्रिकॉशन और क्या ध्यान रखना चाहिए, आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में आपके घर के अंदर कोई सामान होता है, फ्रिज के अंदर भी रखा होता है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है। बारिश में आपने देखा अचार होता है, अचार में फफूंदी लग जाती है, कोई जैली पड़ी होती है जैसे बच्चे खाते हैं, जैम पड़ा होता है, जैम के अंदर एक व्हाइट कलर के ऊपर लेयर जमने लग जाती है, फंगस लग जाती है ना। पापड़ पड़े होते हैं, पापड़ अगर एक दो, मतलब 15 दिन भी अगर आप फ्रिज में उसको ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो उसके अंदर भी फंगस लग जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बारिश के दिनों में फूड जो इंग्रेडिएंट होता है, फूड जो होता है वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खराब जल्दी होता है। तो अगर आप खराब फूड को अगर खा लेंगे, जैसे बासी फूड है, अगर उसको अगर आप खाएंगे तो नेचुरल है कि वो आपकी बॉडी में जाएगा और आपको बीमार करेगा ही करेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि बारिश के दिनों में, बारिश में नालियां होती हैं, आपके ड्रेन्स होते हैं, ये ओवरफ्लो हो जाते हैं और कई जगह क्या होता है कि आपका जो पोटेबल वाटर होता है, जो हमारे घर में पीने के लिए जो पानी सप्लाई होता है, वो कई बार मिक्स हो जाता है आपके सीवर लाइन से या कहीं भी छोटी सी लाइन में आपका, मतलब
0: कहीं ब्रेकेज है,
1: कहीं ब्रेकेज है, उसमें आपका मिक्स हो गया और वो पानी आपके घर के अंदर आ गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो नेचुरल है कि वो आपको बीमार करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको बचाव करना ही है तो बारिश के दिनों में जो आप पानी यूज करते हैं उसे उबाल के ठंडा करके फिर यूज करें। खाना कभी भी बासी खाना ना खाएं और ताजा शुद्ध घर का बना हुआ खाना खाएं। तीसरी चीज, जैसे हमने कई बार देखा है कि स्ट्रीट पे कई बार स्ट्रीट फूड होता है, गोलगप्पे होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, स्ट्रीट फूड जो लोग खा लेते हैं, तो बारिश के दिनों में इन्हें अवॉइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे कई लोगों की आदत होती है कि बाहर जो कटे हुए फल मिलते हैं, ठेले लगा के बैठे रहते हैं, वो 3-4 तरह के फल काट के और आपको दे रहे होते हैं, तो बारिश के दिनों में स्पेशली इस तरह के फूड को अवॉइड करना चाहिए।
0: तो मतलब मेन यही है कि घर का बना हुआ
1: साफ खाना, ताजा खाना
0: तो ये हर मौसम में बोला जाता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ज्यादा और अगर एहतियात ली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वही आपने से बताया ह्यूमिडिटी है तो उसमें ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है। डॉक्टर तनु जी, एक प्रश्न ये आया जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अनु कुमार जी लिख रहे हैं रांची से कि मलेरिया इराडिकेशन कार्यक्रम है 2030 तक इसको इराडिकेट करने का, तो वो बताएं। और साथ ही मैं चाहूंगी कि और भी सरकारी जो प्रयास हो रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के चलते कि किस तरह से इनको खत्म किया जाए, तो उन प्रयासों के बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: जी, तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और इस इंस्टीट्यूट में 6 वेक्टर बॉर्न बीमारियां जो मेजर हैं हमारी कंट्री में, उसके तहत सारी पॉलिसी बनाई जाती है और प्रोग्राम पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें 3 मेजर बीमारियां जिसपे हम थोड़ी चर्चा भी कर चुके हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आती हैं। और इसमें जो मलेरिया का इन्होंने गोल पूछा है वो SDG गोल है एलिमिनेशन का, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक गोल होता है। तो अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इस साल में आई थी उसमें ऑलरेडी हमारे कंट्री ने जो पैरामीटर्स थे अचीव करने के 2025 तक, वो अचीव कर लिए हैं। 80% से ज्यादा केसेस में डिक्लाइन आया है 2015 से 2025 के बीच में और डेथ्स में भी लगभग 80% के ऊपर डिक्लाइन।

0: है, कम हुई है हमारे यहाँ पे मृत्यु भी, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंट्री के लिए। लेकिन अभी जो डेफिनेशन के हिसाब से हमको जीरो केसेस पे जाना है, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो जिले हैं 160 जिलों में 3 साल से पिछले जीरो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है देश की, और ये अथक प्रयास हैं भारत सरकार के जिसके चलते ये सारी हमें अचीवमेंट्स हो पा रहे हैं। और इसी के तहत में जो नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से चलता है, और स्टेट्स की सहायता से जो नेशनल हेल्थ मिशन है हमारा, जो एक बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत PIP जो होती है या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें स्टेट के साथ बैठ के पॉलिसी बनाई जाती है, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक, विलेज लेवल तक क्या क्या एक्टिविटीज करनी है उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है, और उसके लिए बजट भी प्रोवाइड किया जाता है स्टेट्स को, तो कौन सी नई दवाइयां आई हैं, कौन से हमें किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, जब अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज क्या करनी है, मीडिया एक्टिविटीज क्या करनी है, इन सब पे विचार करके और उसके लिए फंडिंग की जाती है। तो ये तो एक मलेरिया का प्रोग्राम हुआ, इसी तरह डेंगू चिकनगुनिया में भी रहता है। दो और बीमारियां हैं जो थोड़ी सी टच करना चाहूंगी मैं, हाथी पांव जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कहते हैं, वो भी हमारे देश में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, और उसके लिए भी एक मच्छर ही जिम्मेदार है। आपको ये भी बहुत सारे श्रोताओं को शायद नहीं पता होगा कि हाथी पांव अगर आपने अपने आसपास देखा है, या हाइड्रोसील जो होती है उसको अगर आपने कहीं पे देखा है, तो वो मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है, जो लोगों को नहीं पता होता है। लोगों को लगता है कोई चोट लगी है या कोई घाव हुआ था, कोई जख्म हुआ था जिसकी वजह से हमें ये हो गया। कुछ लोग तो इसको जो है सोचते हैं कि ये कोई अभिशाप है हमें दिया हुआ। तो ये भी एक मच्छर जिसे हम क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं, और शाम होते ही आप देखेंगे कि ये न्यूसेंस मस्किटो भी कहलाता है, क्योंकि ये शाम होते ही आपका पूरे में घूमने शुरू कर देता है, और इसके काटने से इतनी भयंकर बीमारी होती है और उसका कोई इलाज भी नहीं होता। अगर आप 25-30 साल की उम्र में किसी को हो जाए, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनके साथ वो बीमारी रहेगी, अगर स्टेजेस बढ़ गई। इसमें पैर फूल जाता है, और पैर के अंदर में जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज बंद हो जाती है, और पैर का साइज बढ़ जाता है। जैसे हाथी पांव इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी का पांव होता है उस तरह होता है, उसके अंदर फोल्ड्स आ जाते हैं, और फोल्ड्स के अंदर में इन्फेक्शन होता है, तो ये काफी भयानक बीमारी होती है। और इसके लिए भी अब ये जो गोल है हमारा 2027 तक हमको less than 1% माइक्रोफाइलेरिया रेट करना है। ये एक छोटा सा पैरासाइट होता है जो मच्छर काटता है तो आपके ब्लड में छोड़ जाता है, और वो बड़ा पैरासाइट, बड़ा एक वर्म बन के आपके लिम्फेटिक्स में पैर के पहुंच के वहां पे बैठ जाता है। एक और बीमारी है जो कालाजार है, और उसके लिए अच्छी खबर ये है जो कि 4 ही अभी राज्यों में है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और उसमें भी सब जगह नहीं है, 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें है, और लगभग 633 ब्लॉक्स हैं। तो ये बीमारी को 2023 में हम एलिमिनेट किए हैं, इसका एलिमिनेशन का गोल है कि एक केस से कम हो पॉपुलेशन में 10 लाख में, तो वो गोल हम अचीव कर चुके हैं, और अगर ये हम सस्टेन कर गए हैं तो अगले साल हम लोग WHO को डॉजियर के लिए अप्लाई कर सकेंगे और ये बीमारी हमारे देश से एलिमिनेटेड हो जाएगी। और एक आखिरी जो बीमारी हम लोग देखते हैं वो जैपनीज एनकेफेलाइटिस है, या दिमागी बुखार जिसे कहते हैं, ये भी कुछ 20 राज्यों तक ही सीमित है, और इसके अभी तक बहुत ज्यादा केसेस अब नहीं आते, पहले बहुत आते थे, लगभग 1000 से 2000 केसेस के बीच में हर साल रिपोर्ट होते हैं, बट इसकी केस फेटालिटी बहुत हाई है, मतलब डेथ्स बहुत होती है, अगर जो केस जिसको हो जाए उसमें करीब 10 से 15% लोगों में डेथ्स होती हैं। पर इसके लिए खुशखबरी यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और ये अवेलेबल वैक्सीन इन सब राज्यों में जो प्रभावित राज्य हैं उसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर बच्चों को दी जाती हैं 2 डोजेस, और जहां एडल्ट केसेस हैं वहां पे एडल्ट वैक्सीनेशन भी एक प्रोजेक्ट मोड में हम लोग करते हैं। तो ये सारे
1: एडल्ट्स को भी लगाई जा रही है, लेकिन सबको नहीं, आप बोल रहे हैं जी
0: जहां पे एडल्ट्स में है, जो यूजुअली क्या होता है जहां पे चाइल्डहुड में वैक्सीन हम 2 डोज दे रहे हैं उसमें देखने में ये आता है कि कुछ जगहों पे 15 साल के ऊपर के लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन दिखने लगता है, तो फिर हम वहां पे एक कैंपेन मोड में एडल्ट वैक्सीनेशन भी करते हैं। तो ये सारे प्रयास हैं जो इन सब बीमारियों के अराउंड हमारे चलते हैं, और इसमें जो है हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के और सचिव समय समय पे हमारा रिव्यू करते हैं, स्टेट्स का रिव्यू करते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज पे ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर इसमें जनता का सहयोग, जनभागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं कि जब तक आप खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत मुश्किल है कि सरकार आपके घर तक पहुंच के पानी ड्रेन करे। तो हमारी सबसे फिर से अपील है कि बहुत ही जरूरी है कि अपने घर के चारों तरफ और पर्सनल प्रिकॉशंस, जनभागीदारी और जागरूकता, ये एक दो चीजों का बहुत इसमें सहयोग हम लोगों को सरकार को चाहिए रहता है।
1: जी, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। बहुत सारे, बहुत विस्तार से आपने बताया कि सारी बीमारियों को एक एक लेकर और किस तरह से हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। लेकिन यही, जैसा आपने कहा कि जन भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन

0: कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो यही इस कार्यक्रम का भी आज उद्देश्य है कि आप इस चीज को समझें कि किस तरह से हम इसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं और किस तरह से बचाव या उपचार की दिशा में हम भी अपना एक कदम बढ़ाकर सरकार को सहयोग कर सकते हैं। एक मैसेज आया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर जो हम वैक्सीन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में आपने जो बात की थी उससे रिलेटेड ये मेरे पास प्रश्न है। इन्होंने लिखा है कि मैं 46 इयर्स की फीमेल हूं और मुझे टाइफाइड जब हुआ था फर्स्ट टाइम तो मैं 43 इयर्स की थी और आज मुझे और 45 इयर्स पे मुझे दोबारा हुआ, यानी 2 साल बाद इनको दोबारा हुआ और दोनों बार डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि आप वैक्सीन लगाएं। ही ऑल्सो आस्क्ड टू टेक अ 19-डे इंजेक्शन कोर्स। Should I take vaccine and any such injections? If no, then how to prevent future reoccurrence? ये उन्होंने जानना चाहे।
1: देखिए 45 साल जो हमने उम्र बताया था ना, वो कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि मतलब 45 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगती। ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, 45 के ऊपर भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर यूजुअली क्या होता है कि 45 के बाद में इम्यून रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जब हम किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो हमारा मोटिव यह होता है कि उस इन्फेक्टिव पॉजिटिव एजेंट जो होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक स्ट्रांग इम्यून रेस्पॉन्स शो करे। तो 45 के बाद में क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है। पर लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको रिकरेंट टाइफाइड फीवर हो रहा है, टाइफाइड डायग्नोज हो रहा है, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है।
0: अच्छा, तो लगवा
1: और ये जो 19 इंजेक्शंस, आई डोंट थिंक सो कि या तो ऐसा होगा कि ये मलेरिया अभी टाइफाइड से पीड़ित होंगी तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो टाइफाइड के इंजेक्शंस जो होते हैं, टाइफाइड के लिए जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए वो बोल रहे होंगे, पर वैक्सीन 19 डेज तक नहीं लगती कभी भी।
0: जी जी, वैक्सीन वही है जो आपने अभी विस्तार से बताया,
1: वो 45 के बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स होता है थोड़ा पुअर होता है, इसलिए उसको डिस्करेज करते हैं, अदरवाइज किसी में इंडिकेटेड है तो उसको लगा सकते हैं।
0: तो जैसे इनको बार बार हो रहा है टाइफाइड, तो क्या रीजन है कि किसी को वही बीमारी बार बार होती है? क्या इम्यूनिटी लो होती है या कोई उनके प्रिवेंशन की जो है सही तरीके से ये सावधानियां नहीं ले रही
1: हैं? पीछे मैं आपको एक बताता हूँ, एक टाइफाइड मैरी करके कंसेप्ट फेमस है पूरे वर्ल्ड में, एक टाइफाइड मैरी टर्म हम यूज करते हैं मेडिकल लिटरेचर में। बेसिकली मैरी एक फीमेल का नाम था जो मुझे जितना याद है कि न्यूयॉर्क में एक हाउसमेड थी, तो उसको कभी भी टाइफाइड नहीं होता था और वो जिस जिस घर में भी खाना बनाती थी ना उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को टाइफाइड हो जाता था। तो जब उस के बारे में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वो जो लेडी थी, जो हाउसमेड थी, वो टाइफाइड कैरियर थी। तो उस टाइफाइड कैरियर से क्या होता था कि उसके थ्रू टाइफाइड पूरे फैमिली में फैल जाता था। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो और जब भी इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो टाइफाइड इनके बॉडी में अपियर हो जाता है। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो।
0: तो जो कैरियर होते हैं थ्रू आउट रहते हैं जिंदगी भर
1: वो कैरियर? कैरियर यूजली क्या होता है कि जो टाइफाइड का कैरियर होता है गॉल ब्लैडर में जाके बैठता है। तो इनका स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, इस तरह का कल्चर हम करा के देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई कैरियर होता है तो उसको गॉल ब्लैडर सर्जरी कराने की भी एडवाइस करते हैं।
0: ओके, तो ये सारी चीजें भी ये टेस्ट करा सकते हैं। हाँ, और हो सकता है इस तरह की कोई बात हो आपके साथ। एक और दिमाग में प्रश्न आ रहा है डॉक्टर तनु, कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत वेदर हम देख रहे हैं कि शिफ्टिंग भी हो रही है, सर्दी गर्मी बारिश, तो क्या इसका भी असर होता है?
2: जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की बात करें तो, क्योंकि मच्छर का एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिश्ता होता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में लाइक 20 से 25 या 30 डिग्री तक, या ह्यूमिडिटी लेवल आपका 60-70% के करीब है, उसमें ये मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी हो जाती है और ये जल्दी जल्दी पनपना शुरू करते हैं। तो अब हाल में देखने में ये आया है कि जो बहुत हमारे ठंडे रीजन्स हैं वहां पे भी हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा है या ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी है, तो वहां पे भी ये बीमारियां अब होने लगी हैं। जैसे उत्तराखंड का एरिया ले लीजिए, तो ये शिमला का, ऐसे हिमाचल का एरिया ले लीजिए या कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लीजिए, जहां पे कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी बट होने लगी हैं जहां पे ठंडा टेम्परेचर। दूसरा, इस साल के लिए मैं खास करके बताना चाहूंगी, जैसे कि 2023-24 में भी एक ग्लोबल वार्निंग आई थी कि एल नीनो आएगा, आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि एल नीनो इस साल भी प्रक्रिया काफी स्ट्रांग एल नीनो का इफेक्ट आएगा। उसमें क्या होता है, यूजुअली जो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया की तरफ का रीजन है यहां पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, बारिश थोड़ी कम होती है, तो बारिश थोड़ी कम होती है टेम्परेचर बढ़ता है, मॉनसून डेफिसिट होता है, तो छोटे छोटे जगहों पे पानी भरने लगता है, क्योंकि जैसे अगर पानी बहता हुआ है तो उसका लार्वा तो नहीं पनप पाएगा, लेकिन ठहर गया है पानी तो लार्वा पनपने का टाइम मिल जाता है। दूसरा, पानी की जहां जहां पे कमी होती है या सप्लाई में थोड़ा इश्यू आता है वहां पे लोग स्टोर करते हैं।

0: को, और जब स्टोर करते हैं वाटर को और उसे ढक के प्रॉपरली नहीं रखते हैं, उसके अंदर भी ब्रीडिंग देखी जाती है कि मच्छर ब्रीड करने लगते हैं। और क्योंकि वो पानी तो जरूरी है, आपको रखना है, तो इस सीजन में ये बहुत जरूरी है कि स्टोर करके अगर पानी कोई रख रहा है तो उसको ढक के रखें, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे नहाने के लिए हो। अगर स्टोर करने का पानी है तो उसे ढक के रखें, नहीं है तो उसमें एक दवाई आती है वो भी डाली जा सकती है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको ढक के रखें और अपने आसपास कहीं भी देखें पानी इकट्ठा है तो उसको स्क्रब करके। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो लार्वा होता है ना, आप पानी हटा देते हैं, जैसे आपने सपोजिंग बर्ड फीड है, कुछ लोग चिड़ियों को करने के लिए रखते हैं एक ट्रे, पानी निकाल देते हैं फिर सीधा कर देते हैं। अब उसके अंदर जब पानी भरेगा तो अगर उसके अंदर एग चिपका हुआ रह गया वो फिर से मस्किटो बन जाएगा। तो जिसको कहते हैं स्क्रब ड्राई, कस कस के ड्राई करना है और उल्टा करके रखना है ताकि उसके अंदर दोबारा पानी ना भरे। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपने घर में, और अगर हफ्ता में एक बार आप एक ड्राइंग डे करके मनाएं और एक घंटा या दो घंटा अपना टाइम दें, अपने घर और अपने घर के आसपास देख लें कि कहीं पानी तो जमा नहीं है, और खास के ऊपर पानी की टंकियां जो आपकी हैं, कई बार बंदर आता है उसकी लिड खोल जाता है, कई महीनों हम भूल जाते हैं जाना, वहां पे बहुत ब्रीडिंग मिलती है। तो वो सब चीजें
1: टैंक्स की सफाई,
0: जी टैंक्स की सफाई, लेकिन वो स्क्रब ड्राई करना है, और अगर बड़े टैंक्स हैं तो उसके ऊपर जाली से ढक के रखना है ताकि मच्छर ब्रीड ना करें, और कर जाएं तो एटलीस्ट बाहर आके किसी को बाइट ना कर सकें।
1: जी बहुत सारी बातें हमने की कार्यक्रम में, समय कम बचा है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जरूर जानना चाहूंगी डॉक्टर विष्णु की कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जब ऐसा लगे किसी भी पेशेंट को या मरीज को कि मुझे इमीडिएटली अब जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने, कई बार इसमें भी डिले हो जाता है।
2: देखिए अभी डॉक्टर तनु ने भी बताया था कि जैसे डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर में यूजली क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन बुखार चला जाता है, तो जैसे ही बुखार जाता है मरीज सोचता है मैं ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो फेस होता है वो क्रिटिकल फेस होता है। तो आप ये देखिए कि डेंगू फीवर में आपको चौथे पांचवें दिन अगर बुखार चला गया है लेकिन उसके साथ अचानक से आपकी स्किन, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, या आपके पेट में दर्द होने लगे, है ना, या आपको वोमिटिंग हो, या आपका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाए, तो ये डेंजर है। ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। दूसरा, जितने भी हमने मौसमी बीमारियां बात करी उन सब में एक फीवर प्रोमिनेंट फीचर है। तो अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा है तो आपको उस केस में कभी भी आपको रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है और जो जरूरत की जांचें होती है वो करवाना है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कभी भी ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन खरीद के ना खाएं। कोई भी मेडिसिन हो, इवन पैरासिटामोल भी है तो वो किसी डॉक्टर की सलाह से ही ले। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, अदरवाइज पैरासिटामोल के अलावा कोई भी दवाई आप डॉक्टर से पूछे बिना ना लें। और जो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक या जो भी कोर्स दिया है उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें। अगर आपको 7 दिन के लिए दिया है तो 7 दिन का कोर्स पूरा करें। कई बार क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन हमें आराम पड़ जाता है तो हम उसका कोर्स छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगली बार वही दवाई आपकी बॉडी पे असर नहीं करती, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखनी चाहिए।
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हमने जानी, और अब समय इतना ही है कि मैं धन्यवाद दूं अपने सभी साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, हमारे साथ जुड़े, और हमारे गेस्ट का जिन्होंने समय निकालकर यहां आए हैं, इतनी ढेर सारी जानकारी आप सब तक पहुंचाई है। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO एट CGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में, डॉक्टर तनु जैन आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीज कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नई दिल्ली में, और विषय रहा हमारा इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप यहां
0: आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी

0: इसके गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: ही बदली स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वास्थ्य जीवन शैली अपनानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सोदोव बख्तियार ओदी लोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। तो ये तो थे अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दोस्तों में हम आपको बता दें कि 4:15 से आप सुनेंगे, 4:15 से सुनेंगे रेनबो जीनियस, और आप हमारी जो फोन कॉल हैं उस पर, आप फोन लाइंस हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर रहेंगे 2342-1080, और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप एसटीडी कोड मिला सकते हैं 011। मैं नंबर एक बार आपको फिर बता दूं, 2342-1080। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये लम्हे। आकाशवाणी FM रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 पर। 4:05 से आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे, और 4:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस में आप सीधे डायल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप STD कोड लगाना ना भूलें, जो कि है 011।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए जीवन शैली में मामूली बदलाव करने से बहुत लाभ मिल सकता है। जाने जीवन शैली बदलाव चेतन से इस लम्हे प्रोग्राम में। वर्तमान समय में बहुत से लोग अनिद्रा, रात में नींद न आना, बार बार आंख खुलना, नींद के दौरान बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छी नींद आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पाते या नींद पूरी नहीं होती, तो इससे न सिर्फ पूरे दिन थका हुआ महसूस करते बल्कि इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता है। एक अच्छी और पर्याप्त नींद आपको तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करवाती है। खराब नींद के लिए आपकी जीवन शैली की कई गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती है, जो आपको भरपूर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लाने से रोकती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि के सामने अधिक समय बिताना, एक्सरसाइज न करना, संतुलित आहार न लेना और रात को देर से सोना खराब नींद के कुछ आम कारण है। अब सवाल यह है कि नींद की गुणवत्ता से सुधार करने और अनिद्रा, खराब और बेचैन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं जीवन शैली में बदलाव और कुछ अच्छी आदतों को दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जीवन शैली बदलाव। सुबह कुछ समय धूप में बिताए। अच्छी नींद के लिए कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत कुछ समय धूप में बिताकर करें। ऐसे करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा देने में मदद मिलती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। पैरों को मालिश करें। अगर रात को सोने से 30 मिनट पहले आप घी गर्म करके इससे पैरों और तलवों की मालिश करते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। डिनर में प्रोटीन रिच फूड्स खाएं। ये नींद की गुणवत्ता में सुधार और अच्छी नींद को बढ़ावा देती है, साथ ही हार्मोन्स को संतुलित रखती है। सुबह के समय रात भर पानी में भीगे हुए 4 से 5 बादाम जरूर खाएं, क्योंकि

मिलती है, लेकिन रात में या सोने से पहले एक्सरसाइज करने से बचे। यह शरीर को शांत और स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपको रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन का पाचन और चयापचय आसानी से हो जाता है। डिनर के बाद कैमोमिली टी पिए, इससे नींद को बढ़ावा देने में और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता की भावना कम होती है, मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है। जीवन शैली में इन सरल बदलाव के साथ आप अनिद्रा या नींद न आने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो इन्हें रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। नींद हमारे मन और शरीर के उपचार के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो नींद सबसे अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना ऐसे कई काम करते हैं जो हमारी नींद में खलल का कारण बनते हैं, और बेहतर नींद के लिए आपको इनसे बचने की जरूरत है। नींद शक्तिशाली है, जादुई है, उपचारात्मक है और डिटॉक्सिफाइंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सब के अलावा भी नींद के बहुत लाभ हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। परेशान, हल्की और अनुचित नींद आपके उपचार में देरी का कारण बन सकती है। यह आपको फोकस और आपकी कार्यक्षमता को कम कर सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, नींद की कमी आपके पाचन में गड़बड़ कर सकती है, जिसे आप ज़्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कम आराम का अनुभव हो सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक्सपर्ट्स की मानो तो नींद में खलल का कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और यह आदत एक दिन बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आदतों को बदले और खुद को सेहतमंद बनाने की ओर एक कदम उठाए। यहाँ हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ उन खराब आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम जाने अनजाने जरूर करते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार कर और अच्छी नींद पाने की कोशिश करेंगे। कैफीन का सेवन सीमित करें। कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो लोग इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, यह उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है। यह बात सही है कि कॉफीन मूड को बेहतर करती है, मगर अत्यधिक मात्रा हानिकारक भी है। दोपहर के बाद कॉफी आपके नींद में खलल डाल सकती है, इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी के आदी है तो आपको अपने कॉफी और चाय के सेवन को सीमित करने की जरूरत है। एक्सरसाइज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज हमेशा सुबह के समय करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि हल्के व्यायाम आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट करना सही नहीं है। दरअसल शाम का समय हमारे लिए आराम करने के लिए है। शाम के समय भारी व्यायाम से अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं हो सकती है, क्योंकि व्यायाम हमें जागरूक और ऊर्जावान महसूस कराता है। अधिक ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सोते समय बंद करना मुश्किल हो जाता है। भोजन हमेशा समय से करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का भी एक समय निर्धारित होता है। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनुसार हमारा शरीर नहीं करता है, इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच टाइम से करना चाहिए, उसी तरह डिनर भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी नींद की क्वालिटी निर्भर करती है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि तेज नहीं होती, इसीलिए रात के खाने के लिए कुछ हल्की और सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के 1-2 घंटे के भीतर भोजन करना सबसे अच्छा है।
आजकल लोग सोने जाने से पहले ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर बिताते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। इससे न सिर्फ हमारी नींद खराब होती है

बल्कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए सोने से एक घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा है। जो पूरे दिन लगातार काम करने के बाद आपके दिमाग को आराम करने में मदद करता है, ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। सुबह की धूप हमें विटामिन डी देता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। सुबह या शाम के समय थोड़ी धूप लेना आपको सोते समय बेहतर नींद लेने में मदद करता है। ये आपके शरीर के दैनिक सर्कैडियन रिदम को सेट करने में आपकी मदद करके ऐसा करता है, तो ऐसे में धूप में थोड़ा समय जरूर बिताए। वेल डियर फ्रेंड्स, आई हैव गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। प्लीज फॉलो अ रूटीन एंड एक्सक्लूड बैड हैबिट्स। With this wonderful information, this is your RJ Chetan signing off. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

आपकी वाणी आकाशवाणी। आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम रेनबो जीनियस लेकर आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा कि रेनबो जीनियस में हमें भी जुड़ना है, हमें भी जीतना है और हमें रेनबो जीनियस बनना है। तो रेनबो जीनियस बनने के लिए आपको फोन डायल करना पड़ेगा, हमारे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और हम आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आपने लगातार 5 सवालों का सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस बनने के लिए आपको फोन डायल करना पड़ेगा। तो हमारा फोन नंबर नोट कीजिए, हमारा फोन नंबर है 2342108 और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो आप एसटीडी कोड लगाना मत भूलिएगा। हमारा एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर आपको मैं बता रहा हूँ, नंबर हमारा है 011, एसटीडी कोड है 2342108 ये नंबर है, ये आप डायल कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवा रहा हूँ एक खूबसूरत गीत और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कॉलर्स आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस। हमारे साथ हमारे एक पहले कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, चलिए उनके साथ कनेक्ट करते हैं और जानते हैं कौन बोल रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनबो जीनियस में। कौन सा आप बोल रहे हैं? हाँ जी, रमेश जी, क्या करते हैं आप?
2: साधारण सा सेल्समैन।
1: अरे, साधारण सेल्समैन कभी साधारण नहीं होते हैं। सेल्समैन जो होता है कुछ भी बेच सकता है ना, तो इसकी एक क्वालिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन हम मिट्टी नहीं बेचते।
1: वो कहते हैं कि कोई भी अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीजों को जो होता है और कस्टमर को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, वही सेल्समैन है, ट्रू सेल्समैन। तो सर आपसे जी
2: जी, मैं अपने आपको योग्य नहीं समझता, तो जो प्रभु ने दिया सब ठीक है
1: जी। बिल्कुल, तो रमेश जी रेनबो जीनियस में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे?
2: मुझे उसके नियम मालूम।
1: हाँ ठीक है, मैं आपसे पांच सवाल पूछूंगा, अगर आपने पांचों का सही जवाब दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
2: प्रयास कर।
1: तो मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था?
2: मोहनदास करमचंद गांधी।
1: चलिए, पहला बिल्कुल सही आपने बताया। और दूसरा मैं पूछता हूँ कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था?
2: पहला विश्व युद्ध कब हुआ था?
1: हाँ,
2: जहाँ तक मुझे ध्यान आता है साहब जी, मेरा ख्याल है 1914 में हुआ था, 14 या 18 में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा सवाल है सर, आप थोड़ा रेडियो को क्योंकि थोड़ा दूर कर देंगे क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो रहा है, रेडियो शायद आपका ऑन है
2: जी। एक सेकंड सर, हो गया सर जी,
1: धन्यवाद। मैं और आपसे तीसरा सवाल जो है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
2: पृथ्वी का सबसे बड़ा
1: जी,
2: मैंने पढ़ा था
1: प्रशांत महासागर। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने तीन सवाल बिल्कुल सही जवाब दिया है,
2: ये मैंने सातवीं क्लास में पढ़ा था।
1: अरे क्या बात है, आपकी मेमोरी भी मतलब बिल्कुल अभी तक शार्प है, बहुत बढ़िया। और चौथा सवाल जो है वो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं?
2: कुल भारत में राज्य है 30, जिसमें से 4 या 5 केंद्र शासित हैं।
1: नहीं नहीं, राज्य पूछे हैं,
2: भारत में कितने राज्य हैं?
1: हाँ।
2: तो राज्य तो देखिए

0: चार तो इसमें वो है जी,
1: नहीं
0: केंद्र शासित
1: मैं स्टेट्स पूछ रहा हूँ आपसे, स्टेट्स स्टेट्स कितनी है टोटल इंडिया में, कितनी स्टेट्स हैं?
0: सिर्फ इतना ही होगा कि जो संपूर्ण राज्य जो होते हैं वो 26 हैं, बाकी चार
1: नहीं है टोटल 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं,
0: वो केंद्र शासित प्रदेश,
1: हाँ 28 स्टेट्स हैं, पहले 25 थे, 3 और स्टेट्स हमारे ऐड हुए हैं, और
0: हमारे टाइम पे थे
1: नहीं हाँ वो पहले था लेकिन अभी क्या 3 स्टेट्स और ऐड हुए हैं, कोई बात नहीं, और 29वां अभी तेलंगाना ऐड हुआ है
0: जी,
1: ठीक है, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच रमेश जी,
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: थैंक यू। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस, दोस्तों आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ, और आपको डायल करना है हमारा नंबर है 2342108 और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आपको एसटीडी कोड लगाना होगा, एसटीडी कोड है 011 और हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे और आपने 5 सवालों का अगर सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। फिलहाल आपके लिए एक ब्यूटीफुल ट्रैक और उसके बाद हमारे साथ हमारे एक और लिसनर कनेक्ट करेंगे।

0: जी हाँ, हम भी सवार लें। हमारे साथ जो हैं हमारे एक लिसनर जुड़ गए हैं, तो चलिए उनके साथ कनेक्ट करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
1: नमस्कार सर जी।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ।
0: पंकज जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम झारखंड से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, झारखंड से, मनोहरपुर से बोल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रेनबो
1: जी
0: जीनियस
1: बिल्कुल
0: में? पहले खेले हैं,
1: बिल्कुल जी हाँ, एक बार मैंने बहुत सारी खेला था।
0: पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो चलिए मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, और अगर आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस।
1: ठीक
0: तो शुरुआत करें?
1: है बिल्कुल
0: तो मैं आपसे, देखिए मुर्गे ने भी पीछे हमारा हूटर दे दिया, बांग दे रहा है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
1: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सर गोभी सर
0: नहीं, मतलब सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का।
1: नहीं पता सर।
0: सहारा रेगिस्तान। चलिए थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर सुनिए एफएम रेनबो 102.6 पर आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। और आपको डायल करना है हमारा नंबर। हमारा नंबर है 2342-1080। जी हाँ, 2342-1080। और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो आप एसटीडी कोड मिला सकते हैं। एसटीडी कोड है 011। हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
2: रामधारी बात कर रहा हूँ,
0: रामधारी जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है रामधारी जी, हरियाणा से बोल रहे हैं।
2: जी। बिल्कुल
0: तो हरियाणा का क्या सबसे बढ़िया है? वैसे तो सारे
2: हरियाणा
0: जानते हैं आपके मुंह से।
2: का
0: हांसी का, हांसी का मान लीजिए,
2: हांसी का पेड़ा
0: पेड़ा।
2: जी,
0: मथुरा के भी पेड़े फेमस है?
2: लेकिन वो टेस्ट जो हांसी के पेड़े में है वो मथुरा वाले में नहीं होगा सर जी।
0: क्या बात है, देसी घी में खाना है और
2: दूध दही का खाना देसा में देस हरियाणा।
0: वाह क्या बात है। तो क्या करते हैं सर रामधारी जी?
2: मैं हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहा हूँ एज ए कॉन्स्टेबल।
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप पहली बार कर रहे हैं या पहले भी पार्टिसिपेट किए?
2: मैं सर कंटिन्यू में पार्टिसिपेंट रहता हूँ इस
0: चलो
2: प्रोग्राम
0: चलो,
2: में।
0: तो शुरुआत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
2: एरिया में सर या जनसंख्या में?
0: मतलब छोटा राज्य है एरिया में भी, वैसे भी जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य।
2: वैसे जनसंख्या में सिक्किम है और क्षेत्रफल में गोवा है।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गोवा है छोटा राज्य जो है। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछता हूं कि सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है?
2: सबसे तेज
0: दौड़ने वाला
2: पैंथर चीता।
0: चीता। बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
2: 206 206।
0: क्या बात है, 3 सवाल और तीनों का सटीक जवाब दिया है आपने। और मैं एक और चीज पूछूं आपसे,
2: जी
0: रक्त का रंग लाल क्यों होता है?
2: हीमोग्लोबिन के कारण।
0: बिल्कुल सही जवाब, लगता है रेनबो जीनियस बनकर ही छोड़ेंगे है? तो
2: जी सर।
0: और एक और आपसे पूछता हूं सवाल, संविधान का संरक्षण कौन करता है? संविधान का संरक्षक कौन है?
2: सुप्रीम कोर्ट।
0: बिल्कुल सही जवाब, आप रेनबो जीनियस बन गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो।
2: थैंक यू सर।
0: तो आपके लिए मैं ये सॉन्ग चला रहा हूं और आपको बहुत बहुत मुबारक,
2: धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पहले रेनबो जीनियस रामधारी सिंह जी, और जिन्होंने हरियाणा से ये हमारे साथ कनेक्ट किया है हांसी से, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपके लिए गीत प्यारा सा चला रहा हूं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं रेनबो जीनियस में। डायल करना है आपको नंबर 2342-1080।

0: दोस्तों कुछ तो हुआ है और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी रेनबो जीनियस बने और कुछ हो तो आप हमें डायल कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन नंबर पर। हमारा लैंडलाइन नंबर है 011-234-21080। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो 011 आप डायल कीजिए, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप डायरेक्ट डायल कर सकते हैं लैंडलाइन नंबर से 234-21080। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम रेनबो जीनियस ये गेम खेलेंगे।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस अल्फा जेन। जी हाँ, आज का जो अल्फा जेन है उसमें हम रेनबो जीनियस प्रोग्राम के अंतर्गत, अल्फा जेन के अंतर्गत हम रेनबो जीनियस जो है गेम शो आप लगा लीजिए या क्विज शो लगा लीजिए, क्विज शो है और उसके अंदर हम सवाल पूछते हैं, पांच सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब देता है पांचों का तो वो बन जाता है रेनबो जीनियस। हमारे एक रेनबो जीनियस बन चुके हैं राम दिनकर जी, राम सिंह दिनकर जी हांसी से। अब देखते हैं कि अगला रेनबो जीनियस हमारे कौन बनते हैं और कौन हमारे साथ लिसनर इस वक्त कनेक्ट हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार।
3: नमस्ते सर, मैं जिया बोल रही हूँ दिल्ली से।
2: जिया दिल्ली से, ये दिल्ली आपके से नाम पे ही गाना बना हुआ है, जिया जले दिल जले। चलिए कोई नहीं जिया, आप क्या करती हैं जिया?
3: सर अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ।
2: ग्रेजुएशन कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं?
3: दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
2: अच्छा, किस उसमें स्ट्रीम में?
3: बीए प्रोग्राम।
2: तो जिया आप रेडी हैं हमारे साथ रेनबो जीनियस में पार्टिसिपेट करने के लिए?
3: Yes, sir,
2: चलिए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है?
3: वंदे मातरम।
2: बहुत बढ़िया। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है?
3: इसरो का बेंगलुरु में।
2: बहुत बढ़िया। और तीसरा सवाल है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है?
3: आई थिंक ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन वॉच।
2: आपने दो उसमें सही बताए हैं, ऑटोमेटेड
3: ट्रांसफर मशीन
2: नहीं, टेलर मशीन। चलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि आपने तीसरा का भी सही जवाब दिया है। और एक आप सिर्फ दो प्रश्नों के अगर आपने उत्तर सही दिए तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
3: 5 जून।
2: अरे क्या बात है, पूरी तैयारी करके आई हुई है। ओके, और आपसे मैं एक और पूछ लेता हूं कि कौन सा पूछा जाए आपसे, थोड़ा सा टफ पूछा जाए, इजी पूछा जाए?
3: सर आप कुछ भी पूछ लीजिए।
2: अच्छा, कुछ भी पूछ ले
3: तो इजी होगा वरना कठिन होगा।
2: ओके ओके ओके ओके, चलो आप मतलब तैयारी पूरी है आपकी। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला जो देश है कौन सा है?
3: सर नहीं नहीं आबादी भारत।
2: दुनिया का सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री की है?
3: इंडिया की ही तो है।
2: नहीं, आप गलत बता रहे हैं, इंडिया की है। आप अपने आपको मतलब इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं हमारी कंट्री को? हमारे कंट्री से और भी हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, चीन है। खैर आपने अच्छा ट्राई किया, चाइना।
3: जी सर।
2: ठीक है, तो चाइना अभी है और भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो ठीक है, तो आपने लेकिन अच्छा ट्राई किया, चार सवालों जो थे बिल्कुल सही दिए, एक सवाल से रह गए, कोई बात नहीं, वेल ट्राई। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच जिया। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं जिया, जिन्होंने अच्छा ट्राई किया, एक सवाल बस गलत दे दिया इसका जो जवाब, कोई बात नहीं पर ट्राई तो किया ना, आप भी ट्राई करिए ना। हमारा नंबर है 011, एसटीडी कोड है 2342108। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, चलिए उनसे कनेक्ट करते हैं। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
4: हाँ, केशव चक्रवर्ती अगरतला से।
2: केशव जी क्या बात है, अगरतला से कैसा है? पहले मैं मौसम पूछना चाहूंगा, मौसम कैसा है वहाँ?
4: ये अच्छे है, थोड़ा थोड़ा रेन फॉल है।
2: आपने कॉल किया मेरे को और अच्छा हो गया मेरा। तो अगरतला से आप बोल रहे हैं, अगरतला का क्या फेमस है?
4: एसएमएस
2: ये क्या चीज है सर?
4: एसएमएस का फुल फॉर्म।
2: अच्छा SMS का फुल फॉर्म नहीं, वहाँ के कुछ फेमस होता है ना, फूड है, ये है, घूमने के लिए है, कोई ऐसी बिल्डिंग है, कुछ ऐसा क्या मतलब अगरतला में, क्या अगर कोई आए मैं ये आऊँ घूमने के लिए तो क्या वहाँ पे है, जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी पता लगेगा कि अगरतला में ये है।
4: और राइस इज द स्टेबल फूड विद फिश, राइस एंड फिश।
2: ओके, राइस एंड फिश, इट्स नाइस। तो चक्रवर्ती साहब क्या करते हैं आप?
4: मुझे थोड़ा था, आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स, आई कंटिन्यूअली टीचिंग देम।
2: ओके, तो आप टीचर हैं, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा पांच, और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
4: ओके सर, थैंक यू।
2: आपने पहले पार्टिसिपेट किया हुआ सर, पहले खेला है हमारे साथ ये?
4: नहीं सर, आई हैव ऑलरेडी मेनी टाइम्स आई हैव प्लेड।

0: एंड आई ऑल्सो वन फ्यू टाइम्स जीनियस.
1: ओके चलिए बहुत बढ़िया. तो मैं आपसे पूछता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है?
0: हाँ ये तो जेनेवा. स्विट्जरलैंड का जेनेवा.
1: ओके बहुत बढ़िया. आपने सही सवाल जो सवाल का हमारा सही सवाल भी था और सही जवाब भी आपने दिया. और चलिए अगला मैं आपसे पूछता हूं कि नोबल प्राइज किस देश द्वारा दिया जाता है?
0: और ये तो स्वीडन.
1: आय क्या बात है. बहुत बढ़िया भारत बहुत ही अच्छा. और तीसरा सवाल है मैं आपसे पूछता हूं और जो बुकर प्राइज है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
0: और लिटरेचर फ्रॉम इंग्लैंड.
1: ओके बहुत बढ़िया. तीन सवाल बिल्कुल सही जवाब. और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
0: हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
1: ना ना ना ना ना सही
0: भारत का पहले
1: पहले पहले मैं चलिए आपको हिंट देता हूँ ये भी टीचर थे.
0: भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार था. ठीक है ये तो लगता है राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य आई थिंक.
1: नहीं रॉन्ग.
0: इज द गवर्नर ऑफ मणि.
1: नहीं रॉन्ग. आप थोड़ा सा बीच में जो है सही जा रहे थे ट्रैक पे. आप एकदम से जो आपने बीच में दिया ना वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन.
0: सर्वपल्ली राधाकृष्णन आई थिंक सर.
1: मैंने आपको हिंट भी दिया कि टीचर थे ये भी टीचर थे. टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं इनके उस पे. तो एनी हाउ आपने बहुत अच्छा ट्राई किया. थैंक यू सो मच केशव चक्रवर्ती जी. थैंक यू सो मच से आप हमारे साथ कनेक्ट हुए. थैंक यू सर. तो दोस्तों ये हमारे साथ अग्रतला से केशव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए थे. तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको डायल करना है 2342-1080. फिलहाल आपके लिए एक म्यूजिकल ब्रेक और उससे पहले कुछ नहीं उससे पहले ये गाना आप सुनिए. उसके बाद हम आपसे और बातें करेंगे.

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर, प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस में हमारे साथ हमारे अगले जो हैं कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, चलिए उनसे कनेक्ट करते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनबो जीनियस में। कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी धन्यवाद, मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी क्या करते हैं आप?
1: मैं हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पे तैनात हूँ सर।
0: चलिए बहुत बढ़िया। और जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं आप?
1: जी रखते हैं थोड़ी बहुत।
0: थोड़ी बहुत, चलिए बहुत बढ़िया। और आपको रूल पता ही होगा, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस।
1: जी।
0: तो मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूँ कि जनगण मन के रचयिता कौन थे?
1: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
1: संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में।
0: न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही जवाब। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
1: रसिया या रूस बोलते हैं जिसको।
0: बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
1: वेटिकन सिटी।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप कह रहे हैं मैं थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हूँ, आप तो पूरी नॉलेज रखते हैं।
1: नहीं सर, जीके जनरल नॉलेज में अगर हम एक समंदर है वो उसमें से एक बूंद भी ले लेते
0: लेकिन
1: हैं,
0: आप बहुत उस हिसाब से बहुत छोटी छोटी चीज माइनूटली आपको पता है, वो मेरे को बहुत अच्छा है क्योंकि वेटिकन सिटी ये कईयों को नहीं पता होगा। चलिए मैं आपसे अब ये 4 सवाल आपने बिल्कुल सही दिए, मैं 5वां सवाल आपसे पूछ रहा हूँ
1: जी।
0: और इजी पूछूं या थोड़ा डिफिकल्ट पूछूं?
1: सर आपका जो मन करे वो पूछिए, मैं बताता होगा तो।
0: चलिए चलिए चलिए चलिए,
1: आप इजी, आपको मैं बोल दूं आप इजी पूछिए और आप इजी पूछिए मेरे को ना।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो है देखो अगर आपको पता होगा तो आपके लिए तो इजी है, ठीक है। तो ये होता ही है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
1: ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
0: बहुत बढ़िया, आप रेनबो जीनियस हमारे बन गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो।
1: धन्यवाद।
0: तो आप ये फर्स्ट टाइम है या पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं?
1: इस साल में मैं 18वीं बार बना हूँ।
0: क्या बात है, 26 साल में 18वीं बार।
1: जी साल
0: तो ये मतलब इसको मिला गया 19वीं बार हो गया होगा।
1: नहीं ये 18वीं बार,
0: 18वीं बार है। चलो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज वगैरह हैं?
1: बस अभी तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं।
0: क्या बात है। और रेनबो वगैरह सुनते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: रेनबो के कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनते हैं?
1: सुबह 7 से 8 तक।
0: अच्छा 7 से 8 कौन सा? गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।
1: जी जी
0: ओके। और इसके अलावा?
1: ये प्रोग्राम आपका मैं लगभग सुन रहा हूँ 2012 से 2017 तक, और उसके बाद मैं अभी 2 साल से स्टार्ट किया दोबारा से।
0: अच्छा तो रेनबो के और कौन से प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं?
1: सर मैं लगभग नॉलेज के लिए चलाता हूँ।
0: अच्छा तो... चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उमेश जी आपको हमारे बेस्ट विशेस हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। और बहुत बहुत मुबारक रेनबो जीनियस 18वीं बार। आप हम सोचेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि आप 100 बार आप बने, पूरा 100 अपना कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे उमेश जी भिवानी से, और ये भी हमारे रेनबो जीनियस बने हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और हर क्षेत्र में। थैंक यू सो मच। और दोस्तों अब हमारा भी जो है ना समय आगे आगे बढ़ता जा रहा है और समय 4:53 हो चुके हैं। अगर अभी भी हमारी फोन लाइंस ओपन है आप कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 2342-1080। फिलहाल आपके लिए ये क्यूट प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद आपसे बातें चलती रहेंगी।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। और दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि समय तो बहुत कम बचा है, 4 मिनट बचे हैं। चलिए, एक और हमारे लिसनर हैं जो हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय बहुत कम है, आप अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार सर, मैं दिल्ली से संजय बात कर रहा हूँ।
2: संजय, आप रेडियो सेट शायद आसपास है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, अगर रेडियो सेट है तो उसको ऑफ कर दें।
3: पास में रेडियो है ही।
2: अच्छा, रेडियो अगर है तो उसको दूर कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, क्योंकि शायद
3: कुछ नहीं है सर।
2: बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। चलिए, कोई नहीं, अपना नाम बताएं।
3: जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ।
2: अच्छा संजय, आप रेडी हैं?
3: जी सर, मैं रेडी हूँ।
2: हाँ, मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूँ, सही जवाब दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
3: जी सर जी, मुझे रूल चार पता है।
2: जी, चार मीनार कहाँ पर है?
3: जी, हैदराबाद में।
2: अच्छा, और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
3: दयानंद सरस्वती जी।
2: नहीं नहीं राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज।
3: ब्रह्म समाज,
2: हाँ जी,
3: ब्रह्म समाज के तो दयानंद सरस्वती जी थे सर। राजा राम मोहन रॉय, अरे सॉरी सॉरी, यस यस यस, आर्य समाज के थे वो दयानंद सरस्वती।
2: मुझे आपने डाउट में डाल दिया। मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी सी, मेरे अपने जनरल नॉलेज पे मेरे को डाउट हो गया था। कोई नहीं, अगला मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समय बहुत कम है। और तीसरा जो है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
3: एक मई।
2: हेलो,
3: यस सर, एक मई।
2: ठीक है, और जो गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है?
3: गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में।
2: बहुत बढ़िया, आप जो है बन गए हैं रेनबो जीनियस। बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच।
3: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ आज बहुत सारे जीनियस थे और थैंक यू सो मच। और अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, अगला प्रोग्राम कोमल आपके साथ लेकर रहेंगी। जी हाँ, गुड सिटी लाइट्स लेकर। अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, मिलूंगा अगले सफर पर। तब तक ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिए। बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार, आप सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा भारत, युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। ये थे अब तक FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज योर इवनिंग ड्राइव शो सिटी लाइट्स। संडे इवनिंग है, वीकेंड का आखिरी पड़ाव है और आज की शाम थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे। वो दोस्त जिसे देखकर बिना बोले ही समझ में आ जाता है कि भाई आज तो मूड थोड़ा सा ऑफ है। वो दोस्त जिसे कॉल करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए और जिसके साथ बस 5 मिनट मिलते हैं वाला प्लान जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। सम फ्रेंड्स आर मेमोरीज एंड सम फ्रेंड्स आर फैमिली, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना लाइफ की प्लेलिस्ट ही इनकम्प्लीट लगती है। तो आज की शाम अपने उस दोस्त को कॉल जरूर कीजिए जिसे आप बहुत दिनों से कह रहे हैं यार मिलना है। तो चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, घर लौट रहे हो या दोस्तों के साथ संडे इवनिंग इंजॉय कर रहे हो, टर्न अप द वॉल्यूम, टैग योर बेस्ट फ्रेंड इन योर हार्ट एंड लेट द फ्रेंडशिप डे वाइब्स बिगिन, क्योंकि गुड फ्रेंड्स मेक गुड डेज एंड ग्रेट मेमोरीज मेक लाइफ ब्यूटिफुल। कोमल सेज हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल लिसनर्स। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी शाम, आपके शहर की धड़कन और आज आपकी दोस्ती।

वेलकम बैक टू द सिटी लाइट्स, योर इवनिंग ड्राइव शो। और दोस्तों, कभी कभी माँ का जो प्यार होता है ना, वो बड़े बड़े वादों में नहीं बल्कि एक नन्हे से स्पर्श में महसूस होता है। और जब एक बच्चा पहली बार माँ की गोद में आता है तो उसके लिए माँ का दूध सिर्फ भोजन नहीं होता, ये उसके जीवन की पहली पोषण भरी शुरुआत, सुरक्षा और अपनापन होता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, एक ऐसा अवसर जब हम स्तनपान के महत्व के साथ साथ नई माताओं को सपोर्ट करने और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जी हाँ, विशेषज्ञों की अगर सलाह माने तो संभव हो तो बच्चे को जन्म के पहले घंटे के भीतर ही स्तनपान शुरू कराया जाना चाहिए। ये जीवन के जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें केवल माँ का दूध ही बच्चे के लिए पर्याप्त पोषण देता है। 6 महीने के बाद बच्चे की उम्र के अनुरूप उसे पौष्टिक आहार दिया जा सकता है और साथ साथ स्तनपान जो है वो जारी रखा जा सकता है। माँ के दूध में बच्चे की जरूरत के मुताबिक सारे पोषक तत्व होते हैं और ये कई तरह के संक्रमण जो होता है उनसे बचाने में बच्चे की मदद करता है और ऐसे एंटीबॉडीज भी बच्चे को देता है। बहुत बार बच्चे में होने वाली छोटी छोटी सी बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और बच्चे की जरूरत को पूरा कर देती हैं। शायद इसीलिए इसे जीवित आहार माना जाता है दोस्तों, क्योंकि बाजार में मिलने वाले जो अन्य शिशु आहार होते हैं उनमें ऐसे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, जहां शहर की हलचल के बीच बात होती है उन मुद्दों की जो हमारे घर और हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। आकाशवाणी FM रेनबो पर 102.6 स्टे ट्यून्ड।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एफएम रेनबो 102.6।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम में रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, आपका इवनिंग ड्राइव शो। और दोस्तों, आपको याद है ना कि अब से अगले कुछ दिनों तक अगर आप दिल्ली में ईस्ट दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। दरअसल सावन मास के साथ साथ जो है वो कांवड़ की यात्रा शुरू हो गई है और लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र गंगा जल लेकर दिल्ली से होकर अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए 12 अगस्त तक जीटी रोड, वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, लोनी रोड, पुस्ता रोड और आशाराम त्यागी मार्ग पर हैवी व्हीकल्स की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है। और अगर आपका सफर इन रूट से होकर के निकलता है तो पहले से ट्रैफिक की अपडेट अपने पास जरूर रख लें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलें। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर भी है आप सभी के लिए। जी हाँ, अगर आप दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर सफर करते हैं तो 30 जुलाई से 14 अगस्त तक नमो भारत ट्रेन अब हर 8 मिनट में मिलेगी, यानी इंतजार कम और आराम ज्यादा। तो इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान कीजिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। सेफ जर्नी एंड स्मूथ जर्नी, हम तो बस यही कहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल, मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।
3: हेलो लिसनर्स, मैं हूँ चैताली
4: और मैं हूँ आपका दोस्त ओपी राठौर।
3: फ्रेंड्स, आज हम होस्ट कर रहे हैं
4: एक स्पेशल और इंटरेस्टिंग रेडियो शो
3: जिसका नाम है
4: फार्म टू सिटी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: Yes, farm to city, farm to city. Listeners, ये शो स्पेशल इसलिए है कि
4: इसमें हम एक और बात करेंगे अर्बन फूड हैबिट्स की, फूड मार्केट्स की और आपकी हेल्थ की भी।
3: बिल्कुल, दूसरी ओर हम बताएंगे कि कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन सी फार्मिंग है।
4: बिल्कुल, जो आपकी थाली को रंगीन और बेहतरीन बनाती है, न्यूट्रिशन से भरपूर बनाती है।
3: दरअसल ये शो एक ब्रिज है जो हमारे सिटी बेस्ड लिसनर्स को जोड़ेगा
4: गाँव से, हरे भरे खेतों से और वहाँ के ट्रेडिशन से।
3: फ्रेंड्स, आपको एंटरटेन रखने के लिए हमारी बात तो है ही, साथ ही म्यूजिक भी रहेगा।
4: तो लिसनर्स, अब हम प्रेजेंट करते हैं फार्म टू सिटी का पहला एपिसोड
3: आपकी तालियों के साथ और एक प्यारे से

0: फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का आइडिया हमें एक जनरल स्टोर से आया।
1: हाँ, वहाँ शॉपिंग कर रही एक लेडी से, एक माँ से आया।
0: वो कह रही थी,
2: मैनेजर, मुझे केवल ऑर्गेनिक राइस चाहिए, ऑर्गेनिक दाल चाहिए और मसाले भी ऑर्गेनिक हो। मैं हमेशा वही फूड आइटम्स लेती हूँ जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सेफ है, सही है, सेहत से कोई कंप्रोमाइज नहीं, ऑर्गेनिक है तो बेस्ट है।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे हैं?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: लिसनर्स, तो आप समझ गए होंगे आज हमारा इशू या थीम ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यानी जैविक खेती और उत्पादों के बारे में बात होगी।
0: हाँ, और इसमें हम जानेंगे ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोसीजर्स के बारे में, इनकी लेबलिंग और सर्टिफिकेशन, मार्केट्स एक्सेट्रा पर भी चर्चा होगी।
1: बिल्कुल,
0: और इन सारी टेक्निकलिटीज के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधार मिश्रा। वेलकम डॉक्टर मिश्रा हमारे शो फार्म टू सिटी में।
1: सर, आजकल सुपर स्टोर्स में, ऑनलाइन स्टोर्स में ऑर्गेनिक फूड्स की एक बड़ी लंबी रेंज दिखाई देती है।
0: बहुत बड़ी रेंज, ऑर्गेनिक आटा, दाल, चावल से लेकर तेल, मसाले, चीनी, गुड़ और मिलेट्स भी ऑर्गेनिक हैं।
1: इनके अलावा दूध, पनीर, चीज और फल सब्जियां भी ऑर्गेनिक मिल जाती हैं, और अंडे भी ऑर्गेनिक आने लगे हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिक क्या है, इन्हें फार्म्स में कैसे उगाया जाता है, क्या कोई अलग तरीका है इनकी खेती का?
6: जी हाँ, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्निक है। इसमें जो इनपुट्स होते हैं, मुख्यतः दो तरीके के इनपुट होते हैं। एक तो जो हम खेती अभी करते आ रहे हैं वो साइंटिफिक फार्मिंग होती है, और जिसमें ज्यादातर इनपुट की जगह पर हम जैसे पोषक तत्वों की जगह पर फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों को देते हैं, और कीड़े मकोड़े और बीमारियों के लिए बहुत सारे केमिकल प्रयोग करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केमिकल और पेस्टिसाइड को हम ऑर्गेनिक चीजों से रिप्लेस करते हैं। जैसे पोषक तत्वों के लिए हम FYM गोबर की खाद, या गोबर से हम बर्मी कंपोस्ट बनाकर केचुए वाली खाद जो होती है ना, उसको देते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे जो दलहनी फसलें होती हैं उनके हरे तनों को हम जमीन में सड़ा देते हैं, वो भी खाद का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों के भी आजकल जीवाणु टीका उपलब्ध हैं, उनको भी देकर हम जो पोषक तत्व उनकी उपलब्धता बढ़ाकर फसलों को उगाते हैं। जो कीड़े मकोड़े और बीमारियां हैं उसमें हम केमिकल या जो पेस्टिसाइड हानिकारक होते हैं उनकी जगह हम क्या करते हैं, बहुत सारे बायो एजेंट होते हैं जैसे फाइटोकेमिकल जिनको कहते हैं, जो कि पेड़ पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। इनमें नीम का तेल प्रमुख है, नीम के तेल के बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े और बीमारियों का नियंत्रण होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उत्पाद आ गए हैं जो कि कीड़े मकोड़े और बीमारियों को नियंत्रित करते हैं, और वो खुद भी कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है, जो कि उसको खत्म करते हैं इन बीमारियों को। तो लेकिन इससे क्या होता है, जो उत्पाद होता है उसमें किसी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होता है, मतलब हमारे उत्पाद प्रदूषित नहीं होते, इनमें किसी तरीके का केमिकल नहीं है, तो हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और सेफ हैं।
0: बिल्कुल, हेल्थ के लिए सेफ है और माइंड और मूड के लिए सेफ है ये अगला वाला गाना।

0: फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में ये जानकर बड़ी अच्छी फीलिंग्स आई है ना, कि ये केमिकल फ्री होते हैं।
1: यस, यू आर राइट कि ये नेचुरल होते हैं, इसलिए इनसे कई बेनिफिट्स होते हैं।
0: बिल्कुल।

0: बिकॉज हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फूड्स के प्रोडक्शंस का काफी स्कोप है, इसलिए भारत सरकार इसे प्रमोट भी कर रही है।
1: इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्टेटस है, क्या डेटा है, कितना एरिया है, बता रही हैं, हमें पता चलता है एपीडा की इस ब्रीफ रिपोर्ट से।
2: फाइनेंशियल ईयर 2024 के डेटा के अनुसार भारत में कुल 7.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों की संख्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। इस साल लगभग 3.6 मिलियन टन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया गया, जिसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, चाय, कॉफी, फल, सब्जियां वगैरह सभी शामिल हैं। इसमें से लगभग 2.61 लाख टन का निर्यात किया गया, जिसका मूल्य लगभग 495 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है।
0: जी फ्रेंड्स, नेचर की बात चल रही है तो याद आया कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध सिक्किम राज्य 100% ऑर्गेनिक स्टेट है।
1: बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, और सिक्किम को 2016 में ये स्टेटस मिला था, और इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ भी उगाया जाता है वो ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
0: बिल्कुल, तो अगर आप सिक्किम में घूम फिर रहे हैं और वहाँ का कुछ लोकल खा पी रहे हैं तो यकीन मानिए आप ऑर्गेनिक खा रहे हैं, नेचुरल और केमिकल फ्री खा रहे हैं, सेफ खा रहे हैं।
1: तो अब अपने एक्सपर्ट से थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फूड के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं।
3: जी हाँ, ऑर्गेनिक फूड के बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसकी वजह से हम आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ भाग रहे हैं। एक तो यह है कि जब हम ऑर्गेनिक फूड को प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि हमारे बाजार में आजकल उपलब्ध है, उसमें आमतौर पर यह देखा गया, चाहे आप खेती से प्राप्त फल सब्जियां वगैरह जो भी है या धन धान्य की जो भी फसलें हैं, अथवा हम अंडे मांस मछली भी अगर खरीदते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। जैसे अगर हम अंडे खाते हैं तो मुर्गियों में और अंडों में और मीट में दोनों में ही एंटीबायोटिक होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि बीमारियों से बचाव के लिए मुर्गियों में एंटीबायोटिक प्रयोग होता है। इसी तरीके से जो फसलों में हम बहुत सारे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं जिनका कि अंश हमारे खाद्य में रह जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं, इनमें इस तरीके का कोई भी केमिकल नहीं होता है। और अपनी डेली डाइट में अगर हम इनको शामिल करें तो बहुत सारी बीमारियों जैसे कैंसर है और भी अन्य बीमारियां, इनसे बचाव होता है, क्योंकि इसमें कोई अन्य केमिकल नहीं होता है ना, तो जो शरीर के काम काज है उनकी प्रक्रिया साधारण रूप से चलती रहती है और उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। इस तरीके के उत्पादों में ये देखा गया है कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि इम्यूनिटी शरीर की बढ़ाते हैं, और इसमें एंटीबायोटिक न होने से जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की समस्या आजकल है उसमें भी कमी आती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर देखा जाए तो इनमें सभी प्रकार के लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ उपलब्ध होते हैं। स्पेशली अगर ऑर्गेनिक दूध को ही लिया जाए और ऑर्गेनिक मीट को लिया जाए तो उसमें आयरन और जिंक और विटामिन के अलावा बहुत सारे बेनिफिशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उपलब्ध रहते हैं। इनकी वजह से हमारे हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस दोनों में ही सुधार होता है।
0: लिसनर्स, ऑर्गेनिक फूड्स के इन हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा एक फायदा मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ।
1: अपने एक्सपीरियंस से तो शेयर कीजिए ना हमारे लिसनर फ्रेंड्स से।
0: फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फूड्स अपनी प्योरिटी के कारण ज्यादा टेस्टी भी होते हैं, इनमें स्वाद ज्यादा होता है।
1: हाँ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स तो मैंने भी देखी है।
0: बिल्कुल, ऑर्गेनिक फूड्स को लेकर मेरे मन में एक डाउट है।
1: वो क्या?
0: और वो ये कि मैंने सुना है, अक्सर स्टोर्स में देखा भी है, बहुत से फूड पैकेट्स पर ऑर्गेनिक लिखा होता है, तो क्या ये सभी रियली जेन्युइनली ऑर्गेनिक होते हैं?
1: मतलब जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की पहचान कैसे होगी, एक आम कंज्यूमर इसे कैसे पहचानेगा?
0: मैंने अपना ये डाउट अपने एक्सपर्ट के सामने रख दिया है, सुनते हैं क्या बताते हैं वो।
1: चलो सुनते हैं।
3: ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा कंज्यूमर ये जाने कि हम जो प्रोडक्ट या उत्पाद खरीद रहे हैं वो असली भी है या नहीं है, क्योंकि इनको मार्केट में प्रीमियम प्राइस देनी पड़ती है। तो इसकी असलियत जानने के लिए, इसके जेन्युइननेस जानने के लिए भारत सरकार की FSSAI संस्था ने जैविक भारत नाम से एक लोगो जारी किया है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू है। इसमें क्या है कि जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के

0: जैकेट पर इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। और ये लोगो क्या होता है, इसमें एक हरे रंग का एक सर्कल बना होता है जिसमें हरी पत्ती से बना एक मोटा टिक का निशान होता है, सही का निशान होता है। इसके नीचे स्पष्ट रूप से उसमें लिखा होता है जैविक भारत। तो आप जहां पर इस तरीके का सर्कल देखें और उसमें टिक का सही निशान हरे रंग का देखें और नीचे जैविक भारत लिखा हो, तो आप समझ लीजिए कि ये FSSAI द्वारा अप्रूव्ड जैविक उत्पाद है।
1: वेरी नाइस, ये तो बहुत इजी है। जैविक भारत लोगो देखो और जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदो, सिंपल।
2: हाँ, लेकिन रिमेम्बर, एक्सपर्ट ने कहा है कि ये लोगो केवल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ही मिलता है।
1: हाँ, तो एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं ये सर्टिफिकेशन कैसे होता है, कौन करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
0: ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो उत्पाद है या उनकी प्रोसेसिंग है, उनको हम ये कैसे साबित करें कि भाई हमारे ये उत्पाद हैं, ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। इस जैविक और बिना जैविक का जो कि हम बाजार में उपलब्ध है, इनको अलग करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे मानक बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं और इनका पालन करना जरूरी होता है। जब हम पूरी तरह से इन मानकों का कंप्लायंस करते हैं, मानकों को पूरी तरीके से खरा उतारते हैं, तभी हमें सर्टिफिकेट और लोगो लगाने की परमिशन मिलती है। अच्छी तरीके से जांच परख करके सारे के सारे रिवार्ड देखकर ही सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया पूरी होती है और इसके लिए कई इंस्टीट्यूशन और सिस्टम काम करते हैं। जैसे अगर हम एक्सपोर्ट के लिए कोई उत्पाद को जैविक का हमें मानकीकरण कराना है या सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए NPOP यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में अप्लाई करना पड़ता है, जो कि अपने गाजियाबाद में है। और डोमेस्टिक मार्केट के लिए यानी अपने घरेलू बाजार के लिए हम PGS इंडिया यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में अप्लाई करते हैं और इन दोनों में इंस्पेक्शन के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमारा उत्पाद है वो जैविक उत्पाद कहलाता है।
2: लिसनर्स, ऑर्गेनिक फूड के लिए सारे सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स, लोगो बने हुए हैं। आपको बस इसे चुनना है, अपनी डाइट में शामिल करना है।
1: ऑर्गेनिक राइट चॉइस है टू स्टे फिट एंड हेल्दी।
2: बिल्कुल, लेकिन फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ।
1: हाँ, श्योर, बताइए।
2: भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल गाइडेंस वगैरह दिया जाता है।
1: गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ, और इसके लिए मेनली दो स्कीम्स हैं। एक तो PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी स्कीम दरअसल एक मिशन है टू डेवलप ऑर्गेनिक वैल्यू चेन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
1: फ्रेंड्स, तो आज हमने बात कर ली ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी और ऑर्गेनिक फूड्स की भी।
2: बिल्कुल, तो इस तरह हमने पूरा किया अपना आज का डायलॉग इस शो में जिसका नाम है
1: फार्म टू सिटी। लिसनर्स, तब तक के लिए हमारी ओर से बाय बाय,
2: हैप्पी डे, टेक केयर।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है, कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मयूर विहार फेज 2 में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का जायजा भी लिया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 10 में JMD टेंट में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदलोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। आप भी ये बात मानते हैं ना कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं, न कोई खून का रिश्ता न कोई मजबूरी, बस दिल से दिल का कनेक्शन। और सच बताइए, कुछ यादें ऐसी होती है ना जो वक्त के साथ पुरानी जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कान है ना वो कभी फीकी नहीं पड़ती। किसी दोस्त की वो ज़बरदस्त शरारत, स्कूल या कॉलेज की मस्ती, बिना पैसे की चाय पार्टी, या फिर वो पल जो पूरी दुनिया खिलाफ थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका जो दोस्त था ना वो आपके साथ खड़ा था या खड़ी थी। तो आज का जो हमारा सवाल है आपके लिए वो ये है कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ जुड़ी वो कौन सी याद है जिसे याद करते ही आज भी ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अपनी प्यारी सी याद, मज़ेदार किस्सा या दिल छू लेने वाला पल जो है हमें बिल्कुल अभी के अभी तुरंत भेजिए। हो सकता है आपकी कहानी सुनकर किसी को अपना बिछड़ा दोस्त याद आ जाए या किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लौट आए। तो जल्दी कीजिए, बिल्कुल मतलब बहुत बहुत जल्दी कीजिए, फटाफट से जो है मैसेज भेजिए और दोस्ती के इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन जाइए। मैं हूं भगवती और आप सुन रहे हैं FM रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स, और यहाँ पर ना हर एहसास की अपनी एक धुन है। चलिए ऐसा करते हैं, आज दोस्ती की यादों को ना फिर से जीते हैं। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज द नंबर फॉर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। तो जल्दी से भेजिए मैसेज, भगवती कर रही है इंतजार आपके संदेशों का।

राहुल इंदौर से कहते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पर पूरा दिन ऐसे बिहेव किया जैसे उसे याद ही नहीं है। मैं थोड़ा नाराज भी हो गया था, लेकिन रात 12 बजे वो अपने बाकी दोस्तों को साथ लेकर जो है और साथ में केक लेकर घर पहुंच गया। वो सरप्राइज आज भी याद करके मैं मुस्कुरा देता हूँ। वाह राहुल, मतलब कभी कभी ना बहुत सारे जो मतलब प्यारे प्यारे सरप्राइजेस आते हैं वो उन्हीं लोगों से आते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं, और जो इस तरह के दोस्त हैं ना इन्हीं से तो मतलब ज़िंदगी में

नेहा लखनऊ से कहती हैं, जब मेरी पहली नौकरी नहीं लगी थी ना तो मैं बहुत निराश थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड रोज मुझे जो है मोटिवेट करती थी और आज मैं जिस जगह पर हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। नेहा, जो एक्चुअली में जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो आपकी सफलता में तालियां बजाने से पहले जो है आपके संघर्ष में भी जो है आपका हाथ थामते हैं। आपको और आपकी दोस्त को हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। रोहित नागपुर से कहते हैं कि स्कूल में एक बार मेरा टिफिन गिर गया था और मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे अपना पूरा टिफिन मुझे दे दिया और आज भी जब हम मिलते हैं तो उस बात को याद करते हैं। रोहित, जो बचपन की दोस्ती होती है ना ऐसी होती है और टिफिन शेयर करने वाली जो है बहुत सारी यादों के साथ जो है जुड़ी होती है। सिमरन चंडीगढ़ से कहती है, मेरी शादी में मेरी बेस्ट फ्रेंड स्टेज पर इतना रोई कि सबको लगा उसकी विदाई हो रही है और आज भी वीडियो देखते हैं तो हंसी नहीं रुकती है। बस ऐसा ही होता है ना सिमरन, कुछ दोस्त रिश्तों से नहीं एहसासों से जुड़े होते हैं।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एफएम रेनबो पर आप सुन रहे म्यूजिक मस्ती और म्यूजिक मस्ती सुनेंगे आप घंटे भर बाद। इसमें आप सुन रहे मैसेज मसाला मिक्स और उसमें हम जानना चाह रहे हैं कि जिंदगी में जो हमारे यहाँ ना कुछ लोग मिलते हैं, कुछ दोस्त मिलते हैं जो हमारा परिवार तो नहीं होते लेकिन परिवार से कम भी नहीं होते, तो बताइए आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ जुड़ी वो कौन सी याद है जिसे याद करती आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।

मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से कहते हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुनव्वर और हैदर के साथ बिताए हुए पल आज भी दिल के सबसे खूबसूरत कोनों में बसे हैं। बरसात का मौसम था, चारों ओर खेतों में हरियाली बिछी हुई थी। हम तीनों कभी कच्ची पगडंडियों पर चलते, कभी धान के खेतों की मेड़ों पर बैठकर घंटों बातें करते। बारिश की फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और दोस्तों की बेफिक्र हंसी, बस वही पल जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गए। आज भी जब सावन की पहली बारिश होती है तो मुनव्वर और हैदर के साथ बिताए हुए सुनहरे लम्हे याद आ जाते हैं। सच कहूं दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की यादें कभी पुरानी नहीं होती। दैट्स सो ट्रू। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास किनका है, कहां से है? विकास ठाकुर फ्रॉम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता था 2005 में, तब बर्फ इमली की चटनी और लेते थे। उसके लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो एक फ्रेंड था, जब मैं पैसे लेके नहीं जाता था तो वो खिलाता था। स्कूल लाइफ वॉज बेस्ट। बिल्कुल जी, स्कूल लाइफ होती ही सबसे अच्छी है ना। मतलब जब आप स्कूल लाइफ जो है क्रॉस कर चुके होते हैं, स्कूल से बाहर निकल आते हैं ना, जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज फिर भी ठीक है, जब उसके आगे की ज़िंदगी में आते हैं ना, तब लगता है कि स्कूल के दिन बिल्कुल मस्त बेफिक्री के दिन थे। रुचिका कोयम्बटूर से कहती है, मेरे चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान तब आती है जब मुझे स्कूल के वो दिन याद आते हैं, खासकर दोस्तों के साथ टिफ़िन शेयर करना और एक दूसरे का खाना छीन कर खाना। वो यादें आज भी दिल छू लेती हैं। विपिन नेहरा काशीपुर यूके से, उत्तराखंड से कह रहे हैं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपको भी मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है सौरभ अनेजा का गाजियाबाद से, कहते हैं कि आज शाम मेरे फेस पर तो उस टाइम बड़ा वाला स्माइल आ गया जब आप जो है, अच्छा मैसेज मसाला मिक्स का टॉपिक बता रहे थे। बस ये मेरे एफएम रेनबो के आरजे दोस्तों के प्यार

का प्यार है जो आज शाम एक बार फिर ऐसा हुआ। और आपको तो पता ही है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप प्लीज मेरी इस बात पर भी विश्वास कर लेना। कर लिया हमने। दोस्ती की बात हो और इस गाने की बात ना हो, ये गाना ना प्ले किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हम टाइम मशीन में बैठ रहे हैं, स्कूल की शरारतें, कॉलेज की मस्ती, बंक मारना, टिफिन शेयर करना, कौन सी दोस्ती वाली याद आज भी आपको जोर से हंसा देती है? जल्दी से अपना किस्सा भेजिए। और इसे हम स्कूल कॉलेज तक ही क्यों मतलब लिमिट करके रखें, बाद के भी स्कूल कॉलेज की लाइफ से हट कर भी अगर कोई किस्सा है आपके दोस्त के साथ वाला, तो शेयर कीजिए।

अंशी शर्मा है हस्तिनापुर मेरठ यूपी से, कह रही हैं कि आज के टॉपिक पर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी तो एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी प्रीति, तो मैं खुद तो होमवर्क करके नहीं ले जाती थी, मेरा होमवर्क मॉर्निंग में प्रेयर से पहले वही किया करती थी, और कभी कभी हमारा झगड़ा हो जाता था तो मैं उससे मना लेती थी क्योंकि कि कभी अपना लंच खिलाकर तो कभी उसे ग्रीटिंग कार्ड देकर, कुछ खाने की चीज़ें देकर फिर से दोस्ती हो जाती थी। तो मतलब ऐसी होती है ना बचपन की दोस्ती, जो कि बहुत जल्दी मतलब रूठ भी जाते हैं तो मनाना भी उतनी जल्दी हो जाता है। ये हैं प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से, कह रहे हैं कि मेरा तो एफएम रेनबो ही दोस्त है, सारा दिन मेरे साथ रहता है, काम के साथ साथ सारा दिन जो है शॉप पर चलता रहता है। और ये मैसेज किन का है, कहाँ से है? जब आप मैसेज भेजते हैं ना तो क्लियरली अपना नाम पता लिखें ताकि मैं उन्हें फटाफट से पढ़ सकूं। फैज़ हैं दिल्ली से, कह रहे हैं कि मैं और मेरा दोस्त हर रविवार बिना किसी प्लान के निकल पड़ते थे और मंजिल कभी तय नहीं होती थी लेकिन हर सफ़र यादगार बन जाता था। तो दोस्त अच्छा हो तो मंजिल से ज़्यादा जो है सफ़र याद रहता है। आपकी दोस्ती हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे, यूं ही बनी रहे। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज़ दी नंबर फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस। और भगवती इंतज़ार कर रही है आपके और भी बहुत सारे मैसेजेस का। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, और दोस्ती की कोई एक खूबसूरत सी याद जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हो वो शेयर कीजिए हमारे साथ।

दोस्ती में सबसे ज्यादा क्या याद आता है आपको? बिना पैसे की चाय, एक प्लेट समोसा शेयर करना, बेवजह घूमना या फिर घंटों तक की गप्पे? आपकी सबसे प्यारी याद क्या है? हमें मैसेज कीजिए।

हीरामणि वर्मा रतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से कहते हैं, मित्रता दिवस की शुभकामनाएं, वो हार्दिक बधाई जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कहते हैं, रेडियो मेरा सच्चा मित्र है। मैं और मेरा मित्र अपने क्लास टीचर की आवाज़ की हूबहू नकल करते थे और सहपाठी मित्र डर जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। एक दिन पकड़े गए और सभी के सामने मुर्गा बनाया गया था, लेकिन दोस्ती आज भी कायम है। मतलब ऐसी वाली दोस्तियां जो है ना, वो तो बहुत पक्की वाली होती हैं, वो रहती हैं कायम। ये हैं रवि जोशी मेरठ से, कहते हैं कि शुभ संध्या। शुभ संध्या आपको भी, कहते हैं सभी को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत सारी बधाई। मेरा एक दोस्त तंग हालात में था लेकिन प्रतिभाशाली था। मैंने बिना उसको बताए आर्थिक सहायता की, जिस कारण वो अपनी प्रतिभा से नौकरी पाने में सफल हो गया। मैंने दोस्ती का रिश्ता निभाया। आपको सलाम है जी, दोस्त ऐसे ही तो होते हैं सच्चे दोस्त, जो दोस्त के काम आते हैं। ये हैं राजू मल्होत्रा जम्मू और कश्मीर से, कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कहते हैं मेरे 250 फ्रेंड्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। मुझे लगा था पहले आप कहेंगे कि सोशल मीडिया में। कहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि मैं आज आर्मी में सर्विस करता हूं, इसलिए जहां भी जाता हूं मेरी लोगों से दोस्ती हो जाती है और फ़ोन तो कभी कभी किसी का ही आता है। कहते हैं कि जब मेरी सरकारी जॉब मिली तो पोस्टिंग दूर होने की वजह से मैं नहीं जाना चाहता था, और तब मेरे दोस्तों ने मुझे जो है मजबूर कर दिया और मुझे अपनी सर्विस में ज्वाइन करने के लिए कह दिया। लेकिन आज उन दोस्तों का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। दोस्त वही होते हैं ना सच्चे दोस्त, जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और आपके भले के लिए आपको सलाह देते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं।

कंचन सोनिया विहार दिल्ली से कहती हैं कि ये उन दिनों की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत हंसमुख थी और उसको टीचर कितना भी डांट ले वो हंसती रहती थी। अगर उसे क्लास में खड़ा भी कर देते थे ना तो खड़े होकर हंसना शुरू कर देती थी, और उसकी हंसी देखकर जो है पूरी क्लास को हंसी आ जाती थी। और आज भी जब मुझे वो बात उसकी याद आती है तो मुझे खुद ब खुद हंसी आ जाती है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से कहते हैं, मुझे लगता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन किसी के साथ भी मेरी ऐसी कोई यादें नहीं है जिसे मैं आपको सुना सकूं। होंगी, जरूर होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है आपके इतने सारे दोस्त हैं और यादें नहीं है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए ना। ये है रजनी शर्मा फ्रॉम बागपत, कहती है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो अगर किसी दिन एब्सेंट हो जाती थी तो दोस्तों का मन नहीं लगता था, सब लोग हर चीज़ में मिस करते थे कि आज वो नहीं आई है। ऐसे ही होता है ना, फ्रेंड्स जो है वही तो असली दोस्त होते हैं, जो जब आप नहीं होते तो आपको मिस करते हैं और जब वो नहीं होते तो आप उनको मिस करते हैं, यही तो दोस्ती होती है। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं कि होंठों पर मुस्कुराहट दिलाने वाले दोस्त तो कॉलेज के ही थे, बहुत कार्टूनों जैसी हरकतें करते थे, अब सब के सब जो है इंटरनेट की अदृश्य दुनिया में ही मिलते हैं। बिल्कुल जी। यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स।

गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से कहती हैं, एक बार मैं और मेरा दोस्त एक बगीचे में आम चुराने गए थे। मैं ऊपर था पेड़ पर और वो नीचे, मालिक आ गया तो भी मेरा दोस्त जो है मुझे छोड़कर भागा नहीं, वहीं रुका रहा। मतलब ट्रू फ्रेंड्स नो, ये हैं कौन है, कहाँ से है, मैसेज क्लियरली लिखा करें ना। मोनिश इदरीसी उत्तर प्रदेश बिलासपुर से कहते हैं, मुझको मेरे दोस्त के साथ दिन याद आते हैं, कहीं भी जाते साथ जाते थे। उसका नाम सलीम है, लिख रहे हैं। गानों की फरमाइश शो में मत करा करिए। एक ये मैसेज है, कहाँ से है, रोहतक से है, किनका है, मिसेस धर्म भाटिया का है। रेगुलरली मैसेज करती हैं हमारे शो में, कहती है कि 1967-68 की बात है कि मैं ट्रेनिंग में थी और हम तीन फ्रेंड्स थे, सुखदेव कौर, तृप्ता और मैं, और बहुत पक्की दोस्ती थी कॉलेज में हमारी और हमको तीकड़ी कहकर बुलाते थे। और कहते हैं कि वो फिर शादी के बाद सब हम दूर दूर हो गए, बट उनकी याद आती है और वो टाइम भी बहुत याद आता है। सर्विस के टाइम पर भी कहते हैं कि हम तीन ही दोस्त थे, उषा, सरिता और मैं, जो अब भी हमारी दोस्ती कायम है, दूर दूर हो गए हैं लेकिन टाइम टू टाइम जो है मिलते रहते हैं। मतलब कि तीकड़ी का जो वो था वो आपने अपना जो है मेंटेन रखा। नहीं, ये मैसेज हमारे पास आया है मुंबई से यश शिंदे जी का। कहते हैं, दिन बीत जाते हैं, सुहानी यादें बनकर बातें रह जाती हैं, कहानी बनकर, पर दोस्त हमेशा दिल के करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। कौन कहता है कि तारे जमीन पर नहीं होते, पूरी शिद्दत से कभी तलाश कर तो देख, कुछ दोस्त बिल्कुल तारों जैसे अनमोल होते हैं, जो अंधेरी राहों में भी जिंदगी चमका देते हैं। क्या बात है।

भेरूलाल वाकदरिया ढाकर उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से कहते हैं, स्कूल शिक्षा के दौरान अक्सर दोस्त से किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी और बोलचाल बंद हो जाती थी और एक दो दिन की लड़ाई के बाद फिर से हमारी दोस्ती हो जाती थी। विजेंद्र अकोला महाराष्ट्र से कहते हैं कि गाने इन्हें पसंद आ रहे हैं और कह रहे हैं मेरा दोस्त FM रेनबो ही है क्योंकि दिन भर तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ।

किशन वंजनी नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कहते हैं कि हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल में जो हमारा दोस्त हमारा होमवर्क क्या करते थे ना, वो हमें जो हमेशा याद रहते हैं। नाम नहीं लिखा है इन्होंने, कहते हैं कि स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी जो कि और हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, अचानक हम 10 साल के बाद मिले और हमें बहुत खुशी हुई और हम आज अब टच में हैं।

दोस्तों, आज आपकी दोस्ती की यादों ने ना सचमुच दिल को छू लिया। किसी ने स्कूल के दिनों की शरारतें याद की, किसी ने कॉलेज की मस्ती, और किसी ने मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ बताया, तो किसी ने एक छोटी सी बात में पूरी जिंदगी की खुशी ढूंढ ली। शायद यही ना दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस हर बार याद आने पर जो है एक नई मुस्कुराहट खिल जाती है चेहरे पर, होंठों पर। और अगर आज का शो सुनकर आपको भी अपने किसी पुराने दोस्त की याद आ गई है ना, तो शो खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। अभी उसे कॉल कीजिए, एक मैसेज भेजिए, या बस इतना लिख दीजिए, दोस्त तेरी याद आ रही थी। यकीन मानिए, शायद यही एक मैसेज किसी का पूरा दिन बहुत खूबसूरत बना दे, पूरी शाम सवार दे। और इसी मुस्कान और दोस्ती की गर्माहट के साथ अब मुझे भगवती को दीजिए अनुमति। फिर मिलती हूँ आपसे घंटे भर के बाद, तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशामुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। ये वृद्धि पहले के अनुमानों से अधिक है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना कल। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के परिजन को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख से 7,50,000 रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है, कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और यह देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आपके साथ हूं मैं भगवती।
2: तू भी गिद्दा वाले चल रंग जमा दे, हमके बने सभी मत वाले।
1: तैयार है ना आप?

जो ओरिजिनल ट्रैक था ना वो 1996 की फिल्म तेरे मेरे सपने में था। आवाज थी किशोर कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। अभी जो प्ले किया है वो है सिम्बा फिल्म का गाना, ऑफ कोर्स नेहा कक्कड़, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाजों में।

आपके लिए प्ले किया है क्वीन फिल्म का ये ट्रैक, सिंगर्स लव झंझुआ, सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती पूरी मस्ती के साथ भगवती के साथ। और ये जो म्यूजिक बज रहा है ये है शानदार फिल्म के ट्रैक का, लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य एंड सॉन्ग संग एंड कंपोज बाय अमित त्रिवेदी।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ। एक और प्यारा सा ट्रैक प्ले कर दिया आपके लिए, जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय। ओ डोंट जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय, मूव ऑन टू द डांस फ्लोर, ग्रूव अ लिटिल।

दिस इज चोर बाजारी फ्रॉम लव आजकल. आवाजें आप सुनी रहे हैं नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की, म्यूजिक बाय प्रीतम, और ये प्यारे से लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के. यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, स्टे ट्यून्ड.

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती मेरे यानी भगवती के साथ। एक और मस्ती भरा ट्रैक प्ले कर दिया आपके लिए।

तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का ट्रैक सुन रहे हैं आप अभी। म्यूजिक बाय प्रीतम, लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य, आवाजें सुनीति चौहान और शाश्वत सिंह की।

one more beautiful track just for you, only on Akashvani Rainbow. खिलाड़ी 786 का ये गाना श्रीराम और श्रेया घोषाल की आवाज में।

स्टूडियो से भगवती के जलने का समय हो रहा है, पर इतना समय है मेरे पास कि मैं एक ट्रैक और प्ले कर सकूं आपके लिए। और जाने से पहले आपको बता दूं कि 9 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही, संजीव श्रीवास्तव रहेंगे आपके साथ। 10 बजे से सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शिवांगी वार्ष्णेय के साथ, और 11 बजे से आप सुनेंगे रंगे महफिल, संजीव श्रीवास्तव रहेंगे आपके साथ। और अब समय है आपकी दोस्त भगवती ले आपसे अनुमति। नमस्कार, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।

नमस्कार, लीजिए सुनिए रात 9 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया है। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना कल होगी। उड़ीसा में महानदी नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। केरला में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत मिली है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 41 लापता हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले स्थगित कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संभावित समझौते का ढांचा तैयार है। और बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है। और राष्ट्रमंडल खेल का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब बारी है आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपकी याद आती रहेगी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नमस्कार जी, आकाशवाणी रेनबो पर वक्त हो चला है आपके और हमारे पसंदीदा सफर का, यानी कार्यक्रम आपकी याद आती रही। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ आपका अपना हम सफर संजीव श्रीवास्तव संजू, और आप मुझे सुनेंगे रात के 10 बजे तक, और उसके बाद रात 11:02 से यानी समाचारों के बाद आपसे पुनः मुलाकात होगी प्रोग्राम रंगे महफिल के साथ। यानी हमारा ये सफर रहेगा आपसे लगातार रात के 12 बजे तक जारी। तो इस प्यारे से सफर में एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, इस प्यारे से दोस्त के साथ चलने को तैयार हैं आप, तो सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आज के हमारे प्रोग्राम आपकी याद आती रही में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

सूचना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, वेलकम बैक अगेन, स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। प्रोग्राम है आपकी याद आती रही, मैं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजीव। सो दिन भर की भाग दौड़, दफ्तर की फाइलें, रास्तों का ट्रैफिक, अब सब पीछे छूट चुका है ना। और इस वक्त खिड़की से आती ठंडी हवा है, चांद की मध्यम रोशनी जिसमें बादलों की आवाजाही है, और हमारी यादों की वो खुली किताब जिनके पन्नों पर आज हम फिर से कुछ सुनहरे लम्हे लिखेंगे। सो इन लम्हों को सुनने के लिए, लिखने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, आज का सफर रहेगा सुकून के नाम की जिंदगी में, सुकून कैसे मिले। तो फिलहाल तो सुकून मिलेगा इस बहुत ही प्यारे से गीत से जिसको गाया है मुकेश जी ने, और ये जब आवाज गूंजती है तो सुकून अपने आप दिल के अंदर उतर जाता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

वेलकम है जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, वक्त हो गया है 9:18। बिल्कुल रविवार की ये रात है ना, बहुत ही जैसे कहते हैं सुकून भरी रात है। और क्योंकि आज के दिन छुट्टी होती है, लोग सोचते हैं सुकून ले लें, लेकिन भाई मेरे लिए तो पूरा दिन भाग दौड़ की रात थी रात से मतलब दिन था। और मैं ग्रेटर नोएडा से होते हुए, नोएडा से होते हुए यहाँ अपने स्टूडियो पहुँचा लंबा एक सफ़र करके आपसे मिलने के लिए। लेकिन फिर भी एक सुकून ये रहा कि ये कोई ऑफिशियल दिन नहीं था, बस मेल मिलाप था, मुलाकात के लिए गए। बड़ा सुकून भरा दिन था, अच्छा लगा। और ये भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी ज़िंदगी के एक लगातार घूमते हुए एक कोलू के बैल के उस चक्र से बाहर निकल कर कुछ नया ढूंढते हैं तो आपको सुकून मिलता है। और आज का हमारा ये सफ़र इसी नाम है, ज़िंदगी में सुकून के नाम। तो चलिए यादों के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और इस खूबसूरत गीत को आपको सुनवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमें बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। और सच मानूँ तो ये दिल से उनके जो मैसेजेस आते हैं ना, तो बहुत दिल को खुशी होती है। फिलहाल ये गीत आपको सुना दें, फिर हम कुछ अपने दोस्तों की बात करेंगे। अगर कोई आपसे ऐसा निमंत्रण दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, सुकून मिलेगा ना

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ, वक्त हो गया है 9:26, है ना। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, और इस वक्त गुजरते हुए वक्त के साथ हम अगर दौड़ते रहें तो ये वक्त हमारा साथ देता है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शन, बहुत ही प्यारे नगमे आप प्ले कर रहे हैं, ये शुभकामनाएं दी हैं हमें डॉली ने, और दोस्ती के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरा भी बहुत बिजी था, मैं घर पर थी पर तब भी दिन बहुत बिजी था। जी बिल्कुल, सुकून यानी आपको भी नहीं मिला जो हम आज सुकून की बात कर रहे हैं। चलिए हम और आप एक से, और उसके बाद ये आधा वर्ज है साहब, सरजी प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम अख्तर साहब, रेशमा बेगम जी अलीगढ़ से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज मेरे पास किसने भेजा, नाम नहीं भेजा आपने, सिर्फ एक लिंक भेज दिया। लिंक पर अभी देखना कहा ना, जो नया लिंक हो किस पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इसलिए हम इस लिंक को बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे। आप अपना नाम भेजिए और हमें शानदार सा मैसेज भेजिए। ऋषि सेन खुराई MP से लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है और हमें पसंद आ रहा है साहब, शुक्रिया आपका। पंकज अमरावती महाराज से, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुना रहे हैं और आपकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, शुक्रिया पंकज साहब। और वेलकम बैक, ये हमारे दोस्त सौरभ अनेजा, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, हमेशा हमारा वेलकम करते हैं और हम इनका वेलकम करते हैं। तो चलिए एक और गीत आपको सुना देते हैं अपने इस सुकून के नाम पर, क्योंकि सुकून कहाँ है दोस्तों, सुकून तो बस इसी बात में है कि हम जिंदगी के हर रंग को खुले दिल से गले लगा लें, चाहे वो रंग थोड़ा सा उदासी का ही क्यों ना हो। चलिए जिंदगी से थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन ये गुफ्तगू प्यारी सी होनी चाहिए, मीठी मीठी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ, पुनः स्वागत आपका प्रोग्राम आपकी याद आती रही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव, उप संजू, यानी यह है आपका अपना रेडियो जी। और जोया मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से स्टिल लिसनिंग, अभी भी हमें सुन रही हैं। जोया प्लीज़ गिव सम वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आप हमें सुन रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुकून की बात हम कर रहे थे, तो सुकून की बात में एक बात यह भी है कि क्या आप जानते हैं कभी कभी सुकून किसी को सिर्फ पहली नज़र भर देख लेने में मिल जाता है। हाय, जब धड़कने थम जाती हैं, वक्त ठहर जाता है, याद कीजिए अपना वो पहला एहसास, याद कीजिए इस गीत के साथ।

देखा आपने, जब किसी भी संगीत की गीत की तैयारी होती है तो कितनी मेहनत करनी होती है, ये उसी का एक छोटा सा नजारा हमने आपको दिखाया है ना। और जो मूल गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो ऐसा था।

0: बिल्कुल जी, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, और प्रोग्राम आपकी याद आती रही। आपके साथ मैं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। एडवोकेट कंकड़ खेरा मेरठ से राजेश भल्ला जी लिखते हैं, प्लेलिस्ट अच्छी है, सुकून देने वाली है, लेकिन रात 11 बजे तक नींद आ जाती है, इसलिए क्या करें भाई। तो राजेश जी, अब हम तो 24 घंटे आपकी सेवा में जगते हैं और आपको 11 बजे बिल्कुल सोने का समय है, तो आप निश्चित होकर सो जाइए, लेकिन हम जागेंगे आपके लिए, है ना। और ये अगला मैसेज हमारे पास किसने भेजा जी, ये भेजा हमारे पास सुदर्शन जी ने, सुदर्शन मुखी जी ने, अनिता मुखी जी ने, सिमरन मुखी जी ने, शांति नगर सोनीपत से। कहती हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं और संतोषी बनो, अपने आप सुकून मिल जाएगा। सच बात है, बिल्कुल, संतोष परम सुखम, वो सच सबसे बड़ी बात है। आपके मन में अगर संतोष है, लेकिन इस संतोष के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने लक्ष्य को भी यही सोच के कि संतोष से बैठिए, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो जिंदगी के बिना हम नहीं और हमारे बिना जिंदगी नहीं।
1: बरसों बाद ऐसा लगता है कि वो किसी और सभी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी हाँ, फिलहाल हमारा यह खास सफर आपकी याद आती रही, आज यहीं ठहरता है, लेकिन जाने से पहले इस शो का सबसे पसंदीदा और आखिरी नगमा आपके सरहाने छोड़े जा रहा हूँ, ताकि आपकी रात बेहद हसीन और सुकून भरी हो, है ना। रात ठीक 11 बजे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम रंगी महफिल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों को प्यार कीजिए और सुनते रहिए अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक गुनगुनाते रहिए। शुभ रात्रि फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव को दीजिए। आज के अभी के इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाज़त। 11 बजे पुनः मुलाकात होगी आपसे समाचारों के साथ और उसके बाद प्रोग्राम रंगे महफिल में। नमस्कार, तब तक के लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं।

वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना,

0: न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, लीजिए सुनिए रात 11 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88,06,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में कल त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आरंभ होगा। दिल्ली सरकार ने जेल में प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में कैदियों के परिवारों को 7.5 लाख रुपए तक के मुआवजे की घोषणा की है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और केरलम में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 81 व्यक्ति लापता हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल

खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और बारी है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रंगे महफिल की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, नमस्कार, आदाब और एक बेहद हसीन शाम का खैर मकदम आप तमाम चाहने वालों का। आकाशवाणी रेनबो पर सज चुकी है सुरों और लफ्जों की एक खास शाम, यानी आपकी पसंदीदा, यानी आपका पसंदीदा प्रोग्राम लगे महफिल, और मैं हूँ आपके साथ आपका, आपकी महफिल का हमनशीं, आपका साथी संजीव श्रीवास्तव उर्फ संजू।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और आपके साथ मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू दोस्तों, आज की महफिल का जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा लफ्ज है, ऐसा शब्द है जिसके बिना ये कायनात, ये दुनिया अधूरी है। आज हम बात करेंगे उम्मीद की, उस उम्मीद की जो जलते हुए दिए की तरह हमारे दिलों में रोशन रहती है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: बिल्कुल जी, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम है रंगे महफिल और आपके साथ मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। संजीव, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा कि उम्मीदों के दिए बुझने न देना कभी, ये वो रोशनी है जो तूफानों में भी रास्ता दिखाती है। ज़िंदगी कितनी भी इम्तहान ले मगर एक सुबह, एक नई सुबह हर रात के बाद आती है। तो आइए इसी उम्मीद के उजले सफ़र में सुनाते हैं ये एक और शानदार सी गज़ल आपको।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, वक्त हो गया है 11:26:27 की तरफ, मिनट की तरफ सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है। हम आपसे हैं, मुलाकात कर रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल के माध्यम से। यह है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव उर्फ संजू। लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और सच भी तो है। अगर दिल में एक छोटी सी आस ना हो तो पतझड़ के बाद बहार का इंतज़ार कौन करेगा, है ना? लेकिन कई बार जब ये पतझड़ बहुत लंबा हो जाता है तब ये आस टूटने लगती है,

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ बिल्कुल, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, और ये रात दिन हम हमेशा तलाश करते हैं अपने भीतर, लेकिन ये दिन ना अपने बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं ये शांति कहीं ना कहीं मिलती है जब हम समझ जाते हैं कि इस भागदौड़ का कोई अंत नहीं है, सुकून वही है जहाँ आप ठहरते हैं, है ना। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, आपके साथ मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू, और एक और बहुत प्यारी सी गज़ल आपको सुना रहा हूँ मैं आशा भोसले जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत, आशा ताई ने बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया है, बस सुनिए और उतार लीजिए दिल में।

जी हाँ, रात भर का महिमा है या अंधेरा तो क्या, आने वाली है सुबह, बस जरा सा सब्र तो करो। दिया उम्मीद का जलता रहे जो दिल में, हर सफर आसान होगा बस तुम यकीन तो करो। कल रात फिर सजेगी सजेगी महफिल, फिर होंगे लफ्ज और फिर होगा सुरों का कारवां। लेकिन अभी मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाजत। पर आकाशवाणी रेनबो पर सुनते रहिएगा और मुस्कुराते रहेगा। शुभरात्रि, शब्बक है।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्ति युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88,06,000 से अधिक गणना परपत्रों पर डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4th संस्करण आरंभ होगा। दिल्ली सरकार ने जेल में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में कैदियों के परिवारों को 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की है। ओडिशा के महानदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। केरला में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत मिली है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम जीरो आवर शो का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग।

0: के भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: बदली स्टाइल गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम चल रहा है जीरो आवर शो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम के ये ट्रैक्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। तब तक के लिए कहीं न जाइएगा, जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88,06,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आरंभ होगा। दिल्ली सरकार ने जेल में अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में कैदियों के परिवार को 7.5 लाख रुपए तक के मुआवजे की घोषणा की है। ओडिशा में महानदी का जल स्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। केरलम में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और एक दर्जन से अधिक घायल हुए हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और राष्ट्रमंडल खेलों का देर रात समापन होगा। समापन समारोह में अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे अगले प्रोग्राम यानी सुहानी रात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: Cash Money. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय है अब तक के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4th संस्करण आरंभ होगा। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस महीने 6 और 7 अगस्त को मुंबई में ब्रिक्स वेब्स बाजार का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सहनिर्माण, वित्त पोषण और सामग्री साझेदारी को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स, पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक गंतव्य के तौर पर स्थापित करना तथा रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रिक्स जुड़ाव के लिए संस्थागत मंच स्थापित करना है। मौसम विभाग में आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और राष्ट्रमंडल खेलों का देर रात समापन होगा। समापन समारोह में अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाए ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आरंभ होगा। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस महीने 6 और 7 को मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सहनिर्माण, वित्त पोषण और सामग्री साझेदारी को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक गंतव्य के तौर पर स्थापित करना तथा रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रिक्स जुड़ाव के लिए संस्थागत मंच स्थापित करना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवीडी हाइड्रो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन समारोह एथलीटों के अभिनंदन, संगीतमय प्रस्तुतियां और 2030 में शताब्दी संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद को औपचारिक रूप से सौंपने के साथ संपन्न हो गया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

गीतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आरंभ होगा। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस महीने 6 और 7 अगस्त को मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सहनिर्माण, वित्त पोषण और सामग्री साझेदारी को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक गंतव्य के तौर पर स्थापित करना तथा रचनात्मक उद्योगों के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रिक्स जुड़ाव के लिए संस्थागत मंच स्थापित करना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवीओ हाइड्रो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन समारोह, एथलीटों के अभिनंदन, संगीतमय प्रस्तुतियां और 2030 में शताब्दी संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद को औपचारिक रूप से सौंपने के साथ ही संपन्न हो गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको

एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर

7% रहने का अनुमान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आज त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आरंभ होगा। पाठ्यक्रम में भूभाग, राजनीतिक घटनाक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस महीने 6 और 7 अगस्त को मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एथलीटों के अभिनंदन, संगीतमय प्रस्तुतियों और 2030 के शताब्दी संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद को औपचारिक रूप से सौंपने के साथ 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर 4थे स्थान पर रहा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।